0: Australian Maya Joint.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: वेदर का हाल चाल 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे काफ़ी बढ़िया दिन है, 0% चांस है बारिश के, लेकिन सनसेट होगा आज 5:16 PM पे।

Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, bilal ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. Mera naam Ketan hai, aaj mahine ki pehli tarikh hai, 1st July. Saatwa mahina ho chuka hai shuru. Kaisa ke aapke pehle 6 mahine, yani ki pehla jo first half tha, wo saal ka aapka kaisa gaya hai? Mera kaafi thrilling, kaafi exciting, kaafi fun, kaafi learning. Kuch memorable, of course, kuch negative sides bhi the, but let's look forward to the good side only. Yeah, jo negative side thi wahan se seekhne ko mila hai, seekhunga, and then of course moving forward jo positive cheeze hain usko barkarar rakhunga. Badhiya, sahab bhi mujhe 5599 mein bataiye. हम 104.2 FM पे आप मुझे सुन रहे हैं. मेरा नाम केतन है. बॉलीवुड के सबसे बड़े गाने यहाँ पे हम चलाते हैं. Until 3 I am here, so stay tuned, keep listening to me. आज वैसे होमसिक रेमेडीज के लिए मेक श्योर कि आप मुझे मैसेजेस भेजें 5599 पे. कल जिस तरह से हमने बात की थी, काफ़ी प्यारा मैसेज भेजा था हमारे लिसनर ने रिगार्डिंग क्या चीज़ उन्हें मिस करती है, क्या वो फॉलो करते हैं जस्ट टू अवॉइड दोज सिकनेस. But yes, 5599 is the number. आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 800-004-866 पे. बट अभी हाल फिलहाल आप मुझे होम सिक रेमेडीज के लिए भेजिए. शुरुआत करते हैं विकास भल्ला और अमन त्रिखा की आवाज में हिमेश रेशमिया के साथ. पौ, पौ, पौ, पौ, पौ. बचाओ क्या?

0: स्वागत करता हूँ आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। वेल गेस, कुछ बातें हैं होम सिक रेमेडीज के लिए। आज सचमुच बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था मैं अपने घर को, मॉम डैड को, कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था मैं आज। पता नहीं क्यों, जब मैं ऑब्वियसली सुबह उठा और इहान को देखा, यू नो वी वर जस्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड, एंड उसको जब मैं किंडी छोड़ने जा रहा था, सडनली जिस तरह से मैं जा रहा था, एकदम से मुझे फील हुआ, डेजा वू जैसा फील हुआ कि मैं ये पहले कर चुका हूँ, इस तरह का फील हुआ। फिर उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा वो चीज़ काफ़ी यू नो हिट की, हिट पता नहीं पॉजिटिव बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, बट सडनली यार मुझे लगा, मुझे अपना बचपन याद आया कि मुझे याद है मेरे पापा भी मुझे इस तरह से ड्रॉप किया करते थे गोद में उठा के, एंड देन ऑफकोर्स नॉट, मुझे इतना यंग का याद नहीं है, बट एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक मे बी मैं 2 या 3 साल का था, वो हल्की सी एक झलक मुझे याद है। तो उसके बाद से एंड देन आई रियलाइज कि यार यहाँ पे मम्मी पापा नहीं है, वो सब इंडिया में। तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सी थॉट प्रोसेस जो मेरा था वो एक अलग ही जोन में चला गया। एंड देन उस टाइम जो भी टीचर बोल रही थी मुझे, थोड़ी देर के लिए तो कुछ क्लिक ही नहीं किया कि लाइक क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया, बट ऑफकोर्स कुछ भी वॉज विद मी टुगेदर, सो उसने थोड़ा ध्यान दे दिया। बट यस, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? आप क्या करते हैं जब आप घर को मिस करते हैं, या फिर इफ़ यू मिस योर मॉम एंड डैड, व्हाट यू यूजुअली डू? यहाँ पे वैसे काफ़ी लोग होंगे जिनको काफ़ी साल हो गए होंगे, और हो सकता है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए होंगे, बट स्टिल एक ऐसा पल आता है जहाँ पे डेफिनेटली आप मिस तो करते ही होंगे अपने मॉम डैड को, यू नो। तो बताइए, आप मुझे कॉल कर सकते हो 800-00486 पे, और शेयर कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं व्हेन यू मिस योर पेरेंट्स और व्हेन यू मिस योर होम टाउन। कुछ चीज़ें मैंने सोची है, जैसे कि इफ़ इन केस आपको अब कभी ऐसा फील हो, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी ऐसे नए लिसनर्स होंगे जो शायद न्यूजीलैंड में नए नए आए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं या फिर 1-2 साल ही हुए होंगे, एंड डेफिनेटली वो भी उस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पे जो लेवल ऑफ यू नो घर की याद होती है वो इट वुड बी वे हायर देन कंपेयर टू अदर पीपल हु बीन हियर फॉर मेनी ईयर्स। सो यस, आप मुझे कॉल करिए 800-00486 पे और शेयर करिए कुछ बातें ऐसी जहाँ पे आप मुझे बता सकें दैट व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राई टू डू व्हेन यू मिस योर पेरेंट्स, या फिर व्हेन यू मिस योर होम टाउन। दिस ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ये मुझे मैसेजेस आए हैं जस्ट, वो कह रहे हैं व्हेन यू मिस ऑफ कोर्स क्विकली आप कॉल कर लो घर पे ताकि वो जो है मिस हो रहे हो तो वो एग्जैचुरेट ना हो या फिर वो आगे नहीं बढ़े। बट यस, द टाइम इज़ टाइम ड्यूरेशन का भी इशू होता है, बिकॉज जब ज़रूरी नहीं कि हमें इंडिया के टाइम के हिसाब से ये चीज़ आ जाए, हो सकता है पहले भी आ जाए बाद में भी आ जाए, डजंट मैटर। बट यस, उसके बाद एक ने लिखा है अपने रूम में घर की याद दिलाने वाली कोई चीज़ रखो, जैसे कि फ़ोटोज़ हो या फिर कोई फेमिलियर आइटम, दैट इज़ ऑल्सो नाइस, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अगर पॉसिबल हो अपना फेवरेट होम स्टाइल खाना बनाओ और ऑर्डर करो। खाना बना के ऑर्डर कैसे कर दो? अच्छा सॉरी, यहाँ पे या लिखा हुआ है खाना बनाओ या ऑर्डर करो। वेल, ऑर्डर करने का नो डाउट ऑब्वियसली आप बनाओगे नहीं थोड़ा, लेकिन मेरे को लगता है ऑर्डर करने से वो टेस्ट तो नहीं आएगा फॉर श्योर, राइट। बाहर थोड़ा वॉक करो और अपनी नई जगह को एक्सप्लोर करो ताकि आप उससे डाइवर्ट हो सके। नए लोगों से बात करो या किसी क्लब, क्लास या एक्टिविटी में ज्वाइन हो जाओ। रोज़ का एक रूटीन बनाओ ताकि दिन स्ट्रक्चर्ड लगे। और घर की याद दिलाने वाले सॉन्ग्स या मूवीज़ देखना कभी कंफर्ट देता है, लेकिन अगर इससे और उदासी बढ़ जाती है तो बैलेंस रखना अच्छा होता है। ये घर की याद वाले से मेरे को वो डायलॉग याद आ गया धुरंधर का, घर की नहीं याद आए जस्सी बट यस, कॉल तो किसी का आया नहीं, बट मैसेजेस आए हैं सबके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंजॉय करो, और ऑफिस शाउट आउट के लिए डू मैसेज मी, क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं और किसके साथ खा रहे हैं, डू लेट मी नो।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Freedom's Spend More, Save More sale is on now. Spend $500, save 15%. Spend $1,500, save 20%. Spend $2,500, save 25%. The more you spend, the more you save. Only at Freedom.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
8: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
9: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम playing Bollywood's biggest hits.
11: Lunchbox with Ketan.
12: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
11: हम office shout out.
13: ऑफिस शाउटआउट के सेगमेंट में स्वागत करते हैं। एक मैसेज आया है जो मैंने सवाल किया थोड़ी देर पर। सवाल तो क्या, एक ये सेगमेंट है जहाँ पे आप मुझे शेयर करते हैं आप एग्जैक्टली अभी क्या खा रहे हैं और किन लोगों के साथ खा रहे हैं, वेदर यू स्टाफ और एट होम या फिर कहीं बाहर, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यस, मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं। केतन, गेस व्हाट, माय कलीग फॉरगॉट हिज लंच सो वी ऑल शेयर्ड आवर टिफिन, लंच टेस्टेड इवन बेटर टुडे। अनीस ने ये मैसेज किया है। थैंक यू अनीस, थैंक यू सो मच। ईस्ट तमाकी में इनका ऑफिस है, वहां से इन्होंने मैसेज किया है। बोला केतन, आई वॉज अबाउट टू ग्रैब फास्ट फूड बट मम कॉल्ड एंड सेड देयर इज अ हॉट करी वेटिंग एट होम, स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। राइट, अच्छा आपका दिन में काम, मतलब ये लंच के टाइम हो जाता है काम खत्म? सही है यार राकेश भाई, मतलब आफ्टरनून अपना जो लंच होता है आफ्टरनून का, लंच आफ्टरनून में होता है, बट हाँ वो डायरेक्ट घर पे। यार वेरी वेल बताना जब घर जाओ तो आपको करी कैसे लगी। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही अच्छी होगी, यमी होगी, बट स्टिल वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बताइएगा आप। मैंग्रे से इन्होंने मैसेज किया है। स्नेहा कहती है सीवीडी से, टुडे इज लंच चैलेंज, फिनिश ईटिंग बिफोर द नेक्स्ट टीम मीटिंग स्टार्ट्स, विश मी लक। All the best, Sneha. Finish all the food before your next meeting starts. So yeah, good on you. And yeah, well done. Batana mujhe kya kya kha rahe hain, wo bhi bataiyega 5599 pe. But enjoy karo top hit of the hour ka song Tere Paas Mein, Dipali Sahai, jo ki Indian Idol 3 ya 4 mein thi, and uske baad ab jaake inko break mila, jo kafi news mein bhi aaya hai that she has waited for like 16-17 years to get her first playback break.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स एंड यस, बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ मैसेजेस आए हैं बीच में, कुछ कॉल्स भी आए थे, रिक्वेस्ट की थी कुछ चीज़ों की, तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे उनके भी गाने जो हैं हम यहाँ पे चला सकें। बट यस, 1 जुलाई को क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 90 सॉरी, मुझे बीच में छींक आ गई थी। काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है यार आजकल सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज यू डोंट नो यार कब क्या हो जाए। एंड आजकल ये जो बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल रही हैं उस वजह से वहाँ काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बट आपको पता है आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी जो अभी मैं आपको थोड़ी देर बताने वाला हूँ। बट यस, एक गाना है जो डेडिकेट रिकमेंड किया था अपनी यादों को, तो हम कोशिश करेंगे उस गाने को चलाने का। बट यस, आज के दिन 1978 की बात है जब बियट्रिस टिंसले, एक न्यूजीलैंड की काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमर थी, उन्होंने गैलेक्सी के इवोल्यूशन और यूनिवर्स को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की थी। आज के दिन येल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी की पहली फीमेल प्रोफेसर भी बनी थी, जो उस वक्त एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। यानी कि उस टाइम यूजुअली लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे, बट शी बिकेम एस्ट्रोनॉमर, जो कि एक बहुत ही बड़ी यू नो हिस्ट्री थी। ऑफ कोर्स उनकी रिसर्च ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को काफ़ी आगे बढ़ाया और आज भी साइंटिस्ट उनके काम को काफ़ी यू नो से काफ़ी इंस्पायर होते हैं। सो यस, यू कैन से दैट इनका एक फ़ोटो भी है जो उन्होंने बनाया था, जहाँ पे उन्होंने गैलेक्सी के बारे में रिसर्च भी की थी। करीबन 100 रिसर्च पेपर्स पे उन्होंने एक पब्लिश भी किया था, जो कि 14 साल एकेडमिक करियर था, और वाज द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट्स ऑफ द एनी जंप कैनन अवार्ड, जो कि उन्हें 1974 में मिला था। वैसे उनकी और बताएं उनकी लाइफ के बारे में, तो 23 मार्च 1981 में उनकी डेथ हो गई थी, जब वो सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स के ही थे, आफ्टर बैटल ऑफ मिलेनोमा। जी हाँ, फॉलोइंग हर डेथ जो कि साइंटिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशन से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, उनके जो भी रिसर्च थे उनको काफ़ी अच्छे से उसे रखा, एंड उसकी वजह से जो फ्यूचर के जो साइंटिस्ट थे या फिर साइंटिस्ट को आगे जो प्रोसेस किया था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था। बढ़िया, हमें फ़ोन आ रहा, एक बार फ़ोन भी पिक कर लेते हैं।
1: हेलो।
0: लगता है फोन की आवाज नहीं आ रही उनकी, बट कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए, हम आपको और भी खबर लेके आएंगे चटनी शॉर्ट्स के बारे में, यानी कि लेटेस्ट खबरें क्या है आज की वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात कर लेते फटाफट से खबर। सबसे पहले वेदर अपडेट। साउथ आइलैंड के ड्राइवर्स के लिए वार्निंग जारी की गई है। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और आईसी रोड्स की वजह से कई रोड्स टेम्पररली क्लोज कर दी गई है। अथॉरिटीज ने अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करने को कहा है और एक्स्ट्रा कॉशियस रखने की एडवाइस भी दी है। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है। एम्बर्समैन ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने क्लाइमेट रिलेटेड नोट को लेकर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि OIA का ब्रीच किया है और इस इश्यूज पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज से न्यूजीलैंड में लेटर भेजना और महंगा हो गया है। स्टैंडर्ड लेटर्स की पोस्टिंग का अब कॉस्ट जो है वो 3.6 हो गया है और न्यूजीलैंड पोस्ट को उनका कहना है कि लेटर वॉल्यूम्स लगातार कम होने और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही है। इंटरनेशनल अपडेट में स्कॉटलैंड के ग्लासगो हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सस्पेक्टेड इबोला वायरस के लिए टेस्ट किया जा रहा था और फिलहाल अथॉरिटीज कंफर्मेटरी टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। मोनाको से भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जहां एक एक्सप्लोजन में रशिया ने लिंक्ड एक यूक्रेनियन बिजनेसमैन के इंजर्ड होने से की रिपोर्ट बताई है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। स्पोर्ट्स में ऑल ब्लैक्स ने अपकमिंग सीजन के लिए एक नया अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट किया है कि हिंट फैंस को उम्मीद है कि इस बार टीम को एग्रेसिव स्टाइल में नजर आएंगी। एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए गुड न्यूज, जुलाई में TVNZ पर कई नए शोज और स्पोर्ट्स कवरेज देखने को मिलेगी जिसमें स्पेशल इंटरव्यूज और ब्लॉकबस्टर कंटेंट आपको देखने को मिल सकती है। फीफा वर्ल्ड कप में कॉर्ट दिलीप वॉयर वर्सेज नॉर्वे में नॉर्वे जीत चुकी है। फ्रांस वर्सेज स्वीडन में फ्रांस 3-0 से बढ़त हासिल की। मेक्सिको इक्वेडोर का मैच 1 बजे शुरू हो जाएगा।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर की हालचाल, 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 0% चांस है बारिश के, थोड़ी हवा के झोंके आपको मिल सकते हैं, लेकिन आज का सेंस रहेगा 5:16 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही बढ़िया बातें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत ही नॉस्टैल्जिक इमोशनली वाली बातें हो रही हैं। कुछ कॉल्स भी आए थे मुझे ऑफ एयर, उन्होंने कुछ बातें की हैं, बातें शेयर की हैं बढ़िया से। जब मैंने बोला है कि डू कम ऑन एयर ताकि लोगों को भी, बट वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो शर्मा गए कि नहीं यार पब्लिकली तो हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यू कैन शेयर मी। सो यस, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं इसमें, मैं जब जब आपको मौका दूँ। मैं में काफ़ी ऐसे मौके देने वाला हूँ जहाँ पे आप जीतेंगे, बहुत ही ऐसे मौके जहाँ पे आप डबल पास जीत सकते हैं और उसके थ्रू आप जा सकते हैं शोज में। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी शोज हो रहे हैं उनके बारे में बात होगी। बट यस, ये चलाते हैं ओए ओए पहला गाना और इसके बाद आप बने रहिए, बिकॉज अपनी यादों को फाइनली मुझे मिल चुका है गाना जो कि शान ने गाया था एंड शेल्विन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो ये गाना सुनना चाहते हैं। तो यस शेल्विन, आपके लिए भी इस लाइन में ही गाना मैंने डाल दिया है। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू अस, अपनी यादों को। बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने जस्ट सुना अभी।
0: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक। सो ये था अपनी यादों को शान के द्वारा किया हुआ गाना, गाया हुआ गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। वैसे यस, आप मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए 5599 पे और बताइए इफ एनीथिंग हैपेंड टू यू इन द रीसेंट टाइम्स, रीसेंट डेज। वैसे लकीली आज कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो आई एम रियली हैप्पी टुडे विद नो क्वेश्चंस कि भाई क्यों ऐसा है, नो कंप्लेंट्स ऑनेस्टली। सो यस, लेकिन अगर आपके पास हुआ कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, फील फ्री आप यहाँ पे बताइए और शेयर करिए हमारे साथ। यू कैन इवन सेंड द मैसेजेस ओवर हियर और यू कैन इवन यू नो कॉल मी 0800-004-866 पे, और वहाँ पे भी आप बता सकते हैं थोड़ी देर में। जी हाँ, तो आप बस रेडी रहिए और आई विल वेट फॉर योर कॉल और मैसेजेस।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
8: Here for all things Brinter. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
9: Discover the magic at Go Bananas Chaike, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: So jaldi join करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
10: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
11: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
1: Lunchbox with Ketan.
15: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम। Lunchtime Rant Line.
0: Welcome back. चलिए बात करते हैं कुछ मैसेज की जो मुझे मिले हैं यहाँ पे आज लंच टाइम रेंट लाइन के लिए। Doesn't look like they have got anything to do with the lunch, but yes. Morning traffic. Who else got stuck in Auckland traffic this morning and ended up 15 minutes late for work? मैं तो टाइम पे आ गया था भाई, मैं टाइम से पहले आ गया था, टाइम से पहले नहीं बहुत ज़्यादा पहले आ गया था। लाइक ऐसा लग रहा था कि पुनर्जन्म हुआ है मेरा प्री। एनीवेज, गेटिंग आउट ऑफ वार्म बेड ऑन दिस फ्रीजिंग मॉर्निंग शुड क्वालिफाई एज अ वर्कआउट। यार मैं ठंड नहीं बोलूंगा इसे यार, जो ऑकलैंड अभी फेस कर रहा है, आई डोंट थिंक सो दिस इज कोल्ड एट ऑल। आई नो मैं यार इनमकागिल रह के हूँ 8 साल, तो यार वहाँ की ठंड के सामने तो ऑकलैंड की ठंड कुछ भी नहीं है। बट यस, यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन है यहाँ पे जिन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा कोल्ड एक्सपीरियंस किया है, फील फ्री टू डू दैट. ऑफिस वाईफाई नथिंग रुइंस योर मॉर्निंग लाइक द ऑफिस इंटरनेट डिसाइडिंग इट्स ऑन लीव. वाईफाई ना मिले तो भाई दिक्कत तो देता ही है, बट आजकल पैक भी लोग काफ़ी अच्छे से डलवाते हैं, काफ़ी अनलिमिटेड वाला डेटा डलवाते हैं. मेरे डेटा में देखो, वैसे यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करिए और बताइए कि आपका जो डेटा सेव्ड है जो यू नो ओवरराइट हो जाता है एंड देन कैरी ओवर हो जाता है डेटा, मेरा अभी हो चुका है अराउंड 600 गिग. तो किसी को चाहिए हॉटस्पॉट तो मुझे बताना, या फिर किसी कोई है यहाँ पे जिसका मेरे से ज़्यादा है बताइए मुझे, आई वुड लव टू हेयर दैट. पार्किंग स्पेंट लॉन्गर लुकिंग फॉर पार्किंग देन एक्चुअली शॉपिंग, ये रवि ने लिखा है मैसेज. ट्रैफिक का तो यही सीन होता है, लाइक यू एक्चुअली डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जो मेन रीजन होता है जाने का, बट यू एंडिंग अप लाइक सो मच ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग इन टू इन्वेस्टिंग या वेस्टिंग पता नहीं, बट इन टू जस्ट लुकिंग फॉर पार्किंग. वर्क मीटिंग्स, दैट मीटिंग्स टूडे रियली कुडंट हैव, कुड हैव बीन एन ईमेल, ये पुष्पा जी ने लिखा है. थैंक यू सो मच पुष्पा जी एंड थैंक यू सो मच रवि भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस. बट यस, बाकियों में बाकियों ने नाम नहीं लिखा है तो ऑफकोर्स आई डोंट नो किसने भेजा है, बट थैंक यू सो मच अगेन. अगर आप और भी मैसेजेस भेजना चाहें तो फील फ्री टू डू दैट, हम और भी उसके बारे में बात करेंगे. बट अभी के लिए एंजॉय करो ये टॉप हिट ऑफ द आर का गाना तुझको.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Bollywood.
1: हम जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पॉडकास्ट की. हमने एक AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांडे से बात की है, जो कि एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड एन AWS कम्युनिटी बिल्डर. उन्होंने रुजबेन सैंडी से बात की है, जिसका पॉडकास्ट लिंक ऑडियो लिंक है वो आ चुका है. आप ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए. AI की दुनिया के बारे में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बातें की हैं, बहुत ही नॉलेज वाली बातें की हैं. काफ़ी ऐसे कंसर्न्स भी होते हैं ऑफकोर्स हर एक के जहन में कि यार AI आ चुका है, हमारी जॉब जाएगी नहीं जाएगी, हमारी फ़ोटोज़ हम जा रहे हैं तो लीक ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं. प्लस ऑफकोर्स AI अगर आप सीख जाओ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है और कहाँ कहाँ स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड की है. मैं तो कहता हूँ काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट से ज्यादा ये नॉलेज वाला एजुकेशनल पॉडकास्ट है. डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए. आप ड्राइव लिखिए, 5599 भी भेज दीजिए. बट यस, मेक श्योर आप रोवा ऐप भी डाउनलोड करिए, बिकॉज उसके जरिए आप हमें सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी. 24/7 आप हमें सुन सकते हैं. काफ़ी म्यूजिक स्टेशंस भी हैं आपके लिए जो हमने बनाई हैं वहाँ पे. आप राहत फ़तेह अली खान से लेके बॉलीवुड के 80 दशक के 60s 70s के एंड देन ऑफ कोर्स फीजी कीर्तन फीजी भजन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी.

0: अभी के लेटेस्ट खबर यह है कि नेशनल पार्टी और ग्रीन पार्टी के बीच टैक्स पॉलिसीज को लेकर नए पॉलिटिकल डिस्प्यूट शुरू हो चुके हैं। नेशनल ने सोशल मीडिया पर एक अटैक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें क्लेम किया गया है कि ग्रीन्स की टैक्स पॉलिसी के तहत अगर $160,000 कमाते हैं तो उससे अपनी इनकम को 45% टैक्स देना पड़ेगा। ग्रीन पार्टी ने इस क्लेम को मिस इन्फॉर्मेशन बताया। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, यानी कि 45% टैक्स सिर्फ 160,000 से ऊपर की इनकम पर लगेगा, पूरी सैलरी पर नहीं। ग्रीन्स ने इस नेशनल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। और इस बीच नेशनल की फाइनेंस स्पोक पर्सन निकोला विलिस ने कहा है कि उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था, इसीलिए उनकी एक्यूरेसी पर कमेंट नहीं कर सकते। ये मुद्दा इलेक्शन कैंपेन के दौरान पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर फिर से डिबेट का हिस्सा बन चुका है। वाओ, दैट इज क्रेजी ब्रो, क्रेजी। एक किसी एड को बिना देखे बताया गया है मिस इन्फॉर्मेशन। सो यस, काफ़ी सोचने वाली बात है कि आप बिना कुछ देखे यू जस्ट क्लेम समथिंग कि ऐसा कुछ हुआ है जो ऑब्वियसली किसी को भी ट्रिगर कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या इस पे यू नो फीडबैक है? 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा, Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
1: MediaWorks complaints. How can I help?
2: My kids won't shut up.
1: I'm not sure that's our problem.
2: They keep reciting lines from one of your radio ads.
1: Aw, cute.
2: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
3: What do you want, son?
4: I want me some of that real southern chicken.
2: 28 times.
1: So where are you now?
2: Eating chicken.
5: Advertise with
6: MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
8: Kogan Mobile, true Aussie value.
7: Terms and conditions apply.
9: Danny didn't think he needed a DVS system.
10: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
9: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
10: Nah, only one room. It was just too noisy.
9: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं
12: इसके पीछे हम
0: लंच के मंच पे
13: बॉलीवुड की खबर से लेके आया हूँ कुछ खबर. एक्टर रणदीप हुड्डा, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग जानते होंगे. मैं उन्हें देखता हूँ जिस्म पार्ट टू से, आई थिंक पार्ट टू कौन सा था उसमें देखा था हमने पहली बार, जिसमें सनी लियोनी भी एक्ट्रेस थी और बहुत ही कमाल के एक्टर है. मैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है और फेवरेट तब से भी होने लग गए जब इन्वेकागिल में एक मेरा दोस्त था, वो कज़िन है रणदीप हुड्डा का, ऐसा ऑब्वियसली वो कहता था. आज तक कभी हमें बात करने का मौका तो नहीं मिला, बट ऐसा वो कहता था. बट उसने फोटो तो दिखाया था, तो आई अज्यूम कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि उसने फोटो दिखाया है फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, रणदीप हुड्डा के साथ. तो मे बी आई एम नॉट श्योर. बट येस, बाय न्यूज इज, एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने सलमान खान ने करियर के शुरुआत दिनों में एक खास सलाह दी थी. सलमान ने उनसे कहा था कि ऐसे रोल्स चुनो जहां वो हमेशा हीरोइक दिखें और एक ही तरह की इमेज मेंटेन करें. उनका मानना है कि इससे स्टार इमेज बनने में काफ़ी मदद मिलती है. रणदीप ने कहा है कि उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी थी और लेकिन उन्होंने इस एडवाइस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से बार बार एक ही टाइप के रोल करना बोरिंग हो जाता है. और उनका कहना है कि वो हर फिल्म में अलग कैरेक्टर और नई चैलेंज को लेना पसंद करते हैं. रणदीप ने यह भी कहा है कि सलमान की एडवाइस प्रैक्टिकल थी और उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी को वर्सेटाइलिटी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया. इसी वजह से आज रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल, वन ऑफ द सबसे नॉट जस्ट वर्सेटाइल बट वन ऑफ द सबसे वर्सेटाइल एक्टर माना है, उसकी लिस्ट में माना जाता है. सो यस, आई एम एक्चुअली इन इट. काफ़ी वर्सेटाइल है. वॉट यू थिंक, आपको कैसा लगता है? वैसे उनकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगी आपको, ये बताइए मुझे. यार काफ़ी मूवी है यार, कौन सी मूवी नहीं हो जिसमें वो नहीं है जो इम्पैक्ट करे. ऑफकोर्स जिस्म में अच्छी एक्टिंग करी, उसके बाद ये कौन सी मूवी थी जिसमें इमरान हाशमी होता है, वो पी लो तेरे गीले, वो गाना भी है, नाम याद नहीं आ रहा है मूवी का, मुझे प्लीज़ याद दिला दे 555 पे.
0: दिल से

0: क्या हाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में, लंच बॉक्स शो इट इज। एंड आप सुन रहे हैं मुझे हम 104.2 एफएम के जरिए, जहां पे चलते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने। वेल यस, आज जो ताज़ा चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो तो ऑफकोर्स ये है कि एक बहुत ही बढ़िया आपको अनरियल सनसेट जैसा फील होने वाला है, स्ट्रीट फूड दैट मेक्स यू अप एवरी सेंस। जी हाँ, जो आपको हमेशा जगाए रखे, साथ में साउंड ट्रैक ऑफ वेव्स, लाफ्टर एंड लेट नाइट स्टोरीज, ये भी आपको मिलने वाला है। अ जर्नी वेयर डेज एवरी डेज फील लाइक अ मूवी सीन, और उसके साथ ही ऑफकोर्स हर दिन आपको एक नए चेहरे, नई दोस्ती और काफ़ी ऐसे मौके जहाँ पे आप मेमोरीज बनाएंगे। एंड ऑफकोर्स यू वोंट फील लाइक कमिंग बैक। एक ही ट्रिप लेकिन दो डिफरेंट ट्रॉपिकल वर्ल्ड्स, और मोमेंट जो है वो ऑफकोर्स एंडलेस है। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? ऑफकोर्स इट इज़ मोर साउंडिंग लाइक अ मूवी सीन, राइट? बट नो, इट इज़ ऑल अबाउट कुड बी योर स्टोरी। कैसे आपका ये ईस्टर 2027 का हो सकता है सीन? क्या सीन? वेल, आपको पता पड़ जाएगा कल, यानी कि 5 बजे ड्राइव शो में ज़रूर पता पड़ेगा। सो यस, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट स्टे ट्यून, स्टे लिसन टू अस, स्टे कनेक्टेड टू अस, और आपको ड्राइव शो में वेडनेसडे 2 जुलाई को, सेकेंड जुलाई को कल आपको 5 बजे ये मिल जाएगा पता कि भाई एग्जैक्टली हम इतने दिनों से क्या बातें कर रहे हैं, किस एकदम अनरियलिस्टिक चीज़ों की बातें कर रहे हैं। वेल, उस चीज़ को रियलिटी बनाने में हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, एंड बस आप स्टे ट्यून रहें, स्टे कनेक्टेड रहें। मेक श्योर आप कल 5 बजे फिर से ट्यून करें, ताकि आपको पता पड़ जाए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग हम बता रहे हैं आपको।
1: बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और अभी लेटेस्ट खबर बात कर लेते हैं, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ भी है ये। और न्यूजीलैंड में इलीगल टोबैको नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, बिकॉज कस्टम्स पुलिस और हेल्थ न्यूजीलैंड की जॉइंट ऑपरेशन ने ऑपरेशन क्लेरिफाई के तहत नॉर्थ आइलैंड में कई जगहों पर रेड की है। और अथॉरिटीज़ ने 21 रेड्स के दौरान रोटोरुआ, वाइकाटो और ऑकलैंड के डेरीज और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया है। इस ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगभग 13,80,000 इलीगल सिगरेट्स को बरामद किया गया है। कस्टम्स के मुताबिक इन सिगरेट्स पर 2 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज़्यादा की टोबैको एक्साइज ड्यूटी बचाई गई थी। इसके अलावा करीब $170,000 कैश भी सीज किया गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ज़्यादातर सिगरेट्स एशिया से स्मगल की गई और नेटवर्क अपना डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ाने की प्लानिंग कर रही थी। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि इस तरह की इलीगल ट्रेड टोबैको वाले से ना सिर्फ सरकार को रेवेन्यू का नुकसान पहुंचता है बल्कि पब्लिक हेल्थ और लेजिटमेटिक बिजनेसेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वेल यस, दिस इज द न्यूज़ केम आउट आज की है। तो यस, दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन फाउंड। बट लेट्स टॉक अबाउट अभी की लेटेस्ट, बिकॉज अभी कुछ देर पहले पता पड़ा था कि जो मैच था फीफा का मैक्सिको वर्सेज इक्वेडोर, उसमें डिले का हुआ था, लेकिन यस नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड। 15 मिनट हो चुके हैं, सो लेट्स सी क्या स्कोर रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, नॉर्वे वर्सेस स्कॉटे के बीच में नॉर्वे ने 2 गोल करके जीत ली है मैच 2-1 से। फिर फ्रांस ने भी बाजी मारी है स्वीडन के अगेंस्ट 3-0 से। और अभी देखते हैं मैक्सिको वर्सेज इक्वेडोर के बीच क्या रिजल्ट रहता है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply. आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले मल्टीटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिव अवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट स्टोर वाइड। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट मल्टीटन मेगा बॉटनी।
3: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
4: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
8: No way.
9: We in trouble?
7: Nah, it's BP Plus.
9: What is that?
7: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months. Plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
12: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jo. Lunchbox with Ketan.
13: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
12: इसके पीछे?
11: हम।
12: Skip your replay.
14: Well, yes, Auckland, आप रेडी हो जाइए एक बहुत ही बढ़िया लाफ्टर की शाम और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ शो गुजबानी एक्सचेंज ऑफर, जहां पे स्टारिंग कर रहे हैं लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया। Well, yes, बहुत ही अमेजिंग शो है ये, बहुत ही एंटरटेनिंग भी है। सिद्धार्थ रंडेरिया एक लिख के आ रहे हैं उनके प्रोडक्शन के तहत गुजबाई का शो गुजबाई नी एक्सचेंज ऑफर, जो कि एक अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं, काफ़ी हर एक पल में आपको हंसने का मौका मिलेगा। एक सबसे खास बात, गुजराती ह्यूमर भी भरपूर है इसमें। एक से बढ़कर एक डायलॉग, एक से बढ़कर एक कॉमेडी, एक से बढ़कर एक एक्टिंग की तो बात ही मत करो। क्या अमेजिंग शो होता है, क्या अमेजिंग एक्टिंग करते हैं। वेल यस, इनकी खास बात यह है कि ये इनका शो जो है हमेशा हाउसफुल रहता है। तो यस, इस बार आप ना वंचित रह जाए टिकट लेने में, तो आप जल्दी से जाइए premierTickets.co.nz पे और टिकट खरीद लीजिए। 3 जुलाई को होने वाला है 7:30 बजे, यानी कि परसों, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। अमेजिंग शो इट विल बी फॉर श्योर। वेल, थोड़ी देर में मैं आपको करण ओजला के लिए एक गाना सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिसे सुन के आपको मुझे बताना है कि वो गाना कौन सा है। मतलब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं पूरे गानों में कहीं भी सेंटर से, साइड से, स्टार्टिंग से, एंड में कहीं पर भी चला सकता हूँ वो गाना, और आपको सुनते ही 5-10 सेकेंड के अंदर आपको फटाफट से मुझे मैसेज भेजना है KA लिख के 5599 पे। KA बोले तो इनिशियल है करण ओजला का, KA, जी हाँ, 5599 पे विद द राइट आंसर आपको भेजना पड़ेगा, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाए और उनके शो जो 25 अगस्त को होने वाला है उसके लिए आप डबल पास जीतने की होड़ में लग जाए।
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए अब टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको मौका दूं और आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें ताकि आप जीत सकते हैं 25 अगस्त को होने वाले स्पार्क एरिना में करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर, जी हाँ, ऑकलैंड में होने जा रहा है। वेल यस, एक गाना चलाने वाला हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ी देर गाना चलाने वाला हूँ, बट यस उससे पहले आपको बता देता हूँ कि वो आ रहे हैं यहाँ पे 25 अगस्त को, जहाँ पे वो बहुत ही बढ़िया चार टॉपिंग हिट्स, काफ़ी एंथम्स और फेवरेट, उनके फैंस के फेवरेट गाने यहाँ पे गाने वाले हैं। साथ में जॉइनिंग हिम एज ए स्पेशल गेस्ट हिट मेकर इक्की, जी हाँ इक्की भी आ रहे हैं यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के लिए। सो यस, द नाइट है जो आपको डेफिनेटली नहीं भूलनी चाहिए, जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट पे hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे जाके, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप कैसे कब टिकट खरीद सकते हैं। बट ये रहा गाना, जहाँ पे आप ध्यान से सुनिए और मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए KA with the right answer 255999।

सो यस, ये गाना मैंने अभी जो चलाया है, जल्दी से मुझे इसका सही जवाब की, इस गाने का टाइटल क्या है, मुझे 5599 पे भेज दीजिए, के ए लिख के। जी हाँ, किसी ने मुझे मैसेज भी भेजा है, सिर्फ के ए, सिर्फ के ए से कुछ नहीं होगा, के ए के बाद आपको ये जो गाना है। इसका मुझे भेजना है राइट आंसर, इस गाने का टाइटल मुझे 5599 पे, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और इस पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो ऑकलैंड में होने वाला है उसका आप हिस्सा बने फॉर फ्री, वो भी डबल पास यार, एक नहीं दो जने जा सकते हैं।

Welcome back. आपने काफी लोगों ने मैसेज किया है रिगार्डिंग जो करण औजला का मैंने गाना चलाया था, बट यस जस्ट टू लेट यू नो, ये ना ही तौबा तौबा है और ना ही बॉयफ्रेंड है, जी हाँ ये कोई और ही गाना है। सो यस, अभी भी आपके पास मौका है, आप मुझे के ए लिख के 5599 पे विद द राइट आंसर भेज सकते हैं। बट यस, ये रहा दूसरा मौका, ये भी सुन लीजिए ध्यान से बिफोर यू राइट डाउन एनीथिंग। ऑकलैंड के लिए एक बहुत ही बढ़िया यू नो एक इवेंट होने जा रहा है, जहां पे आ रहे हैं दो लेजेंडरी कपिल शर्मा के शो से भी काफी वायरल हुए हैं, कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव इन ऑकलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 18 जुलाई को इनका होने वाला है सेम स्टेज जहां पे थोड़ी देर पहले एक मैंने गुज्जू भाई का बताया था, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आप टिकट ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके, आफ्टर पे ऑप्शंस भी वहां पे अवेलेबल है। ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव प्रेजेंट किया जा रहा है, आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। और ये हमारे लिसनर के लिए मौका ये है दैट मैं यहाँ सवाल करने वाला हूँ आपको और आप मुझे जवाब दीजिएगा 5599 पे। यहाँ पे कोई इनिशियल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है मुझे और आप अपना नाम भी लिखिए ताकि मुझे एटलीस्ट पता पड़ जाए कि नाम मतलब रिप्लाई जो कर रहा है वो कौन है। सो यस, राजीव ठाकुर कौन से कॉमेडी शो से फेमस हुए थे? ये कपिल शर्मा नहीं है, उसके पहले का इनिशियल स्टेज पे राजीव ठाकुर कौन से शो से फेमस हुए थे? एक रियलिटी शो था, तो वो मुझे बताइए 5599 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ राइट आंसर ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें और द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर के शो का डबल पास आप जीत सकें। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
3: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karangahape Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
6: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
7: इसके पीछे.
8: हम.
9: TikTok.
10: टेकटॉक के सेगमेंट में स्वागत है. एक बड़ी खबर है, उबर बैक इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक रेंटल कंपनीज लाइम ने अपना USIPO $25 पर शेयर पर प्राइस कर दिया है. ये प्राइस कंपनी के पहले से बताए गए $24 से $26 की रेंज के बीच में है. वैसे इस IPO के जरिए लाइम ने करीब $167 मिलियन रेज की है. कंपनी ने लगभग 6.68 मिलियन शेयर्स बेचे हैं और अब इसका स्टॉक जो नैस्डेक है उस पर लिस्ट होने जा रही है. वैसे लाइम, जो जिनको नहीं पता है, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आपने देखा होगा टू व्हीलर जो बाहर चलाते हैं स्पेशली CBD में. तो एक कंपनी है जो ये स्कूटर्स की सर्विस प्रोवाइड करती है. नॉट द वन हु बिल्ड इट आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या सो लाइम जो पहले न्यूट्रॉन होल्डिंग्स के नाम से जानी जाती थी, दुनिया भर के कई शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स की रेंटल सर्विस चलाती है. इस IPO को इस बात का भी संकेत माना जाता है कि US में IPO मार्केट फिर से एक्टिव होने जा रहा है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नए लिस्टिंग में बढ़ते जा रहा है. वेल, आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है दैट US एक्चुअली गोइंग इनटू कलेक्टिंग द फंड्स ताकि वो बिल्डअप कर सके. ये काफ़ी चीज़ हो रही है, मैंने देखा है IT सेक्टर में, AI वर्ल्ड में. व्हाट यू थिंक, न्यूजीलैंड का कुछ ऐसा है बैकिंग? अगर आपके जहन में है तो मुझे बताइए 5599 पे. बट यस, मैं एक्टिव रहूँगा. बट रेडियो शो से मैं आपको अलविदा कहता हूँ आज के. मैं फिर कल मिलूंगा आपको 12 से 3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड प्लीज़ अपडेट योरसेल्फ इन द AI वर्ल्ड. काफ़ी कुछ है सीखने को वहाँ पे भी.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले मल्टीटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स टू वाई। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट मल्टीटन मेगा बॉटनी।
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
6: Thank you.
7: It's all I can think about.
6: What does it sound like?
7: Yeah, I'd rather not.
6: Go on, why don't you have a crack?
7: Okay, got a plumbing problem.
6: Oh, I need a bit more than that.
7: They've got your back.
6: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
7: Oh, okay.
8: There's no better plumber to give it a crack.
6: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
7: No, I want a plumber.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
11: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
12: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Prime Minister has apologised to the Chief Ombudsman over the withholding of information from an environmentalist group. Torben Akel reports.
14: The matter relates to a briefing note prepared by Fonterra and Z Energy in 2024 that was either hand-delivered or sent to the personal email of the then Chief Policy Advisor in the PM's office. The Environmental Law Initiative raised concerns after the note wasn't released by the PMO while it was in a court case with Fonterra. The Chief Ombudsman says the PM's office should have known about it and released it.
13: The government is moving to reduce red tape for toy importers. Planned changes would mean that toys meeting US or EU standards would be compliant here too. New rules have kicked in to help people take advantage of cheaper power rates. Big power companies must now provide customers with plans that reflect the different costs of electricity throughout the day. Energy Minister Simeon Brown says transparency is crucial for fairness.
15: The power companies, they've taken this on board. We're seeing the plans being put forward.
13: Auckland Council is investigating reports of dead fish in a Campbell's Bay stream on the North Shore. Testing teams believe there was some sort of pollution event about a week ago, but there are no signs of an ongoing toxic discharge. To sport a Super Rugby Pacific shake-up, the 10 teams will play 16 matches. The number of byes drops from 2 to 1. The top 6 still qualify for the playoffs. The top 2 go straight into the Week 2 semis. The Chiefs have confirmed 12-test loose forward Samapenifenau is leaving to take up an opportunity in Japan. And a football update is brought to you by Hisense. The late game at the World Cup, Mexico leads Ecuador 2-0 right on half-time.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.4 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 4 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी ब्राइट वाज अ गुड डे. कल का वेदर भी ऐसा ही रहने वाला है. कमिंग वीकेंड सैटरडे को बारिश होने के चांसेस रहेंगे.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
1: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में, और 4 के बाद ड्राइव शो शुरू हो जाएगा और मेरा साथ यहाँ पे रुजवे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप? जुलाई में एंटर कर चुके हैं. इट इज 1st July. आज के दिन में अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करें, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. कोई और खास दिन है आज आपका तो वो भी आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए 5599 पर. आज शो में वैसे कुछ न्यूज़ भी है जो आपके आसपास हो रहा है, और अभी तो फीफा पे जो अपडेट्स हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसके बारे में अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी. बहुत ही कमाल के मैचेस वैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप में हो रहे हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो है ये सो फार हमें मिले हैं. आज मॉर्निंग में फ्रांस, आज नॉर्वे का जो मैच हुआ था, नॉर्वे की 2-1 के साथ जीत हुई थी. फ्रांस स्वीडन के बीच में फ्रांस की 3-0 के साथ एक्चुअली में आज जीत हुई. एंड करंटली हाफ टाइम हो चुका है मैक्सिको के मैच का, यूकेटोर के साथ. हमेशा इस नाम के साथ अटकती हूँ मैं. सो मैक्सिको ने अभी तक 2 बना लिए हैं. 2-0 के साथ मैक्सिको फिलहाल लीड कर रहा है. So let's see बाकी हाफ ऑफ टाइम में क्या होता है.
4: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. विजिट indelibleHomes.co.nz.

0: Andy. 3:16 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड आपके सुपर सिटी में ट्राइविजन इवेंट्स वैसे बहुत ही एंटरटेनिंग शो लेके आ रहे हैं, द ग्रेट कॉमेडी नाइट. कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर दोनों लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. 18 जुलाई को ये शो होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, तो अपनी टिकट्स आप बुक कर लीजिए फ्रॉम बुक माई इवेंट डॉट कोरोड एनजेड. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको डबल पास जीतना है, इस ड्रॉ में शामिल होना है, तो अभी भी आपके पास, अब मैं आपको एक्चुअली में मौका देने वाली हूँ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. वेल, आपको करना क्या है, आप बहुत सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि ये जो इवेंट होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी अभी आपको दी है, जहाँ पे ट्राइविजन इवेंट्स कृष्ण अभिषेक राजीव ठाकुर को लेके यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने अभी आपसे कौन सी डेट शेयर की है, किस दिन ये दोनों लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. ये टेस्ट है कि कितने ध्यान से आप मेरी बात को सुनते हैं. ड्राइव कीवर्ड के साथ किस डेट को दोनों लाइव परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे ऑकलैंड में, ये आपको लिख के भेजना है 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है.
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 321 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे आज से कुछ प्राइसेस जो है ये इंक्रीज हुए हैं. फ्रॉम 1st जुलाई आज से द प्राइस ऑफ सेंडिंग अ स्टैंडर्ड लेटर इन न्यूजीलैंड ये इंक्रीज हुआ है $2.90 से $3.60. सो दैट्स बेसिकली 260% इंक्रीज एज कम्पेयर विद 2018 जब स्टैम्प कॉस्ट उस समय पर सिर्फ $1 की होती थी. नो वाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज पीपल सिंपली डोंट सेंड लेटर्स एनी मोर. सो ईमेल, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बिल्स जो है इसने ट्रेडिशनल मेल को एक्चुअली में रिप्लेस कर लिया है. तो लेटर वॉल्यूम्स जो है ये नीचे गई है, ड्रामेटिकली नीचे गई है ओवर द पास्ट 2 decades. इसका मतलब है कि द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पोस्टल नेटवर्क आर शेयर्ड अक्रॉस फार फ्यूर आइटम्स. तो जब चीज़ों की, जिन चीज़ों की हमें डिलीवरी करनी होती है वो चीज़ें अगर कम अमाउंट में होती है तो उसका फिर कॉस्ट वैल्यू एक्चुअली में ज़्यादा रहता है. सो इट्स कॉस्ट ऑलमोस्ट द सेम टू डिलीवर फ्यू लेटर्स. सो लेकिन उनको काम उतना ही करना पड़ रहा है लेकिन लेटर्स कम है. सो वेदर अ पोस्टी डिलीवर्स 100 letters और 20, दे स्टिल नीड व्हीकल्स, फ्यूल, स्टाफ, सॉर्टिंग सेंटर्स, डिलीवरी रूट्स. सो दीज कॉस्ट जो है haven't fallen with mail volume, so the cost per letter has risen. So this is the reason ki ye jo cost per letter hai iska increase hua hai. Parcels are booming though letters are shrinking. New Zealand Post ne ye bataya hai ki they now earn much more from the parcels because of online shopping. Well, parcels, they help the business. They don't fully offset the losses jo ki nationwide letter delivery network se ho raha hai. So basically wo uski cost cover nahi kar pata hai. So company has already reduced delivering frequency in some areas as well and they have closed some service centers as well. ये भी हुआ है. तो आपसे एक्चुअली में ये सवाल है मेरा, when was the last time you actually posted a handwritten letter? मतलब मेरे को तो खैर याद ही नहीं है मैंने कभी handwritten letter कभी post की होगी. मुझे इतना याद है बचपन में कि पोस्ट कार्ड आते थे घर पे, जो हमारे रिलेटिव्स ओवरसीज़ हुआ करते थे तो वहाँ से ऐसा पोस्ट कार्ड आता था. आई स्टिल रिमेम्बर वन पोस्ट कार्ड कि उस एरिया का वो पोस्ट कार्ड था और उसके पीछे ऐसे पूरी लेटर लिखी हुई थी एंड जो पोस्ट कार्ड है उसके ऊपर ऐसा सर्कल करके कहीं पे ऊपर लिखा हुआ था अपना घर, मतलब हमारा घर यहाँ पे. सो पोस्ट कार्ड्स मैंने देखे हुए हैं वाइल ग्रोइंग अप, लेटर्स आई एम नॉट श्योर. And when was the last time you actually posted a handwritten letter? या फिर आपको कभी handwritten letter मिली? When was the last time? Maybe वो आपके बचपन में होगा, while you're growing up, उस समय पर होगा. When was that? अगर आपको याद है तो शेयर कीजिए यहाँ पे 0800 00 हम पर. और किसकी लेटर आपको मिली थी? चाहे पोस्ट कार्ड ही मिला था, पोस्ट कार्ड, बिकॉज पोस्ट कार्ड के पीछे बेसिकली इट्स अ हैंड रिटन ओनली ना, लेटर ही होती है वो. सो वेन वॉज द लास्ट टाइम, यहाँ पे मैसेज करके भी आप बता सकते हैं 5599 पर, या फिर कॉल करके अगर कोई स्टोरी है इसके अराउंड वो आपको शेयर करनी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं. 0800 00 हम इज अ नंबर.
1: थोड़ा सा हॉल बना दे.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पे शशि शामिल हो चुके हैं अपना लेटर्स को लेके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। गुड आफ्टरनून शशि, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया बढ़िया। तो आप शेयर कर रहे थे अबाउट लेटर्स ना, कि आपको 15-20 साल हो चुके हैं लिखे या मिले लेटर?
1: लिखे हुए okay. मैंने मतलब हाथ से कभी चिट्ठी लिख के भेजी हो उसमें 15-20 साल हो गए। टाइप करके तो भेजी है बाद में भी, जैसे कभी कभी किसी को हार्ड कॉपी भेजनी होती थी, टाइप किया, प्रिंट किया और कुरियर कर दिया या मेल कर दिया। लेकिन एक 2023-24 में एक हमारी क्लाइंट थी जो हंगरी जा रही थी,
0: ओके,
1: तो उनको कुछ इमरजेंसी में कुछ करना था, वो मैंने उनको हेल्प किया और मैंने उनको बताया भी कि मेरी बड़ी कामना है कि मैं कभी बुडापेस्ट जाऊं, मतलब यूरोप में कुछ ऐसी जगह है जहां मैं कभी नहीं गया, उसमें बुडापेस्ट भी है। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड, आई होप यू विल मेक इट समडे। और कुछ दिन के बाद उनका एक पिक्चर पोस्ट कार्ड आया जिसमें पीछे एक फोटो था और उस तरफ उन्होंने लिखा था, शशि थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डिड एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन हंगरी समडे।
0: क्या बात है, सो कूल।
1: अब सडनली याद आया कि हैंड रिटन चिट्ठी एक वही आई है।
0: मैंने भी पोस्ट कार्ड ही देखा हुआ है, मतलब जो मेरे को लास्ट रिमेम्बर है, कोई अगर चिट्ठी में कोई याद नहीं है, पेरेंट्स को आई होगी जो मुझे नहीं पता है, बट आई रिमेम्बर पोस्ट कार्ड, बिकॉज पोस्ट कार्ड तो मतलब बाकी फोटोज के साथ पड़े होते हैं ना, तो यू कैन एक्चुअली सी, तो वो पोस्ट कार्ड मेरे पास अभी भी है।
1: अरे आप मेरी बेटी जो सबसे छोटा बच्चा है उससे भी काफी छोटी है, ऑब्वियसली आपने तो नहीं देखी, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत चिट्ठियां लिखी भी हैं, पाई भी हैं।
0: जी
1: और
0: जी,
1: कुछ बहुत प्यारी चिट्ठियां भी थी जो शायद लड़कियों ने लिखी थी।
0: अरे वाह, गोल्डन डेज।
1: गोल्डन डेज
0: सही है, ठीक है, अभी जाके ढूंढिएगा कहाँ पे चिट्ठियां।
1: अब कहाँ वो जगह, वो देश सब छोड़े हुए जमाना हो गया।
0: या 100%
1: हमारी तरह बुढ़िया ही होगी ना, अब क्या चिट्ठी देखनी,
0: ये भी है। सही है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। थैंक यू शशि, थैंक यू, बाय बाय बाय।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 3:39 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड मैंने न्यूज पढ़ी है अबाउट महिमा राजपूत. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट महिमा राजपूत, जो कि ग्लोबल अपना नाम बना रही है. शी इज अ 14-year-old इंडियन गर्ल हु इज एमिंग फॉर द मून, चांद के लिए राइट नाउ, लाइक लिटरली फॉर इट. सो एट 14-year-old महिमा राजपूत, जो कि क्लास 10 ग्रेड की स्टूडेंट है, ये रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है इंडिया में, वहाँ से है. शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिशन शक्ति सेट. ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेस प्रोग्राम है विच ब्रिंग टुगेदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज. 108 कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. इट्स अ ग्लोबल स्टेम इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, जहाँ पे स्पेस किड्स जो है ये वहाँ पे होते हैं, एंड टू इंस्पायर द यंग पीपल, स्पेशली लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में अपना जो करियर है वो भी आगे परस्यू कर सके. जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे रिसीव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन सैटेलाइट डिज़ाइन, स्पेस साइंस, मिशन प्लानिंग, डाटा एनालिसिस, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो सब चीज़ें. नो महिमा शी लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटी थ्रू हर स्कूल प्रिंसिपल एंड गाइडेंस टीचर, एंड देन शी कम्प्लीटेड 21 लर्निंग मॉड्यूल्स वहाँ पे, एंड काफ़ी लेसन्स थे, तकरीबन मोर देन 300 एक्चुअली लेसन्स थे विच कवर्स साइंस, सेटेलाइट, स्पेस मिशन, ये सब कुछ. सो आउट ऑफ 12,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट शी अर्न अ प्लेस इन द प्रोग्राम, जहाँ पे शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ लीडिंग इट इन द जो कंट्रीज़ की इतनी बड़ी लिस्ट है, 108 कंट्रीज़ की. सो इसी के कारण ये ग्लोबल वे में एक्चुअली में न्यूज़ बना रही है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. देखा जा रहा है कि ओवर द टाइम साइंस एंड स्पेशली स्पेस को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज़ के इंटरेस्ट आया है. पहले तो सिर्फ यू नो स्पेसिफिकली साइंस, बायो, केमिस्ट्री, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहता था, बट नाउ स्पेस साइंस एंड स्पेशली रॉकेट साइंस के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. मैंने रिसेंटली काफ़ी सुना है कि रॉकेट इंजीनियरिंग कुछ स्टूडेंट्स जो है ये करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सुपर्ब है. वेल, आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम था, कुछ आप करना चाहते हैं, या फिर राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग राइट नाउ, आपका क्या ड्रीम है, कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई फिर ऐसी लाइन है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? इट माइट बी अ क्रिएटिव लाइन एज वेल, इट माइट बी आर्ट की लाइन एज वेल, इट माइट बी फिल्म मेकिंग एज वेल, बिकॉज आजकल ना कोई भी फील्ड आप सिलेक्ट करो, आपको चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पर मिलती ही है. वेल, मेरे साथ है यहाँ पर जो शायद स्टूडेंट है. हाय सपना, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, रोशनी बात कर रही
0: है. रोशनी से बात करनी है. हाय रोशनी, हाउ आर यू?
1: दोनों स्टूडेंट्स हैं, रोशनी मेरा दोनों स्टूडेंट हैं.
0: या सो या रोशनी, सो व्हाट डू यू वांट टू डू?
1: आई वांट टू बी अ डेंटिस्ट.
0: यू वांट टू बी अ डेंटिस्ट, वाओ. और उसका रीजन क्या है?
1: पर्सनली मैंने बहुत स्ट्रगल किया है विद माय टीथ. आई हैव हैड मल्टीपल सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स और आई वांट टू हेल्प अदर पीपल थ्रू दैट.
0: Oh, wow.
1: And I want them to
0: dentist
1: achieve
0: पता है ना, like dentist जो होते हैं सबसे ज्यादा कमाते हैं. रोशनी ही एकदम सही लाइन पकड़ी है.
1: That's what everyone says. See, being a Sindhi, that is the most important aspect.
0: Exactly. ये तो पहली लाइन होनी चाहिए थी. पैसा कमाना है.
1: चंडी मेगा भी है साथ में.
0: Hi Mega, how are you? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. सुमेगा, आपको क्या बनना है?
2: कैंसर डॉक्टर.
0: ओह वाओ, कैंसर डॉक्टर. एंड व्हाट इज द रीजन? उसका कुछ रीजन है आपके पास?
2: मेरी जो दादी थी वो मर गई कैंसर, उनके पास कैंसर था. और ये जो कैंसर की है वो स्प्रेड
0: हो. ओह, आई एम सो सॉरी. ओके, तो आपको इसके ऊपर स्टडी करनी है एंड इवेंचुअली डू समथिंग अबाउट इट, कि इसमें आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, या यू नो लाइक मेडिकल लाइन में कैसे हेल्प कर सकते हो आप.
1: यस,
0: या दिस इज सो कूल. मेरे को लग रहा है ना कि रोशनी मेघा में से मेघा इज द मोर इमोशनल काइंड ऑफ किड एंड रोशनी इज द मोर ऑफ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ किड.
1: वो सिंधी ब्लड है ना,
0: सिंधी
1: ब्लड है तो दोनों ही सिंधी. बट मेगा रोशनी थोड़ी प्रैक्टिकली सोचती है चीजों को.
0: एंड अभी मेगा छोटी भी है ना, तो शी इज लाइक
1: मेगा छोटी. हाँ, वो दैट मैटर्स,
0: वो मैटर करता है. अभी 10 सालों में देखते हैं कि दोनों के फील्ड क्या होते, मतलब मेगा का क्या आंसर
1: क्या होता है. राइट
0: चेंज होगा, बहुत चेंज होगा अभी ना.
1: बिल्कुल सही बात है, राइट एग्जैक्टली.
0: आपको क्या था रोशनी, आपको क्या बनना था?
1: मुझे सपना सैडली मेरा तो था एयर होस्टेस करना था, बट वो घर की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया. हाउसवाइफ ही हूँ मैं तो. काम बहुत किया है शादी से पहले, 17 साल पहले बहुत काम किया मैंने.
0: लेकिन अलग अलग जगहों पे सबसे बड़ा काम कर रही हो ना, हाउसवाइफ भी सबसे डिफिकल्ट जॉब.
1: राइट वो तो है.
0: सही है. गुड वन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सपना. बाय रोशनी. बाय मेघा.
1: बाय
0: बाय.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल. फील्स लाइक 14 डिग्रीज. ब्राइट ब्यूटीफुल सनी डे इन आवर सुपर सिटी. इज ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 4 डिग्रीज टुनाइट. कल का ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्रीज तक का. आज 5:16 पे होगा सनसेट. पार्टली क्लाउडी होगा, कुछ कुछ जगहों पे लाइट विंड्स का साथ भी होगा.
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
1: आज है 1st of July एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. फाइनेंशियल ईयर नया आज शुरू होता है काफ़ी लोगों का.
4: ओके,
1: तो उसके लिए हैप्पी. लेकिन काफ़ी लोगों का मिड ईयर भी अभी शुरू हुआ है ना.
4: या बाकी सब नॉर्मल लोगों का मिड ईयर ही शुरू हुआ है.
1: नॉर्मल लोगों का मतलब
4: आई मीन जिनका फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा मैटर नहीं करना होगा. तो मतलब बाकी सब हम हमारे लिए ऐसा नया साल, नया रेस्ट
1: ऑफ ईयर, नया महीना शुरू हुआ है ना आपके लिए.
4: हाँ,
1: और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर.
4: या
1: 4:03 हो गए 1st of July. सैंडी गुड आफ्टरनून. क्या हाल?
4: गुड आफ्टरनून रुस्बे, एकदम बढ़िया. तुम कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सैंडी.
4: Yeah, how is your day going so far?
1: Day is going good. मेरे को लग रहा है कि day का छोड़ो आप, मैं important बात ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर से we have reached that kind of time जहाँ पे weekdays are beautiful
4: and weekend is full rainy.
1: हाँ, अभी देखो ये weekend पूरा rainy दिखा रहा है, Saturday at least.
4: But strangely ये भी हो रहा है. तुमने notice किया कि जब longest day निकल जाता है उसके बाद थोड़ा टाइम चेंज होता है. सनसेट सनराइज का थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है टाइमिंग्स में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. अभी भी सुबह थोड़ा डार्क रहता है और अंधेरा भी जल्दी हो रहा है,
1: क्योंकि 7:30 हो रहा है ना. अभी भी 7:34 को सनराइज हो रहा है.
4: इट्स बिट डिफरेंट दिस टाइम.
1: डिफरेंट क्यों दिस टाइम? सेम ही तो है, 5:16 पे सनसेट हो रहा है.
4: थोड़ा वो हो जाता है ना. हाँ, लेकिन पहले क्या होता था कि जब एक बार वो लॉन्गेस्ट डे निकल जाता था उसके बाद थोड़ी सी और सनशाइन हम धीरे धीरे देखना शुरू करते थे.
1: अच्छा,
4: वो उस वे से कह रही
1: हूं. आप देखते थे, आप उठते थे सुबह उसके लिए?
4: मैं रोज 6:30-7 बजे उठती हूँ.
1: वो अभी सुबह उठने लगे हो ना आप, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है कि अंधेरा है.
4: हाँ वही.
1: हाँ. ये तो ऐसे ही चलता है.
4: ओके, टेक माय वर्ड्स बैक.
1: या एनीवे, तो अभी हम आपको गाने भी सुनाएंगे. आज वैसे है वेनसडे और वेनसडे पे हम आपके लिए लेकर आते हैं ये. क्यों नहीं बज रहा है ये? हाँ, अच्छा अभी बजेगा.
0: सिचुएशनशिप.
1: सिचुएशनशिप में होता ये है कि हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन
4: सिनेरियो आपके सामने हम रखेंगे और अगर आप उस सिनेरियो में होंगे तो आप क्या करते, आपका क्या स्टेप होता, ये आज आपके साथ शेयर करना है. और ये एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है या फिर एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जो आपके रियल लाइफ में बहुत ही कनेक्टेड है.
1: जी, तो आज 5 बजे के बाद वो आपके साथ खेलेंगे. लेकिन अभी 4 बजे कुछ बातें करेंगे आपके साथ, कुछ टॉपिक लेकर आएंगे और आपसे भी इसमें इसके बारे में सुनना चाहेंगे.
5: कहिए

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4SUN TOURS, दैट्स 0800 4786 86, लिमिटेड स्पेसेस।
3: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: Award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
9: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले मल्टीटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूजन अप्लाई।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: You're listening to Hub Link, Bollywood's biggest hits. Drive show aapke liye jari hai yahan pe. And we have... मेरे को लग रहा है कि अगर भयंकर हंसी का टाइटल सैंडी
3: इस साल
2: नहीं नहीं सैंडी और पूजा को जाता है तो भयानक चीखों का टाइटल जो है
3: ये आरजू को जाएगा
2: आरजू वेलकम टू द शो यार
3: कैसी हो आरजू
2: तुम नीचे बैठ के भी हंस रही हो तो एकदम क्लियर तुम्हारे माइक में
3: मुझे माइक ही नहीं चाहिए
2: वही तो
3: तो तुम हेडफोन पहले निकल के पहन सकती हो नाउ दिस इज बेटर
2: बताओ क्या चल रहा है यार आरजू हाउज लाइफ
4: आई वाज हैविंग अ ऑलराइट डे अभी बहुत
3: ग्रेट डे
4: नो शी इज हैविंग अ ग्रेट डे गाइस उसका रीजन क्या है सो सो मैं एवरी टाइम आई कम बैक यू नो लाइक
3: हाँ कि हमेशा वीकेंड्स पे जब तुम आती हो यहाँ पे तो कई बार तुम मैसेजेस तुम बताती हो मुझे कि कितने आए मैसेजेस तुम्हें राइट या
4: सो मैंने मैसेजेस इस हफ्ते आई डिडंट वांट टू चेक
2: नहीं लेकिन कितने परसेंट से राइज हुआ आपके मैसेजेस
3: कितना प्रतिशत तुम्हारा राइज हुआ
2: प्रतिशत बताओ मुझे लग रहा है कि आपका 250% का राइज हुआ है तो जो यूजुअली आरजू को मैसेजेस आते हैं उसके 250%
3: ये संडे को शो करती है सुबह 6 से लेके दोपहर के 12 बजे तक तो इस बीच में वो यू नो कॉम्पिटिशंस करती है एंट्रीज इनवाइट करती है ये श्योर तुम्हारे शो के मैसेजेस हैं डबल चेक करना एक बार कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है
4: आई थिंक इट्स बीन इयर्स सिंस आई डिड मैथ सो आई फॉरगॉट हाउ टू डू परसेंटेज
2: ओके सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ your normal messages that you get there are 100 messages that you get okay so 100 is equal to 100%
4: yeah
2: and now you are getting let's say 500 messages
4: 5 times more
2: so it's 5 times more right to aise calculate karna hai samajh mein aaya
4: ha
2: so you just have to put in your values over there
3: oh my god the ChatGPT se pooch rahi hai कैलकुलेटर पे नहीं है वो उसमें
2: क्या होगा बच्चों का ना आजकल के
3: इस जनरेशन का ना
2: ये लोग 6767 ही करते रह गए
3: वही ना अभी तक उसको आंसर नहीं मिला है तुम बता दो यार रुस्बे क्यों
2: मैं बोला ना 250% का रेज है
4: लेट्स सी आई थिंक इट्स 300%
2: क्या तुम लोग
3: उसको जो मैसेजेस आते हैं आरजू को 300% इंक्रीज हुआ है
4: हाउ
3: यू फीलिंग अबाउट इट
4: आई फील वेरी हैप्पी बहुत दिल खुश हुआ है
3: और ये पता नहीं क्यों हुआ है
2: हिंदी बोलना शुरू कर दिया है
4: एग्जैक्टली हिंदी बेटर हुआ है क्या आपको क्या
2: अरे बहुत बेटर हुआ है
3: बहुत बेटर तो मैं गाइस आपको बताती हूँ आरजू क्या करती है वो ऐसा गाड़ी चलाते चलाते टेस्ट करती है अपनी हिंदी और उसके वॉइस नोट्स में मेरे को स्पैम करती है
2: अच्छा आपको वॉइस नोट्स आते हैं
3: मेरे को वॉइस नोट्स आते हैं इसके टेस्ट के
4: आपको कैसा लगा है
3: अच्छा अच्छा लगा वॉइस नोट्स तो अच्छे होते हैं
2: सैंडी की हिंदी खराब हो रही है
3: नेपाली बोलना शुरू कर दोगे थोड़े दिनों में
2: बहुत डिफिकल्ट है वो सीखना मैंने बहुत कोशिश की थी बचपन से सीखने की
3: नेपाली क्यों
2: बट देन आई रियलाइज्ड आई ओनली एम वेरी बैड एट लैंग्वेजेस आई थिंक या क्योंकि मैंने सीखने की कोशिश की थी
4: आई कैन टीच यू
2: या यू कैन
3: कौन सा वर्ड सीखना चाहते हो अभी तुम बताओ कौन सी कोई स्टेटमेंट बोलो ना
2: हेलो हाउ आर खाना खा के जाना greeting wala message
4: hello how are you
2: I
4: was going to say aap kaise ho hello is you say same namaste or how are you is hajuk so it depends aap respect ke saath
2: bhi nahi aati hai
4: hajuk kasto cha hajuk kasto cha is like kasto hununcha I guess hasto it's like because you're older than me I have to respect ke saath hajuk but you can tell me timi kasto chau
2: because I'm younger
4: than you because you tum ya tum तुम और आप में
2: तुम कस्तो छो
4: तिमी
3: ओके गुड जॉब ओके तो हम भी ऐसा कुछ नेपाली सीखेंगे गाइस
2: हम भी सीखेंगे नेपाली यार
4: मोमोस या मोमो
2: मोमो
4: ये पास
2: पास यस दैट्स ऑल वी नीड टू लर्न एनीवे अभी ये चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा यार अभी संडे को फिर से शो में? क्या कुछ स्पेशल होने वाला है कि नहीं?
4: स्पेशल नहीं,
2: ठीक है मत सुनना फिर इसका शो.
3: नहीं नहीं स्पेशल मैं बता रही थी ना, तो तुम कुछ रिसर्च कर रही हो कुछ क्या हैपनिंग न्यूज़ के बारे में? क्या थी वो?
2: क्या क्या क्या
4: क्या
2: हैप्पी क्या
3: हैपनिंग न्यूज़ के बारे में?
2: हैपनिंग न्यूज़ मैं कुछ और ही सुना यार.
4: आपने क्या सुना?
2: मैं बोला वो मूवी आई ना सैफ अली खान की, आई थी हैप्पी एंडिंग, तो मेरे को लगा आप ऐसे कुछ बोल रहे थे कि हैप्पी एंडिंग के बारे में कुछ बोल रहे हो.
3: नहीं
2: मूवी आ रही क्या हैप्पी एंडिंग 2?
4: नहीं धमाल 4
3: आ रही है.
2: धमाल 4 आ रही है
3: क्या?
2: अच्छा
4: जुलाई 10th को.
2: बट वेलकम टू द जंगल जो आई है उसको तो देखो पहले.
4: ओह यस आई वांट टू वॉच दैट. मुझे दिखनी है. आपने देखा?
2: नहीं हम नहीं? हमने भूत बंगला देख लिया. एक अक्षय कुमार का एक मूवी हो गया.
3: अक्षय कुमार इज डन
4: इस साल के लिए. डन किया.
2: Yeah, but if anyone's giving free tickets, then yeah, why not?
4: Yeah.
3: Oh, you
4: okay? Sandy, please. मुझे भी.
3: Okay. मेरे को क्यों पूछ रहे हो?
2: Okay. Anyway, Sandy, एक message आया हमारे पास यहाँ पे.
3: बताइए.
2: उन्होंने बोला है कि ये double confirm करो कि ये spam है कि नहीं है. इनको message आया है. Gift विफ्ट को मिल रहा है. भाई इनको क्यों आ रहा है gift? भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा है gift?
3: कौन है, नाम क्या है इनका?
2: उपिंदर पाल.
3: मुझे नहीं पता है वैसे. उपिंदर पाल आपने जो नंबर दिया है ना, एक मिनट मैं अभी आपको कंफर्म करती हूँ.
2: अभी बता दो यार जल्दी.
3: अभी के अभी. हाँ आपको सही मैसेज आया है उपिंदर पाल. एकदम सही मैसेज आया
2: है. वो
3: स्पैम नहीं है. आप वो स्पैम नहीं है, वो सही मैसेज है. आपको कुछ मिला है.
2: बट आप मत आना, हम ले लेंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं.
3: आपको एक हैम्पर मिला होगा मेरे को लगता है. तो या यू कैन कम एंड कलेक्ट योर हैम्पर आई थिंक बिफोर फ्राइडे.
2: बिफोर फ्राइडे जल्दी आइएगा. और यहाँ पे
3: नहीं तो ये ले जाएगा.
2: नहीं नहीं
1: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं? मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम हल्लमती हबीबो ये गाना लेकर आ रहे थे अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनीता गांधी की आवाज में.
1: Yes.
0: मेरे को ऐसा आज फील हो रहा है सैंडी, पता नहीं क्यों. आज ना मैंने वो फास्ट फूड खाया. I don't want to name the company, but you know what I mean. और उसके बाद ना एकदम ही सुस्तड़ फील हो रहा है.
1: होता है.
0: Is it just
1: फास्ट फूड के बाद ना सुस्त फीलिंग आती है.
0: फास्ट फूड के बाद मतलब वो कुछ डालते हैं ऐसे, मेरे को लग रहा है फास्ट फूड में, जिससे हम ऐसे एकदम ही ऐसा फील करें.
1: अगर तुम यूज्ड टू नहीं हो खाने में.
0: अच्छा तो मैं यूज्ड टू नहीं हूँ फास्ट फूड खाने में.
1: अगर तुम यूजली इस टाइम पे फास्ट फूड खाने के यूज्ड टू नहीं हो ना.
0: नहीं मैं
1: घर का ही खाना खाती हूँ.
0: घर का खाना खाता हूँ. यस
1: एग्जैक्टली. तो काफ़ी लोगों की आदत होती है बॉडी की ऑलरेडी. दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़ कि फास्ट फूड खाने की, तो दे आर यूज्ड टू इट. अगर आप यूज्ड टू नहीं हो तो ऑब्वियसली उसमें कार्ब ज़्यादा, अगर कुछ बर्गर है वो सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको बाद में ज़्यादा फुल भी फील करोगे, मे बी सुस्त भी फील करोगे अगर फ्राइज भी है तो. ऐसा मेरा टेक है इस चीज के बारे में. इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट तो आप थोड़ा हैवी फील करते हो फिर.
0: Anyone has any other fast food related stories? Please give us a call over here.
1: तो कॉल करके बताइएगा
0: क्या रेमेडी क्या होती है, क्योंकि सैंडी ने बोला कि फास्ट फूड के फूड से अगर तुमको सुस्ती हटानी है तो मस्त दूध वाली कॉफी पियो.
1: मतलब जिसमें कैफीन भी बहुत है.
0: कैफीन भी बहुत है.
1: या गुड कैफीन है जिसमें. मेरे को तो लगता है कॉफी इज वन थिंग जो उसमें कर सकती है, सोल्यूशन है. बाय द वे जब तक आप कॉल करके बता रहे हो रुजबे को, आप उससे शेयर कर दोगे आपने मिस आउट किया न्यूज. 5 पीपल हैव बीन अरेस्टेड. 1.38 मिलियन ऑफ इलीगल सिगरेट इज सीज्ड इन सीरीज ऑफ रेड्स डेरीज में एंड होम अक्रॉस द नॉर्थ आईलैंड.
0: होम में से भी.
1: अथॉरिटीज ने कैरी की थी 21 रेड्स एट 8 रिटेल आउटलेट and 6 residential addresses in Rotorua, Waikato, Auckland. ये 6 month का operation था, इसका ये part था. So the operation dubbed Operation Clarify. It was led by customs with support from police and health in New Zealand. So customs ने estimated of 1.378 million cigarettes जो है, representing more than $2 million in evaded tobacco excise seized किए है. अराउंड $170,000 कैश भी सीज किया गया है.
0: ओह बाप रे. यार मेरे को एक चीज जाननी है.
1: मोस्ट ऑफ दी सीज्ड सिगरेट्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एशिया.
0: एशिया से आती है मोस्टली ना. बट मेरे को यही जानना है कि मोस्ट ये सब ये लोग ने किया, बहुत अच्छा काम किया. बट वो भी उन्होंने आर्टिकल में डालना चाहिए कि ये सब करने के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया. बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दैट्स आल्सो टैक्स मनी दैट्स गोइंग ना.
1: बेसिकली इनको जो टिप मिली थी उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर प्लानिंग की एंड देन दे एग्जीक्यूटेड दिस थिंग.
0: और यू नो काफ़ी बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी वो आता है ना हेट स्पीच होता है ना टूवर्ड्स माइग्रेंट वर्कर्स और ये वो. आपको पता है कितने सारे टिप्स हमारे माइग्रेंट वर्कर्स ही दे रहे हैं. क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस होता है. बदला लेने के लिए फिर वो कंप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये इलीगल धंधा हो रहा है. तो कहीं ना कहीं तुम फिर एक्नॉलेज भी करो ना कि माइग्रेंट वर्कर्स के कारण तुम ऐसे सारे स्कैम भी पकड़ पा रहे हो.
1: बट इफ माइग्रेंट वर्कर्स वांट टू बी एक्नॉलेज्ड देन अगेन वो एक भी आ जाता है.
0: हाँ,
1: ना कि
0: वो तो एनोनिमस
1: कई लोगों को अगर वो उनको एनोनिमस रहना है तो यू नो कईयों के अंदर डर भी होता है कि हम कंप्लेन तो इसको इसकी करना चाहते हैं लेकिन आइडेंटिटी हमारी बाहर ना आए.
0: या दैट्स आल्सो
1: ये एक पंगा भी रहता है बिकॉज फिर एक डर होता है हर किसी को.
0: बट टॉकिंग अबाउट दैट इफ यू आर अ माइग्रेंट वर्कर एंड इफ यू थिंक कि आपको आपके राइट्स नहीं पता, एम्प्लॉयमेंट राइट्स नहीं पता, तो उसके अराउंड हम आपके लिए कुछ लेकर आ सकते हैं. बट फॉर दैट यू लेट अस नो कि आपको इसके बारे में कुछ जानना है एंड वील ब्रिंग समथिंग फॉर यू. सो 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ आप मैसेज करके बताइए इफ़ यू वांट टू हियर मोर अबाउट योर माइग्रेंट वर्कर राइट्स एंड वील ट्राई टू गेट समवन और वील ट्राई टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
3: New look, Mitre 10 Nega Botany.
4: Main clear with a low of 6. Now on the northwestern, there has been a crash westbound just before Patiki Road with multiple lanes blocked, so do expect delays there. Right now, it's just under 45 minutes out of town to Massey on the northwestern. And traffic around the city is looking pretty rough right now. On the southern, it's just under an hour 20 to Drury. And on the northern, it's 55 to Silverdale.
3: Visit Mitre 10 Mega Botany. Family fun, sausage sizzle and in-store specials this weekend.
5: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You are listening to Humpling Bollywood's biggest hits. हमारे साथ एक ना anonymous caller यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं about this topic that we were doing. इनके पास थोड़ा knowledge है इसके around. लेकिन मालूम नहीं कि ये बात करना चाहेंगे ऑन एयर की नहीं. तो अभी हम ऑन एयर है, अगर आप कंफर्टेबल हो ऑन एयर बात करने के लिए तो ही आप बात कीजिए, नो प्रेशर. अदरवाइज इफ यू डोंट टॉक. कंफर्टेबल है कि नहीं है सैंडी?
2: बट मेरा क्वेश्चन ये है, ऑन एयर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है.
1: अच्छा,
2: अंटिल अनलेस यू आर कीपिंग इट सिक्योरली. तो मेरा जस्ट क्वेश्चन है, 1.8 मिलियन का सिगरेट सीज हो रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट से या पब्लिक से कि ये आ कहाँ से रहा है? हमारा कस्टम कहीं पे लीक है, वहां से आ रहा है ना? और सेकेंडली, एज ए नॉर्मल बिजनेस हमें ये अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी के लिए मार्केट में एवरीवन वांट्स द चीप सिगरेट.
1: हाँ,
2: द मेन थिंग इज
1: एक दो ब्रांड भी है, मैंने सुना है उसके बारे में काफी बार, वो एक दो ब्रांड बहुत चलते हैं.
2: एक दो ब्रांड नेम भी है और वो लोग उसी के पीछे पड़े. अभी आप 90% ऑफ द डेयरी ओनर्स आर सेलिंग इट बिकॉज they are making a good money out of that.
3: But ऐसा नहीं हुआ था कि, sorry मुझे इसके बारे में ज़्यादा awareness नहीं है, लेकिन recent news में हुआ था कि brands अब नहीं दिखाई देंगे किसी भी cigarette पे.
1: वैसा नहीं, brand तो नहीं.
2: ये तो illegal है.
1: Illegal है नहीं.
2: That you are right, Sandy.
3: Okay.
2: That you are right, Sandy. But actually जो illegal cigarette, जो Chinese cigarette आता है यहाँ पर, mainly Chinese cigarette यहाँ पर बिकता है. वो कहाँ से आता है? वो तो वहाँ पर packing होता है, तो वहाँ पर तो अपना वो normal colorful वाला packing रहता है.
3: Okay.
2: और just people are just want to get there because अभी हमारा जो normal cigarette pricing है, और government every time now and then they are just putting the new taxes in there. There is no reason behind the putting a new tax.
1: नहीं, वो reason है ना, उनको smoke free करना है ना country को.
2: भाई मुझे बता दो. हाँ. मैं आपको एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, 50 बार बोलूंगा, कितनी बार बोलूंगा, आपको स्मोक क्विट करना तो भी आप क्विट करोगे. यू आर नॉट क्विटिंग इट फॉर विद द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट.
3: मतलब कि महंगा कर रहे हो वो सोल्यूशन नहीं है स्मोक फ्री करने का.
2: हाँ,
3: उसके बाकी चीजें हो सकती है.
2: बॉर्डर्स को स्विक करो, या तो फिर जो सिगरेट कंपनी से, अभी आप बोल रहे हो कि इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बंद कर दिया, वेपिंग सब कुछ बंद कर दिया, वेपिंग वगैरह का. वेपिंग के कितने सारे ब्रांड है, वेपिंग के लिए कितने सारा प्रोडक्ट है, वो कहाँ पर सर्वाइव हो रहा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ. एज ए रिटेलर, मैं अभी मेरा शॉप है, मैं उसके लिए मैं ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन है मेरा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एज ए रिटेलर, वो सप्लायर तो आके आपको बेच के जाएगा, बट वेन यू कांट एडवर्टाइज यू कांट सेल इट. कितने को क्या क्या बताओगे कि मेरे पास ये ब्रांड है, ये फ्लेवर है, ये है, ये है, कितने को क्या बताओगे, कितनी बार बताओगे?
1: और एडवर्टाइज
2: हमारा मनीषा कहता है.
1: मैं बस एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, एडवर्टाइज का मतलब क्या आप पोस्टर वोस्टर भी नहीं लगा सकते हो ना आपके शॉप में?
2: ना, नथिंग एट ऑल.
1: हाँ, exactly. तो सबको आपको मैन्युअली बोलना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है.
2: That's the issue, भाई.
1: Yep,
2: और
1: yep.
2: ये गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कि भाई इतना सारा इलीगल सिगरेट यहाँ पर डंपिंग हो रहा है एंड कहाँ से आता
3: इसका
2: है,
3: कंट्रोल कहाँ पे है,
1: और काफी बार क्या होता है कि ये सस्ता माल होता है और उसमें हमें पता भी नहीं कि एक्चुअली में है क्या अंदर. सो इट इज मोर थ्रेट टू योर हेल्थ रादर देन यू नो हैविंग लाइक अ प्रॉपर वन. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ओवर हियर. या मैं समझ सकता हूँ कि आप
2: लास्टली मैं आपके रेडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई कि चेस्टफिल जो नॉर्मल सिगरेट है, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग.
1: नाम ले लिया आपने अभी.
2: नहीं, ये तो लीगल सिगरेट है अपना, न्यूजीलैंड का लीगल सिगरेट है. उसके अंदर सेम पैकेजिंग का डुप्लीकेट ब्रांड निकला हुआ है.
1: अच्छा,
2: चेस्टफिल रेंज जो है, आपको एज अ नॉर्मल कंज्यूमर यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट.
1: ओके, that's an interesting
2: so
1: one.
2: So that is the one note for people who are smoking that particular cigarette, they can make a note ki uska originally kya hai aur duplicate kya hai, wo kuch differentiate kare. Andar ka maal kharab aa raha hai, aisa maine suna hua hai.
1: Acha, theek hai.
2: Okay,
1: thank you so much. Thank you for sharing.
2: Thank you for your time.
3: And by the way, while we are talking on this topic, just want to let you guys know on a disclaimer that smoking is injurious to health.
1: It's very injurious to
3: health. So, tobacco ke karan cancer ya baki life threatening diseases jo hai ye bhi ho sakti hai.
1: Ji. Aapka bhi swagat hai. Hi.
4: Hi.
1: Ji.
4: I completely agree with the previous speaker, but there's more than to this.
1: Boliye.
4: Ye jo illegal cigarette aati kyun aati hai?
1: क्यों आती है?
4: Not because it's cheap. It's not because it's cheap. corruption in the country. Mm-hmm. There's only two or three companies that can manufacture and sell cigarettes in New Zealand. And the ministry is responsible for that. Kisi ka board mein kisi ka bhai baitha hai, kisi ka bibi baithi hai, kisi ka husband baitha hai. They're not allowing other companies to come in the country. As a result, illegally aati hai. Agar inko kal aane de, this illegal thing band ho jayega.
5: I think...
4: And don't forget, the Chinese jo cigarettes, sorry, will be cheaper than what we can buy here.
1: Yeah, for obvious reasons, right?
4: The ministry ki fault hai jo inko allow nahi karti hai.
1: I think the problem is like the core problem is around certain commitments jo humne ki hai na, jaise ki smoke free karna tha
3: 2030
1: tha, fir 47 pata nahi jo bhi hai, like you know wo aise unrealistic jo target set hue hai aur without the consensus of people, I think, kyunki ab mereko chahiye to main koi bhi goal set kar lu, lekin अगर समझो हम ड्राइव शो का कोई गोल सेट करते हैं और सैंडी को पता ही नहीं है गोल के बारे में, सैंडी बोलती भाई मेरे को नहीं करने का ये गोल, मेरा कोई और गोल है, तो ये आई थिंक उधर भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है.
3: साथ में लेके चलना.
4: जब जॉनकी की गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि हम $100 पर पैकेट पर ले जाकर रखेंगे. अभी 40-45 चल रहा है कुछ. So people, those who can't afford that 40-45 are forced to buy the cheaper ones and the storekeepers are forced to keep them.
1: Yeah, because demand hai wo cheez ka. Bhi kya hi kar sakte
4: hain. It's a risk.
1: Yeah. Well, anyway, thank you so much for sharing your thoughts.
3: But thanks for calling.
1: Thank you for calling, yeah.
4: Thank you.
3: All good.
1: We just want to reiterate, we are in no way promoting the use of tobacco or tobacco-related products. Yeah. It is just a very sad case currently jo ho raha hai, jahan pe illegal cigarettes aa rahe hai country mein, wo news mein aa raha hai, wo pakde ja rahe hai, wo jo achhi baat hai. But we are trying to get into the crux of the matter.
3: Aur operation mein tab hua jab Crime Stopper ko actually mein tip mili about this.
1: एक कॉलर ने कॉल किया था, ऑफ एयर बात की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफी ऐसे लोगों के टिप दिए हैं लेकिन कुछ काम हुआ नहीं उसके अराउंड. इनफैक्ट ज्यादा लोगों ने रखना चालू कर दिया है, बट होपफुली ये जब न्यूज आ गई है तो अब नाउ पीपल आर गोइंग टू स्टॉप एंड आर गोइंग टू बी मोर स्केयर्ड
3: बिकॉज़ देयर इज अ हैवी फाइन इन्वॉल्वड इन दिस.
1: या आई थिंक 10,000 या कुछ नहीं, उससे ज्यादा
3: भी हो सकता है. या
1: राइट. एनीवे, सो या दैट वाज आवर टॉपिक फॉर नाउ, बट एनीवे 5 बजे के बाद आपको एक सिचुएशन में डालेंगे और आपसे जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते अगर आप होते तो वो 5 बजे के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम इन पावर ड्राइव एट 5. और सैंडी, आज ट्रेंड मेकर्स में क्या हो रहा है?
3: ट्रेंड मेकर्स में गुड क्वेश्चन. सो इट्स अ 1st जुलाई, राइट?
1: यस.
3: 1st जुलाई वाले दिन जो मूवीज हिट मेकर्स थी, 3 ऐसी मूवीज है सिनेमा में, इंडियन सिनेमा

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: हम accurate traffic.
2: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
3: A low of 6 and mainly clear. Now on the northwestern, there was a crash westbound just before Pātiki Road. That has now cleared, but there was another crash on the State Highway 1 northbound link to State Highway 16 westbound with a lane block just before the Newton Road overbridge, so do expect delays there. Outside of that, around the city, you can pretty much expect it to be a shambles everywhere.
2: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
4: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
5: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
6: Hi boys, ek kahani sunati hu. Ek rakshas tha, ghamand uska shastra tha. Wo dhoke se raj karta tha.
7: Main jo bana raha hu, wo itihas hai.
8: But should we call her, sir?
9: Iski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulayenge.
6: Itihas janta hai, ye kahani kaise khatam hui.
10: YRF Spy Universe presents
11: Alpha.
10: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: Shuru karo Agni Pariksha.
12: Dad, I feel sick.
13: Yep, we've all been there. And so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
0: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. Customs believe that lenient penalties push criminal organisations toward illicit tobacco trade. 21 search warrants have ended in 5 arrests and seizures of more than 1.3 million illegal cigarettes. Operations spokesperson Terry Brown says for many groups it's more profitable than drugs.
15: And the penalties that apply are significantly less in respect of tobacco.
14: It's hoped a new approach to bowel cancer home tests will mean urgent cases are investigated sooner. From today, if someone already has symptoms, the test will be set to a more sensitive level and positive results will be prioritised for a colonoscopy. A big jump in pregnant women taking anti-nausea drugs is being cautiously welcomed. Study co-author Sarah Donald says the use of one rose from 0 to 9% in about 15 years, despite it not being approved for morning sickness.
16: One of the concerns is this drug safe to use in pregnancy? And I think we can be reassured that it's not a drug that's going to cause lots of serious malformations in high numbers.
14: There's concern for the well-being of a 23-year-old missing man in Auckland. Police say Dukume Topia Himiona was last seen over 2 weeks ago. He's around 182 centimetres tall and is known to frequent Mount Wellington and Onehunga. To sport, a Super Rugby Pacific expanded season next year, and in the playoffs, the top two now go straight to the semis. Chiefs loose forward Samapini Fino is off to Japan. ND pace bowler Matthew Fisher is the one uncapped player in the Black Caps ODI squad going to the West Indies this month. And football updates brought to you by Hisense. Mexico is into the last 16 at the World Cup, beating Ecuador 2-0.
1: Sports news
0: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: वेदर इज टकाटक एंड कड़क, एकदम सुपर हिट वेदर है आज का. लाइट विंड्स रहेंगे, पार्टली क्लाउडी हो सकता है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन 5:16 पे होगा सनसेट. कल का दिन भी बहुत ही कमाल है. वीकेंड्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, बट लेट्स एंजॉय व्हाइल द सन शाइन्स.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
19: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: पांच बजकर दो मिनट हुए हैं. गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे.
11: A very very good evening to you. Yes, आपके लिए Power Drive at 5 शुरू हो चुका है and आज आपके लिए हम सिचुएशनशिप लेके आने वाले हैं थोड़ी देर में, जहाँ पे एक सिनेरियो आपके सामने रखते हैं और उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में अगर आप होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, आप क्या करते.
18: अगर आप होते तो आप क्या करते.
11: वो आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में कि आपके साथ हुआ हो, या फिर टोटल हाइपोथेटिकल हो सकता है. और हाइपोथेटिकल अगर है तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाले दिनों
18: में. क्यों ऐसा डरा रहे हो लोगों को?
11: अरे अच्छी सिचुएशन में तो हो सकते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ड्रावनी सिचुएशन लेके आऊंगी?
18: क्योंकि आप हो ना.
11: अरे क्या लगता है गाइज आपको, मैं आपके लिए एक डरावनी सिचुएशन आज लेके आने वाली हूँ या फिर कोई अच्छी वाली सिचुएशन लेके आने वाली हूँ कि आप बोले कि हाँ इस सिचुएशन में तो हम होना चाहेंगे भाई.
18: अगर हम यहाँ पे पोल करें एक, ठीक है, कि सैंडी आपको डरावनी लगती है या आपको बहुत प्यारी लगती है,
11: रहने दो.
18: अगर ऐसा पोल करें
11: 90% आएगा
18: क्या
11: प्यारी लगती हूँ.
18: 90% प्यारी बोलते हो आप? हाँ, सच्ची में इतना आपको कॉन्फिडेंस है?
11: मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है. 10% है थोड़े तुम्हारे जैसे बोल देंगे जो
18: तो मतलब
11: डरावनी लगती है.
18: बट व्हाट डू यू थिंक इन दिस मेल टू फीमेल रेशियो क्या रहेगा?
11: मिक्स.
18: हाउ मेनी परसेंट वुड से यू आर प्यारी मेल, हाउ मेनी परसेंट मेल वुड से यू आर प्यारी?
11: आई विल से 50%.
18: 50% मेल विल से यू आर प्यारी.
11: या एंड 50% फीमेल.
18: एंड 50% फीमेल विल से यू आर प्यारी. ओइला.
11: Yeah, equal.
18: और अगर वो 10% आप जो बोल रहे हो उसमें से कितने मेल होंगे कितने फीमेल होंगे, वो भी 50-50?
11: उसमें से मेल ही हो सकते हैं.
18: मेल को लगेगा आप डरावनी हो.
11: हो सकता है.
18: फीमेल को नहीं लगेगा आप डरावनी हो?
11: नहीं नहीं
18: नहीं, फीमेल को नहीं लगेगा.
11: नहीं, किसी फीमेल को नहीं लगेगा.
18: प्यारी, देखो
11: एफएस ने बोल दिया.
18: ओके, अगर हमें यहाँ पे आज 10 टेक्स्ट मिल आ जाए, पहले 10 टेक्स्ट, अभी एक आया है, 10 टेक्स्ट अगर आ जाए ड्राइव कीवर्ड के साथ, आपको सैंडी प्यारी लगती है या डरावनी लगती है?
11: हाँ या, और दिल पे हाथ रख के गाइस,
18: नाम मत लिख कर भेजना आपका बस.
11: उससे क्या होगा, ये देखो ये डराता है, ये डरावना है. ऐसा मैं क्या कर लूंगी यहाँ बैठी?
18: नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करोगे.
11: वही तो. कुछ नहीं कर सकती. ये ड्रामा किसने लिखा है? ये गलत बात है. कौन है? ये नंबर पता करो इसका.
18: ये देखो. अच्छा ठीक है.
11: नहीं, तुम क्योंकि इसे बोला है तो लिखेंगे कुछ लोग.
18: हम नंबर
11: आगे बढ़ते हैं.
18: हम नंबर नहीं पता करेंगे. आप बेझिझक होकर मैसेज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? देखो सैंडी, मैसेजेस नहीं आ रहे क्योंकि यार डर गए लोग. देखो प्यारी विद डरावनी खांसी.
11: हंसी लिखना था कि खांसी लिखना था? क्योंकि दोनों फिट होते हैं.
18: अभी खांसी लिखना था.
11: वही ना, अभी हो गई खांसी मेरी खत्म.
18: हाँ अभी खत्म हो गई एक्चुअली.
11: थैंक गॉड. दो महीने के बाद
18: प्यारी आवाज डरावनी हंसी. यस, ये भी है प्यारी. काफी लोगों ने प्यारी लिखा है. वेरी नाइस. तो अभी तक डरावनी सिर्फ एक ने ही हिम्मत की है सच लिखने की.
11: सच लिखने की. एनीवे गाइस, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी सिचुएशन मैं लेके आऊंगी आज. और यहाँ पर रुस्बे, अगर तुम्हें मैं इतनी डरावनी लगती, तुम लेके आओ आज प्यारी सी सिचुएशन.
18: नहीं नहीं, आप लेकर आओ.
11: नहीं नहीं नहीं, तुम लाओ एक सिचुएशन, प्यारी सी सिचुएशन अब रुस्बे लेके आएगा आपके लिए. एंड यू हैव टू आंसर ऑन 0800. हाँ, ये होता है ड्रावना रूप.
18: ये देखो देखो, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? मैं सिचुएशन तो कुछ भी लेकर आऊंगा, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा. यूजुअली हमारे इसमें ऐसा होता है, जब सैंडी टॉपिक लेकर आती है उस पर बहुत ही सॉलिड रिस्पॉन्स आता है. बिकॉज एक्सपीरियंस है ना, 15 साल का एक्सपीरियंस है. मजा के क्या?
11: मजा के. देखो नंदिनी ने बोला 100% प्यारी लगती है.
18: वेरी नाइस. देखो इसके प्यारी वाले मैसेजेस तो इतने अच्छे अच्छे से पढ़ रही है ना प्यार से.
11: वही तो.
18: एक डरावनी वाला भी ऐसे प्यार से पढ़ लो.
11: डरावनी
18: आया ही नहीं ना ऐसा कोई मैसेज, क्योंकि ऑटो ब्लॉक हो जाता है वो.

0: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. Amit Trivedi ki awaaz mein aap sun rahe the ye beautiful gana. Aaj bahut hi stressed mahol hai hamare yahan pe kyunki hum honest rahenge. We are very honest with our crew.
1: 100%.
0: नहीं सूझ रहा है आज भाई कोई सिचुएशन वाला ना
1: मेरे पास एक है बट लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या इंटरेक्शन आता है रुजबे.
0: अच्छा ठीक है बोलो.
1: तुम्हारे अकाउंट में बैंक अकाउंट में
0: हाँ हाँ हाँ गिव मी फ्री मनी
1: एक्सीडेंटली ट्रांसफर होते हैं $10,000
0: फ्रॉम
1: अ स्पेसिफिक अकाउंट
0: राइट
1: जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है कोई आइडिया नहीं है इट्स नॉट अ बिजनेस इट्स नॉट अ बैंक लेकिन एक अकाउंट से तुम्हें जो कि लेजिट अकाउंट है
0: राइट
1: एक अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में आते हैं $10,000
0: या
1: So
0: okay, I can share something with you.
1: Do you spend it?
0: So
1: you are in situation.
0: I'll
1: do
0: put,
1: you spend it
0: I'll,
1: or you? Yeah.
0: I'll give you a better situation,
1: okay.
0: Sandy, because I've been in this
1: You've
0: one
1: been
0: situation.
1: In this. Okay.
0: Not directly, but like in a way.
1: Hmm.
0: So, ऐसे ही गलत अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर हो गए थे, okay?
1: तुमने किए थे?
0: नहीं.
1: किसी ने किए थे?
0: किसी ने किए थे गलत अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर. वो आए मेरे पास क्योंकि मैं काम करता था ना. एक टाइम मतलब जो भी है और उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऐसा ऐसा हुआ है तुम पता कर सकते हो कि कौन है क्या है तो मैंने बोला देख भाई प्राइवेसी है ये नहीं कर सकते हम लोग तो बोले प्लीज़ यू नो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक अच्छा अमाउंट था डिसेंट अमाउंट था तो फिर मैंने परमिशन ली और मैंने कॉल लगाया एज अ स्टाफ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है वुड यू लाइक टू रिटर्न द मनी उनको पूछा मैंने
1: Yeah.
0: So I want to put you in that situation कि आपके पास आपके अकाउंट में $10,000 आए हैं आपको कॉल आता है एक कि भाई गलती से ये आए हैं तुम्हारे पास क्या तुम रिटर्न करना चाहोगे
1: मेरे को तो लगता है ना इसमें कि अगर कोई पूछ रहा है तो फिर तुम ऑब्लाइज्ड हो जाते हो रिटर्न करने में
0: आर यू श्योर दो Because आप जानते भी नहीं हो इंसान को
1: exactly,
0: वो इंसान आपको नहीं जानता है क्योंकि वो इंसान को तो मालूम नहीं है किसका अकाउंट है
1: बैंक को तो पता है ना जहाँ से कॉल आया है आपके डिटेल्स तभी तो आपको कॉल आया है
0: वो तो लेकिन मेरा मतलब स्टाफ का ये नहीं होता है उसमें दे कांट शेयर एनी डिटेल्स विद द अदर पर्सन सो यू विल बी अनोनिमस ओनली जिसके अकाउंट में पैसा आया है अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है आप तो अनोनिमस ही हो जिसने वो डाले आपके उसको नहीं पता कि आपके पास आया है वो पैसे तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में
1: देखो मुझे कॉल आता है और कोई बताता है कि किसी से एक्सीडेंटली मैं मतलब अपनी सिचुएशन बताती हूँ कि ट्रांसफर हो गया है तो मैं बोलूंगी हाँ निकाल लो
0: बोलोगे हाँ. आप अच्छा ठीक है
1: आई विल आई एम ओके टू
0: हाय आपका भी स्वागत है
2: हाय रुजबे संदीप कैसे हो
0: बहुत ही बढ़िया कैसे हो आप
2: बढ़िया ठीक ठाक मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा आई वर्क फॉर द बैंक और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा I will inform my bank and tell them to do whatever they need to.
1: अच्छा एक बात बताइए.
0: You are the one who's received the money, yeah? You are the one who's got the money.
2: Yeah.
1: वो तुम ही कह रहे हो.
2: Yes.
0: तो आप बोलोगे कि निकाल लो पैसे.
2: नहीं मैं अगर मेरे को किसी बैंक से कॉल आएगी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में आए हैं पहले तो कोई और बैंक मेरे को कॉल कर नहीं सकता.
0: Agreed.
2: जिसका अकाउंट मतलब सपोज जिस XY बैंक में मेरा अकाउंट है They can only contact me.
0: Exactly. Agreed.
2: ठीक है तो मैं उनको अथॉरिटी दूंगा कि भाई ठीक है क्योंकि आजकल तो फाइनेंशियल क्राइम बहुत हो रहा है
0: नहीं
2: I don't want to get into trouble moving forward.
0: Right.
2: ठीक है क्योंकि स्कैम जितने सब हो रहे हैं तो इट्स बेटर कि देखो अगर फ्री का पैसा आज के डेट में अगर आप $1 भी लगाओगे ना तो कल को ज्यादा ही निकलेगा कहीं ना कहीं
0: That's right.
1: मेरा भी यही थिंकिंग
0: That's
1: है
0: right.
1: कि उतने से ज्यादा शायद निकल ही जाएगा जो और पता नहीं है ना जिसका ट्रांसफर हुआ है उसको कितनी जरूरत रही होगी मतलब उसका क्या हाल है फाइनेंशियली वो एक थॉट आता है ना
0: और वो बहुत डर वाला माहौल होता है मतलब जब तुम्हें ऐसे लगता है ना कि अभी फ्री का पैसा मिला है तो उससे डबल ही उड़ता है हमेशा सो या थैंक यू सो मच यार शेयर करने के लिए आपके थॉट्स यहाँ पे आपका भी स्वागत है
3: हाय कैसे आप लोग
0: बहुत ही बढ़िया आप क्या करोगे आपके
3: मेरे साथ यार बस हाँ सॉरी मैं मेरे साथ डॉलर का तो नहीं पता बट मेरे साथ ये चीज रुपीस को लेके हुई है.
1: ओके
0: अच्छा क्या हुआ रुपीस को?
3: मैं जब यहाँ पे था तो मेरे अकाउंट में इंडियन अकाउंट में किसी ने गलती से वो जो ऐसे पेटू मोबाइल जैसे वो ऐप नहीं होता पेटीएम का पेटीएम आई गेस
1: पेटीएम या
0: हाँ वो
3: तो उसने वो यूज करके हाँ तो वो मेरे अकाउंट को ऑलरेडी अटैच था ना तो मेरे अकाउंट में जिसमें भी वो नंबर से पैसे आते थे वो मेरे बैंक अकाउंट में चले जाते थे तो उसने शायद किसी को ट्रांसफर करने हो गए उसने गलती से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एक डिजिट इधर उधर करके मोबाइल नंबर. अब मैं तो न्यूजीलैंड में तो बाद में वो लकीली हुआ ये कि वो नंबर ना मैं इंडिया में छोड़ के आया था कि मेरे जैसे मुझे पता है कि फैमिली मेंबर ही आएंगे आपको एयरपोर्ट पे लेने तो दैट टाइम दे कैन कैरी दैट नंबर तो पर मैंने ना उसका व्हाट्सएप यहाँ पे यूज कर रहा था.
0: अच्छा,
3: तो वो कॉल कर रहा होगा और मेरे हाँ तो वो कॉल कर रहा होगा मेरे नंबर पे और मेरे मॉम ने वो सिम निकाल के रखा होता क्योंकि वो अपना सिम यूज कर रहे थे. तो उसने फिर कैसे पता नहीं उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने तो चेक भी नहीं किया था कि आया तो वो बोले भाई ऐसा हाँ व्हाट्सएप पे कॉल किया और मुझे बोला उस रात में 2:30 बजे कॉल आया कुछ यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि सर मैंने गलती से आपके अकाउंट में 35,000 कुछ ट्रांसफर कर दिए है और मैं एक्चुअली किसी और को हॉस्पिटल के लिए पे करना चाह रहा था बट आपको आ गए. तो फिर मैंने पहले चेक किया मैंने बोला ऐसा ना हो ना क्योंकि स्कैम हो कुछ
0: ना ये भी डर होता है ना एक अलग सा.
3: हाँ
1: और ये हुआ है अभी रिसेंट पता है उसके बारे में बाद में बताती हूँ मैं.
3: हाँ तो फिर मुझे उसने बोला मैंने बोला रुको मैं पहले चेक करता हूँ फिर मैंने अकाउंट में चेक किए तो सच में वो नाम से पैसे आए हुए थे तो फिर मैंने उसको वापस भेज दिए.
0: Nice. यार
3: पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ.
1: तो अभी रिसेंट पता है न्यूजीलैंड में ही एक स्कैम हुआ था मार्केट प्लेस को लेके. सो मार्केट प्लेस में किसी ने बाय किया स्टफ और बोला कि मैंने ऐसा आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो बट नेक्स्ट पर्सन सेड कि मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है. तो पर्सन सेड डिफरेंट बैंक है टाइम लेगा लेकिन मेरे से चले गए तो अगर आप अभी उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिफोर इट गेट्स टू यू बिकॉज आपको एनी वे मिल ही जाएंगे तो उसने ट्रांजेक्शन कर दिए. तो ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं.
0: हाँ, ये काफी स्कैम होते हैं.
3: और इसमें सबसे बड़ी बात पता है वो बंदा 3 साल पहले की बात है ये वो बंदा आज भी मेरे वीकेंड में एक बार तो भी मैसेज करके पूछता है कि आप कैसे हो.
0: अरे क्या बात है.
1: दिस इज सो कूल.
3: ज्यादा कुछ नहीं करता बट इतना मैसेज जरूर करता है कि भाई आप कैसे हो. और उसने उस टाइम पे भी मुझे यही बोला कि यार दूसरे कंट्री में उसको पता नहीं था ऑब्वियसली बात है तो वो बोला कि कोई और होता तो शायद वो वापस नहीं करता क्योंकि उसने एक्चुअली क्या किया उसने बैंक से चेक किया और बैंक वालों ने ये बोला कि उनके अकाउंट में जमा हो चुका है वी कैन नॉट आस्क टू लाइक क्योंकि टाइम हो चुका था
0: नहीं पूछ
3: उसने चेक नहीं किया.
0: हाँ
3: पर वो मैसेज करता है. आई मीन नाइस गाय.
0: नाइस यार दैट्स वेरी कूल.
1: थैंक यू थैंक
0: यू थैंक यू बस थैंक्स मैन. हाय आपका भी स्वागत है. बहुत ही बढ़िया भाई कैसे हो आप?
4: हम भी ठीक है. तो मैं तो पैसा सर वापस दे दूंगा जैसे ही आया है मेरे पास.
1: जैसे ही आए दे दोगे कोई इसका रीजन?
4: रीजन ये है कि बाद में मुश्किल बहुत आती है सच में बताऊं. वैसे क्योंकि न्यूज इधर पड़ी है 2-3 अपने न्यूजीलैंड में भी आए थे ऐसे पैसा आ गया था 1 million भी आ गया था इधर रोटरुआ की साइड तो बाद में ज्यादा देने पड़ते हैं.
0: क्या 1 million आ गया?
4: हाँ काफी टाइम पुरानी बात है मैंने न्यूज में पढ़ी थी आज से मेरे साथ 20-25 साल पहले की बात है.
0: अच्छा
4: जी आपने भी सुना न्यूज में?
1: नहीं 1 million वाला नहीं पता.
0: 20-25 साल पहले मैं था नहीं यहाँ पे यार. अरे मैं अभी रिसेंट मतलब रोज की न्यूज पढ़ने को मेरे को जान पे आता है.
4: भाई ने डाला था इंडिया पैसे वो पता क्या था वो भी मेरे भाई ने पैसे डाले थे इंडिया अपने साले को वो थोड़ी सी ना इमरजेंसी आ गई थी हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने घबराए जल्दी जल्दी पैसे एक नंबर का ही डिफरेंट पड़ा गया तो वो ना किसी और के अकाउंट में चले गए इंडिया में पैसे. हाँ लेकिन है उधर ही था हमारे साथ ही गांव में था तो बात यह है कि वो जिसका अकाउंट था वो भी कनाडा में बैठा था वो अभी आ नहीं रहा. वो मैनेजर बोल रहा है कि मैं ऐसे लीगली तौर से ले नहीं रहा अभी साल से वो पैसा ब्लॉक हुआ है अभी किसी वो बोल रहा है कि जब वो आएगा तो हम निकाल देंगे. 50,000 रुपया था वो अभी ऐसे ही अकाउंट में पड़ा है 1 साल से ऊपर हो गया है.
1: पता है मैंने ये कहीं पे सुना था कि मतलब घर पे बुजुर्गों से एक्चुअली मैं ये सुना हुआ कि जब आप बड़ी ट्रांजैक्शंस कहीं पे करते हैं ऑलवेज ट्राई टेस्ट करने के लिए अकाउंट सबसे पहले 1 rupees और $1 समथिंग लाइक दैट एक स्मॉल अमाउंट पहले आपको ट्रांजेक्शन करनी चाहिए एंड व्हेन यू गेट द रिसीव नोटिफिकेशन देन यू ऑलरेडी हैव अ अकाउंट नंबर सेव्ड, फिर उसके बाद बड़ी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए.
0: नाइस, दैट्स अ गुड हैक.
4: ये तो सेफ है अगर आप बिल्कुल सेफ है. लेकिन अभी क्या है कि अभी इधर न्यूजीलैंड में अभी हो गया ना लास्ट टाइम क्या कि नेम आ जाता है अगर इन केस अगर रॉन्ग हो तो वो बोल रहा है कि आपका मैच नहीं हो रहा फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं. वो अच्छी आ गया है अभी.
1: अच्छा किया है वो.
0: चेक पे वाला वो जो होता है ना सही है.
4: हाँ हाँ चेक पे अगर करना है तो वो अगर मैच ना हो तो वो आपको वार्निंग देता है कि भाई देख लो आप डालना चाहते हो
0: तुम्हारी जिम्मेदारी अभी इसके बाद ऐसा करके बताना.
4: तो उससे फिर मतलब एक बार सोचता तो है करने से पहले कि हो नहीं रहा करूं या ना करूं.
0: राइट राइट. थैंक यू सो मच अंतप्रीत. थैंक्स आपके कॉल के लिए.
1: थैंक यू अंतप्रीत.
4: थैंक यू.
1: और वैसे कुछ मैसेजेस भी आए हैं रुजबे रोनल. थैंक यू आपके मैसेज के लिए. रोनल कल का आंसर चार्ली चैपलिन था
0: जो आपने सही गेस किया था. रोनल
1: जो एकदम सही गेस किया था. उपिंदर पाल आपका जो मैसेज आया है जो आपको हैम्पर का मैसेज आया है यस एक्चुअली में आपने जीता है. एकदम लेजिट एड्रेस एंड नंबर है.
0: बट मत आना आप कलेक्ट करने के लिए.
1: रुजबे ले जाएगा.
0: नहीं मजाक कर रहे. प्लीज आके जल्दी फटाफट कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है.
5: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
6: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
7: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
5: हम Accurate Traffic.
8: Book your ski jee trip today.
9: Mainly clear with a low of 6. Now there was a crash on the State Highway 1 northbound link to State Highway 16 westbound. That's now been cleared of the lanes, but still do expect some delays there. Otherwise, around the rest of the city, I wish I had better news, but traffic is still looking really heavy at the moment, especially heading out to the airport from town. That drive time is just under 45 minutes.
8: To book your next ski jee trip to Vancouver or Japan, go to FijiAirways.com.
10: At Bunnings, there's some really easy things you can do to modernise your kitchen. You'll be surprised at how little it costs, and they just look amazing. Whether you own your own home or whether you're renting, rejuvenate your kitchen and make it look fabulous.
11: Get your kitchen sorted with a Prakta trimmable utensil tray, only $15. A Mistral White cordless kettle, $19. And a very handy Caboodle spice tray, just $15.
10: Bunnings makes DIY easy.
12: Bunnings Warehouse!
10: Lowest prices are just the beginning.
13: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
14: We pulled it off, Johnny. We're rich!
15: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
14: What? You're kidding me? Oh, they'll be covered in your fingerprints.
15: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
16: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge-resistant. With two pairs from $169 or above. Limited time, condition supply.
15: I think I dropped my wallet, too.
17: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
5: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Power Drive at 5.
6: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
18: Gundi Khadda. Ya Sida Andarao.
19: Now, A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज सिचुएशनशिप में हमने आपको ऐसा सिचुएशन दिया कि अगर आपके अकाउंट में थोड़े पैसे आ जाए जो आपके पास नहीं आने थे और आप उसका क्या करोगे, और कंसेंसस हर किसी ने यही कहा कि भाई हम तो रिटर्न कर देंगे.
1: एक्सेप्ट दिस केस जो कि बहुत समय पहले न्यूजीलैंड में
0: हमारे लिसनर ने हमें कॉल करके याद दिलाया,
1: और उसके बाद मैंने थोड़ी न्यूज पढ़ी एनजेड हेराल्ड और एआरएनजेड के आर्टिकल्स और उज़्बेक के बारे में. दिस इज बैक इन अर्ली 2000s एंड उस समय पर सो वहाँ एक कपल ने अप्लाई किया था अबाउट $100,000 ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक. तो बैंक स्टाफ के एरर ने क्या किया, डेसिमल पॉइंट की एरर हो गई, $100,000 की जगह उन्होंने ट्रांसफर कर दिया $10 million. जब इनको कपल को रियलाइज हुआ तो उन्होंने उसमें से कुछ मनी ट्रांसफर की अबाउट $6 to $6.7 million आउट ऑफ द अकाउंट टू अदर अकाउंट्स इंक्लूडिंग ओवरसीज. फिर वो न्यूजीलैंड छोड़ के चले गए, हांगकांग चले गए. फिर न्यूजीलैंड की पुलिस ने सर्च किया उनको, इंटरपोल को इन्वॉल्व किया. द बैंक मैनेज टू रिकवर सम पार्ट ऑफ मनी बट द रिमेनिंग अमाउंट वॉज नेवर फुली रिकवर्ड. सो द पर्सन वॉज इवेंचुअली अरेस्टेड एज वेल और वापस न्यूजीलैंड लेके आए, देन वॉज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट एंड सेंटेंस टू प्रिजन एज वेल.
0: ओह नो.
1: या बिकॉज सो इफ यू नोइंगली स्पेंड और मूव मनी दैट इज इन योर्स, न्यूजीलैंड लॉ में इट बिकम्स थेफ्ट, dishonesty offense, not a lucky windfall.
0: Right. So
1: you need to know ki New Zealand law mein, if you knowingly spend or move money that isn't yours, it becomes a theft or dishonesty offense.
0: This is interesting, huh?
1: Yeah.
0: This changes a lot of things for a lot of...
1: अगर आपके पास पैसे आते तो थोड़ा देख लो.
0: तो वो theft में consider हो सकता है.
1: Theft में consider हो सकता है वो.
0: Right.
1: Yeah, anyway, big amount, especially with the big amounts.
0: But yeah, thank you all. यहाँ पे call करके participate करने के लिए. Off air भी काफी busy रहा आज, काफी calls आए हमें. But thank you. And to participate over here, just to let you know, number is 0800-004-866 and 5599 is our text platform number.
1: अभी आपको चांस मिल रहा है एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. थोड़ी देर में करण औजला के शो के टिकट जीतने का मौका भी आपको मिलेगा, उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे. बट फॉर नाउ कॉमेडी नाइट्स रुजबे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर यहाँ पे आके लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. एंड हमारे लिसनर्स को बताना है कि इनका शो किस वेन्यू में होने वाला है.
0: ऑलराइट, ओके. तो अगर आप यहाँ पे अभी के अभी मैसेज करके बताते हो 5599 पे कि कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर जो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं पहली बार न्यूजीलैंड में, वो कौन से वेन्यू में करने वाले हैं. टिकट इसके मिलेंगे आपको bookmyevent.co.nz पे. लेकिन आप अभी हमें बताइए 18 जुलाई को ये शो कौन से वेन्यू पे हो रहा है.
1: Yes, and remember guys,
0: and you'll get a double pass, na?
1: Yeah, double pass. कल 2nd जुलाई है, तो कल 5 बजे हमारे साथ कोई शामिल हो जाएगा और आपके साथ हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं. ईस्टर 2027 बहुत सुन लिया आपने.
0: Now,
1: क्या है ईस्टर 2027 पे, क्या हो सकता है, आपकी लाइफ की कहानी बन सकती है, इसके बारे में हम शेयर करने वाले हैं.
0: It could be an event it could be
1: zindagi na milegi dobara.
0: Could be.
1: It can be ya dil dhadakne do.
0: Yeah.
1: Kuch bhi ho sakta hai ya.
0: Aise koi
1: aisa scenario socho kuch dil chahta hai zindagi na milegi dobara, ye sab soch ke aapke zehen mein kya aata hai.
0: But aisi koi movie bolo na jisme fail hua hai. Ha.
1: Three Idiots.
0: Nahi. Yaar.
1: Fail Go Go Gone. Nahi.
0: Go Go Gone. Yes, that's
1: kind
0: the
1: of
0: one.
1: Fail,
0: go Go
1: yeah. Gone. So it's not a Go Go Gone.
0: It could be Go Go Gone.
1: No,
0: also.
1: Yeah, it's not Go Go Gone.
0: It's not. No. I'm just
1: joking. It's Zindagi Na Milegi Dobara.
0: Go Go Gone also is fun, yaar. What an epic movie. What an epic memory.
1: Epic ye na wo.
0: Yeah. So anyway.
1: So aapki kahani Zindagi Na Milegi Dobara wali ho sakti hai. Ab usme se aapka character kya hai, wo aapko decide karna hai. But ye हम खुलासा करने वाले हैं कल. सो कल 5 बजे के बाद हमारे साथ कोई यहाँ पे शामिल हो जाएगा एंड वी विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट ईस्टर 2027 यानी कि मार्च 2027.
0: जी विजू आपका आंसर आ गया है. विजू फ्रॉम पापाकुरा, बहुत बढ़िया. देवांग आपने भी परफेक्ट आंसर भेजा है और लता ने भी सही आंसर भेजा. आप भी यहाँ पे भेज सकते हो आपके आंसर फटाफट ड्राइव कीवर्ड के साथ. विवेक थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. फटाफट मैसेज भेजिए 5599 पे. एंड
1: दिस मैसेज इज फॉर द ग्रेट कॉमेडी राइट कृष्णा अभिषेक का शो.
0: ये कब आ रहे होने वाला है? कब टिकट जीत रही है, मतलब कब हो रहा है ड्रॉ? आज ही हो रहा है ड्रॉ. अच्छा, यू हैव वेरी लिटिल टाइम, आज ही ड्रॉ होने वाला है, तो फटाफट आज पार्टिसिपेट कीजिए.
1: 20 मिनट का समय है आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए ड्राइव कीवर्ड के साथ. ये जो शो है द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक राजीव ठाकुर, कौन से वेन्यू में हो रहा है?
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum, accurate traffic.
3: Flying overseas soon?
4: Mainly clear with a low of 6. Now, there was a crash on the State Highway 1 northbound link to State Highway 16 westbound. That's now been cleared of the lanes, but still do expect some delays there. Otherwise, around the rest of the city, I wish I had better news, but traffic is still looking really heavy at the moment, especially heading out to the airport from town. That drive time is just under 45 minutes.
5: International check-in is changing at Auckland Airport. Plan ahead and know your check-in zone.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88-600.
7: Dad, I feel sick.
8: Yep, we've all been there. And so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
9: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
10: Hi boys, ek kahani sunati hu. Ek rakshas tha, ghamand uska shastra tha. Wo dhoke se raj karta tha.
11: Main jo bana raha hu wo itihas hai.
12: But should we call her sir?
11: Iski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulayenge.
10: Itihas janta hai ye kahani kaise khatam hui.
13: YRF Spy Universe presents
11: Alpha.
13: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
10: Shuru karo agni pariksha.
14: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
15: And if you're just joining us after the break, we're talking about...
16: Holy... $10 deals on Uber Eats?
17: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
18: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
19: Power Drive at 5.
20: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: अरिजीत सिंह आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पावर ड्राइव एट 5 जारी है और अभी मौका आपको दे रहे हैं हम टू पार्टिसिपेट एंड विन करण औजला के डबल पासेस.
1: या सो करण औजला ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके ऑकलैंड में पहुंचने वाले हैं. रिसेंटली ही वॉज देयर ऑन स्टेज टू लॉन्च ब्रांड ऑफ विराट कोहली.
0: 18
1: का ब्रांड जो है विराट कोहली ने लॉन्च किया था. एंड यू नो उनसे पूछा भी गया था विराट कोहली से कि वाई वो करण औजला को स्टेज पे लेके आया है. ही सेड कि जो उनका ब्रांड है ना इट्स वेरी कल्चर्ड रूटेड है वो जो उनका ब्रांड है. एंड वो खुद एक प्लेयर है बहुत बड़े, उनको किसी और को लेके आने की जरूरत नहीं थी. बट ही वॉन्टेड टू ब्रिंग समवन जो ऑलरेडी कल्चर के साथ जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ ग्लोबल वे. तो इस रीजन से वो करण औजला को वो लेके आए थे वहां पे.
0: राइट राइट.
1: या एनीवे सो पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके करण औजला
0: ना कि विराट कोहली एक प्लेयर है. अनुष्का ये सुनकर बहुत बुरा लगे उसको.
1: या
0: प्लेयर है
1: प्लेयर है.
0: ओके
1: सो या करण औजला इज परफॉर्मिंग स्पार्क अरेना में 25 अगस्त को. लेकिन अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं गाना सुनेगा इस गाने का टाइटल आपको लिख के भेजना है 5599 पर.
0: एग्जैक्ट टाइटल.
1: एग्जैक्ट टाइटल.
2: शो मर्सी ऑन इट.

0: मुझे गिराने की कोशिश कर लो, मैं हमेशा राइज करूंगा.
1: क्या बात है.
0: या सो एनीवे, इस टाइटल का नाम क्या है, क्योंकि टाइटल के साथ वो बहुत रिलेट करते हैं.
1: गाने का टाइटल क्या है?
0: या गाने का टाइटल क्या है? 5599 पर लिख के भेजिए के ए कीवर्ड के साथ.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
3: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rizvi. 6:03 हुए हैं. Good evening, Sandy. Welcome to Trend Makers.
4: A very, very good evening, Rizvi. कैसे हो तुम?
3: मैं ठीक हूँ, Sandy, अभी के लिए.
4: Okay.
3: Yeah.
4: Yeah,
3: we've fine. We've got a special guest in our studio yes. right now. Hi, yeah. Hi, Nushin. Welcome
4: hi,
3: to the
4: Nushin.
3: Show.
5: Hi, Nushin.
3: Hi. How are you doing?
5: Amazing.
3: मैं सोचा मैं अकेले ही क्यों यहाँ पे इरिटेट हो ना.
4: हाँ.
3: सबको साथ में इरिटेट कर.
4: तुम्हें क्या लग वो उसकी आवाज इरिटेट करती
3: नहीं,
4: है तुम्हें. तो तुमने ये क्यों बोला?
3: Don't you say that, Sandy. वो अभी थोड़ी distracted है फोन में इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया.
5: No, I heard, I heard. I just choose to ignore it right now.
3: Great.
5: Yeah. We'll discuss Select at home them. later.
3: आपसे बात कर रही सैंडी वो.
4: मुझे पता है मुझसे क्या बात करेगी.
3: अच्छा. Anyway, but I'm saying कि आज हम जो ट्रेंड मेकर्स में कर रहे हैं. We are talking about three movies in particular.
4: तीनों movies different genre की 1 July को release होती है and अपने अपने reason से classic बन जाती है.
3: Cult बन जाती है. Yeah. So the first movie that we are talking about, I think the reason why Nushin we got you also on is because this movie is Delhi Belly.
4: Yeah.
5: Okay.
3: And this
4: Have you seen this movie?
5: Delhi yeah, Belly. A long time ago. Yeah.
3: Yeah, 2011 mein release hui thi. Or maybe the reason you saw it is because it was 70% English.
4: Yeah.
5: No, not really. Because of the not just the language. Yeah. It wasn't 70% English. It was funny.
4: Because of the concept you liked.
5: Yeah, it was a good storyline.
3: Okay.
5: I do watch Bollywood movies.
3: Name three actors in that movie. Could be any actors.
5: Veer Das.
3: एक जो एक्टर नहीं है मतलब एक्टर है वो
4: है ना उसमें वो.
5: What do you mean? He's there in the movie.
3: Yeah,
5: just because he's a comedian that does. You can't. You mean comedians can't be actors? Is that what you're trying to say?
3: Comedian has to be an actor.
5: Exactly.
3: Because he has to act that he's funny.
5: So you are.
3: Okay.
4: लेकिन तुम अभी भी नहीं सीखे ना रुस्बे.
3: नहीं नहीं. So yeah. Okay. Veer Das is one. Who's next? Who are the?
5: अरे दैट गाय फ्रॉम जाने तू या जाने ना. आई फॉरगॉट हिज नेम.
3: कम ऑन यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम.
5: आई नो बट आई एम नॉट.
4: बट एटलीस्ट यू नो ना कि वो लड़का है इसमें.
5: फेस ना एटलीस्ट.
3: नेपो भांजा. ही इज नॉट अ नेपो किड, ही इज अ नेपो भांजा.
5: That doesn't help me at all. Just say
3: yeah. Okay, one
4: Rizbe,
3: more.
4: वैसे ना यहाँ पे बहुत सारे listeners से पूछेंगे ना, काफी listeners जवाब नहीं दे पाएंगे.
3: क्या बात कर रहे हो आप? Okay, 0800-004-866 Delhi Belly movie काफी cult है.
4: three lead actors का नाम बताइए आप.
3: Three lead actors या three actors?
5: और अगर आप Bollywood देखते हो तो मत बताना. अगर आप rarely देखते हो तो ही बताना.
3: अरे बट वो अगर rarely देख रहे तो हमको नहीं सुन रहे ना. हमको जो regularly देखते वही सुनते.
5: क्या है? I'll say something but I choose not to right now.
3: क्या गंदा बनेगी यार. Hi, आपका स्वागत है.
6: Hello, how are you guys?
4: Good. आप कैसे हैं?
3: Great. As you can hear.
6: Yes, मैंने ये मूवी नहीं देखी पर मैं बॉलीवुड देखती हूँ. पर मैं नाम सभी के ले सकती हूँ.
4: नाम सभी के ले सकती हूँ.
3: अच्छा,
4: तो बताओ
3: बताओ.
6: वीरदास, इमरान खान और कुणाल कपूर.
5: इमरान खान,
3: कुणाल रॉय कपूर. हाँ.
4: कुणाल रॉय कपूर या
6: तो वो नेपो भाई है.
3: नहीं यार, कुणाल रॉय कपूर आई वुड नॉट कॉल हिम. आई नो आई अग्री बिकॉज सिद्धार्थ रॉय कपूर का वो भाई है.
4: yeah.
3: और सिद्धार्थ रॉय कपूर और एक
4: आदित्य रॉय कपूर.
3: नहीं नहीं, आदित्य रॉय कपूर नहीं.
4: तीन भाई है ना ये.
3: हाँ, आदित्य रॉय कपूर.
4: आदित्य रॉय कपूर ही है. हाँ,
3: that's right. But
4: सिद्धार्थ is the director या फिल्म मेकर कह लो. एंड आदित्य एंड कुणाल रॉय कपूर आता एक्टर्स.
3: लेकिन यार ये नेपो भाई नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कुणाल रॉय कपूर मेरे को एक्चुअली में बहुत टैलेंटेड एक्टर लगता है.
4: मेरे को तीनों लगते हैं. मेरे को आदित्य रॉय कपूर भी बहुत अच्छा एक्टर लगता है. उसकी मूवीज नहीं चलती, बात अलग है.
3: वो भी है. मतलब आप तीनों मतलब
6: इमरान अपनी पसंद से नेपो को वो कर देते हैं, अगर नहीं पसंद तो ये
4: exactly.
6: नेपो पे भी
4: वही ना. अभी ऐसा थोड़ा ना होता है.
3: ऐसा नहीं होता है. सही बोल रहे हो आप. तो आप बोलते हो कि इमरान खान भी सही लगता है आपको.
6: आई थिंक उसको भी नेपो का उसने फायदा नहीं उठाया जितना उठा सकता था.
3: उसने कोशिश तो की मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर जनता भी थोड़ी समझदारी.
4: मेरे को लगता है कि जिस समय पर इमरान खान आया ना, उस समय पर चॉकलेटी बॉय वाली लुक जा चुकी थी.
3: ऐसा बोलते हो
4: क्या? या वो ट्रेंड निकल गया था.
6: रणबीर कपूर भी साथ में ही आया था तो फिर
4: कौन
6: इमरान खान.
3: रणबीर कपूर भी साथ में.
6: रणबीर कपूर.
4: हाँ, एक्चुअली यू आर राइट.
3: बट रणबीर कपूर इज अ टैलेंटेड एक्टर.
4: नहीं, इमरान खान भी अच्छी एक्टिंग कर किया.
3: आपने
4: था
3: आपने जाने तू या जाने ना देखी है? प्लीज आई इंसिस्ट आप जाने तू या जाने.
4: मैंने देखी है, मेरे को अच्छी लगी थी.
5: सैंडी अगर आपने नहीं देखी रहती आई वुड बी वेरी मैंने देखी है
4: मेरे को अच्छी लगी थी वो मूवी सच में
3: जाके देखो एक बार
4: अभी देखी उस समय पर
3: एनीवे
4: है ना अर्श क्या बोलती हो
6: हाँ बहुत अच्छी मूवी है रैथसन में पर उसी में ज्यादा अच्छा काम था उसका मूवी तो मिलर ही काम है
3: अरे वो एक किडनैप करके मूवी भी की थी उसने
4: और गौरी तेरे प्यार में वो भी की थी
3: गौरी नहीं है वो
4: गौरी तेरे प्यार
6: गोरे पे इसका भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है
4: या
3: नाइस ओके तुमने हमारा प्यार जीत लिया है
6: थैंक्स आई लाइक टू पास दैट ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर
3: ओके
4: शिफ्ट किया लैंडस्केप ऑफ इंडियन अडल्ट कॉमेडी
3: जी और बहुत ही बढ़िया मूवी ये बनाई और इसका सैंडी जो मेरा फेवरेट गाना है वो तो आपने डाला ही नहीं है प्ले करने के लिए
4: होगा नहीं
3: ओह या ओके एनीवे बट सेकंड फेवरेट सॉन्ग आप सुनेंगे अभी

0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके। लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Humping Bollywood's biggest hits trend makers. में आज हम आपके लिए एक अलग ही theme लेकर आ रहे हैं. आज 1st of July है और आज के दिन पिछले कई सालों में जो जो मूवीज रिलीज होकर बहुत बड़ी हिट बनी है या एक कल्ट क्लासिक बनी है उनके गाने आप आज सुनने वाले हैं
2: जो कि 1st July वाले दिन पे रिलीज हुई. पहले हमने डेली बेले के बारे में बातें की जो कि कल्ट क्लासिक बन के रह गई. एंड देन मर्डर टू जो कि 2011 में आई थी रुजबे. ये मूवी जो है इसने अपने जॉनरा में मास्टर किया एंड पुश्ड सम बाउंड्रीज एज वेल. इसे मैसिव हिट एंड डार्क क्लासिक बोला जाता है.
1: या एक्चुअली में काफ़ी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज रही है इस मूवी में मर्डर टू में विथ अ साउथ कोरियन थ्रिलर कॉल्ड द चेजर. लेकिन महेश भट्ट ने सारी वो डिनाई कर दी थी कि उन्होंने कोई राइट्स बाय नहीं किए थे और इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ 2006 निथारी सीरियल किलिंग्स इन नोएडा उससे इंस्पायर्ड है.
2: या सो धीरज पोर्ट्रेल ऑफ धीरज पांडे जो कि डीपली डिस्टर्ब्ड साइको एक सीरियल किलर था. मास्टर क्लास इन एक्टिंग आई विल से बाय द स्टार कास्ट. इमरान हाशमी एंटी हीरो एवोल्यूशन कह सकते हैं हम यहाँ पे इस मूवी में.
1: ही वाज प्लेइंग द एंटी हीरो.
2: Yeah, the he villain. Was shifting away from serial kisser image into more layered.
1: Serial killer. Right.
2: Yeah.
1: Actually,
2: so Murder 2 थोड़ा different था.
1: एक और चीज जो हुई थी वो था अरिजीत सिंह का बिग बॉलीवुड ब्रेक. उन्होंने आइकॉनिक रोमांटिक ट्रैक फिर मोहब्बत गाया था इस मूवी में. जो
2: मर्डर 2 में ही वाज नॉट अ सीरियल किलर बाय द वे. मर्डर 2 में ही वाज द वन हु इज ट्राइंग टू सेव समवन.
1: ओह ही वाज सेविंग बेसिकली. हां हां. तो वो रणदीप हुड्डा था क्या मर्डर 2 का विलन.
2: I think so. But he played Imran Hashmi. He played a cop, ex-cop basically. So, usko he's saving a young girl.
1: मेरे को हल्की-हल्की याद आ रही है Murder 2.
2: Yeah, it was quite a epic movie.
1: Yeah. Anyway, अभी आपको हम सुनाने वाले Murder 2 के कुछ गाने. लेकिन ये इसका box office clash भी हुआ था with real life tragedy. तो ये जो movie है, ये massive numbers के साथ खुली थी. बट देन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद July 13 को.
2: ओके.
1: जिसके कारण कुछ दिनों तक थिएटर्स से लोग दूर थे और थिएटर्स जा नहीं पाए थे. सो या इट वाज क्वाइट अ क्रेजी वन. और इसका या दिस वाज मर्डर टू स्टोरी.

0: Puki Koi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: हम एक्यूरेट ट्रैफिक।
3: Never seen ice hockey before?
4: Mainly clear with a low of 6. Now, as per usual, there is still quite a bit of heavy traffic around at this point, but drives out of town are slightly settling down. On the southwestern, there's heavy patches citybound from Puhinui Road and southbound from Onehunga. And travelling the northwestern, there are still congested patches to Te Aratu, but it's just under 35 minutes out of town to Massey.
3: Ice hockey games this weekend. Fast, exciting, family-friendly entertainment. Search ice hockey tickets.
5: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Ski J.
8: Ski J?
7: Ski J.
8: Wait, what?
7: Yeah, that's all we're telling you for now. FijiAirways.com.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: Trendmakers.
1: You're listening to Trendmakers. Good evening. आज 6 से 7 के बीच आपको हम तीन ऐसी मूवीज, ऐसे जॉनर की मूवीज के गाने सुना रहे जो जुलाई में रिलीज हुए थे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में
2: रिलीज हुई और कल्ट क्लासिक बन गए. जैसे पहले आपने डेली बेली के गाने सुने, देन आपने मर्डर 2 के सुने, एंड नाउ 90s में चलते हैं. एक्शन थ्रिलर मूवी मोहरा, ये रिलीज हुई.
1: मोहरा के गाने आज भी रिक्रिएट होते हैं यार. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मोहरा का गाना था ना, अक्षय कुमार की बाल वाली छाती इस मूवी में बहुत पॉपुलर थी.
2: मतलब ये बोलना जरूरी था क्या?
1: बट वो टाइम पे था ना अक्षय कुमार का, वो
2: टाइम
1: था.
2: पे सब हीरोज का था, अनिल कपूर का भी था.
1: मैं नहीं देखता था ये सारी चीजें.
2: अच्छा, तो तुम्हें अक्षय कुमार का कैसे याद है?
1: उस जमाने पराए मर्द को नहीं देखता था.
2: पराए मर्द को अभी देखती हूँ
1: मैं? नहीं, अभी मैं सिर्फ मेरी औरत को देखता हूँ. मतलब उस जमाने में पराई स्त्री को देखता था, अभी मैं ओनली होम स्त्री,
2: होम बाउंड हो चुकी हो.
1: हाँ, स्त्री तुम कल आना.
2: ओके.
1: अरे मूवी का डायलॉग है यार.
2: आई नो.
1: एनीवे, तो चलो अभी मोहरा जो 1st जुलाई 1994 में रिलीज हुई थी. ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर बॉर्न आल्सो बाय दैट टाइम. जिसमें स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल भी थे. सेम हेरा फेरी डुओ ट्रायो.
2: या और इस मूवी में मसल एंड मार्शल आर्ट का वेव क्रिएट किया था इस मूवी ने.
1: राइट,
2: सो दैट टाइम में ये ट्रेंड हुआ था. एंड ऑल्सो इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह ने बहुत ही मास्टर क्लास एक्टिंग की थी मिस्टर जिंदल की. गाने इस मूवी के काफ़ी हिट गए थे. सो देखा जाए तो जुलाई फर्स्ट वीक में जो मूवीज कल्ट क्लासिक बन के रह गए, आज हमने आपने तीन डिफरेंट जॉनरास के मूवीज के गाने सुने हैं.
1: आप देखोगे नसीरुद्दीन शाह ने ये वाला जो रोल इस मूवी में किया था, जहाँ पे वो फिलैंथ्रोपिस्ट और फिर उसके बाद विलन वाला रोल, वैसा सेम सिमिलर सरफरोश में भी उनका रोल था. Where he was like more of a shire kind.
2: शायर में ऐसा वो उनका अलग रूप था वहाँ पे. या
1: and but he was actually the villain kind of.
2: इसमें भी mid movie पता चलता है कि जो मिस्टर जिंदल है वो blind नहीं है, is actually a criminal. तो काफी चीजें ऐसी थी इस movie में similar. बट यह मोहरा मूवी के अभी आप यहाँ पे कुछ बैक टू बैक गाने सुनने वाले हैं और इसी नोट पे हम आपको कहते हैं टाटा बाय बाय.
1: हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आज अपना ख्याल रखिए. टुडे इज द 1st of July एंड इट्स ऑल्सो द हम्प डे. अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय
2: बाय.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मसाले का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब।
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits एक एक करके आपके लिए बॉलीवुड खबरें भी हम लेकर आते रहेंगे। कंगना रनौत ने कहा है कि बहुत ही कम फ्रेंड्स इनके बॉलीवुड में हैं। इन्होंने रिवील किया कि काफ़ी इंडस्ट्री कोलीग्स अब इनके साथ टच में नहीं हैं, और इसके बावजूद भी शी रिमेन्स फोकस्ड ऑन हर वर्क। इन्होंने कहा कि सक्सेस डजन डिपेंड ऑन इंडस्ट्री नेटवर्किंग, और इन्होंने कहा है कि एक ऐसा रिलेशनशिप बॉलीवुड में पाना मुश्किल है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आप जिस पर आप भरोसा कर पाते हो। इसलिए इससे अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है कि आप अपने सिर्फ काम पर ध्यान दो, इंडस्ट्री नेटवर्किंग पर उतना ध्यान नहीं भी होगा तो चलेगा। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊँगा कि आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा की शादी बहुत ही जल्दी होने को है। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम

0: टूसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब।
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सुनते रहो क्योंकि और भी बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। रिपोर्ट्स का मानना है कि आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्म मेकर शरण शर्मा ये जुलाई में शादी करेंगे और ये कपल रिपोर्टेडली डेटिंग इन्होंने शुरू किया सेवरल ईयर्स अगो और अभी सेवरल ईयर्स तक इनका डेटिंग हो रहा है, लेकिन अब दोनों तैयार हो चुके हैं शादी करने के लिए और प्रिपरेशंस पूरी तरह से हो रहा है और फैमिली और फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए इंतज़ार हो रहा है अभी। लेकिन अगर अफवाहों की माने तो दोनों की शादी जुलाई में होने को है। दीपिका पादुकोण ने ICC's मैटरनिटी पॉलिसी को सपोर्ट किया है और ये कहते हुए उन्होंने क्या कहा है, मीडिया से क्या बातें करते हुए कहा, इस पर जानकारी मैं बहुत ही जल्दी दूंगा। नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आप मिडवीक मसाला सुनते रहो क्योंकि इसमें बहुत सारी बॉलीवुड न्यूज़ हम लेकर आते हैं आपके लिए।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: मिडवीक मसाला।
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। वैसे दीपिका पादुकोण ने कहा है कि ICC's मैटरनिटी पॉलिसी बहुत बेहतर है। प्रेज़ किया इन्होंने ICC's न्यू पोस्ट प्रेगनेंसी रिटर्न गाइडलाइंस। इन्होंने कहा है कि ये मूव एक लैंडमार्क स्टेप है फॉर वीमेन एथलीट्स और ये पॉलिसी एम करती है टू सपोर्ट प्लेयर्स रिटर्निंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और इनके कॉमेंट्स को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है, वाइड अप्रिसिएशन मिला है ऑनलाइन। और इस डिस्कशन से बेटर सपोर्ट फॉर वीमेन इन स्पोर्ट्स का जो डिस्कशन शुरू हो गया है कि दिस शुड बी हॉरिजॉन्टली अप्लाइड अक्रॉस ऑल दी स्पोर्ट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी अनुराग कश्यप ने लगान शूट के बारे में बातें किया, फिल्म लगान। इसमें ये कुछ यादगार बातें इन्होंने शेयर किया है मीडिया के साथ, जिस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। क्रिश के साथ है मिडनाइट तक, हमारा साथ रहेगा।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Anurag Kashyap, jo bahut hi prasidh nirmata nirdeshak hai, director hai, inhone memory share kiya hai from making of Lagaan. Inhone joke kiya ki Ashutosh Gavarkar jo is film ke director the returned bald after filming, matlab inhone baal pura gawa diya filming ke baad. Ye anecdote ne kafi humorous behind the scenes story share kiya hai. Fans ne enjoy kiya about the demanding production jo Lagaan mein lagaya gaya tha. Lagaan bahut डिमांडिंग प्रोडक्शन रहा है, बहुत कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ा था और इसलिए तो वो काफ़ी हिट और सुपरहिट मूवी सामने आई है क्योंकि इतना मेहनत किया गया था पूरे टीम द्वारा. ये जो इंटरव्यू अनुराग कश्यप के साथ हुआ है ये वन ऑफ बॉलीवुड लैंडमार्क फिल्म्स के बारे में हो रही थी जिससे काफ़ी नॉस्टैल्जिया और साथ में ह्यूमर्स बिहाइंड द सीन स्टोरी लोगों को सुनने को मिला. क्रिश का साथ है और भी बॉलीवुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी.

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: Raised on New Zealand farms, shared to your table. Celebrate Matariki with our fresh chicken breast fillets, boneless, skinless, on special at just $12.99 a kg. Large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
10: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
11: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
0: On Hum. Wednesday ka tadka. Midweek masala on Hum. You're listening to Krish. Let's go!
12: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है, क्रिश के साथ है और 9 तक ये चलता रहेगा. रात 12 तक मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. अक्षय कुमार बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ एक्शन फिल्म्स ही किया. इन्होंने एडमिट किया है कि ही रीच्ड अ पॉइंट वेयर ही वांटेड अ चेंज और इन्होंने कहा कि ही फेल्ट लाइक स्लिपिंग हिमसेल्फ फॉर रिपीटिंग एक्शन रोल्स. एक टाइम था जब मैं अनाड़ी, टू खिलाड़ी और सबसे बड़ा खिलाड़ी, ऐसे फिल्मों में अक्षय कुमार ही नज़र आते थे एक्शन किरदारों में. लेकिन बाद में फिर उन्होंने कॉमेडी में भी अपना कदम रखा और इसमें भी छा गए. और एक्टर ने कहा कि ही वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स और इनका जो वर्सेटैलिटी है, इन्होंने कहा कि एक्टर को बहुत रेलेवेंट बनाता है और ऐसा ही कुछ ये साबित करना चाह रहे थे. फैंस ने प्रेज किया है इनका कैंडिड रिफ्लेक्शन ऑन हिज करियर. बहुत सालों से ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है, अलग अलग किरदारों को इन्होंने निभाया है. कुछ ही देर में करीना कपूर ने जोक किया अबाउट कॉम्पीटिंग विद जसप्रीत बुमराह. इस पर जानकारी आपके लिए जारी है नाइट कैफे मिडवीक मसाला क्रिश के साथ.

नाइट कैफे मिडवीक मसाला अपने अंतिम कड़ी तक आ पहुंची है, और इससे पहले एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। दिस बॉलीवुड न्यूज अबाउट करीना कपूर, इन्होंने एक प्लेफुल मोमेंट शेयर किया है व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट विद हर सन तैमूर। इन्होंने जोक किया दैट शी कुड कम्पीट विद जसप्रीत बुमराह, और एक लाइट हार्टेड कॉमेंट ने फैंस को बहुत अम्यूज किया है। फोटोज और वीडियोज फ्रॉम द फैमिली आउटिंग वायरल हो चुके हैं, और इंटरेक्शन ने शो किया है हर फन साइड एज ए पेरेंट और इनका इंटरेक्शन विद तैमूर। आज के लिए मिडवीक मसाला में इतना ही, अगले घंटे पर मिलते हैं विद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट ऑन द टॉप ऑफ द आवर, और फिर 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक तुरंत उसके बाद।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Bank Better New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
2: Get delicious three-day sale deals at New World North Island. Get whole beef scotch fillet, $39.99 per kilo. Or yummy rose apples, $2.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes limits exclusions apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: हम टाइम चेक, हम न्यूज, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
8: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. There's a belief in customs criminal organisations are moving towards the illicit tobacco trade because the punishments are not as strong as they are for drugs. 21 search warrants across Rotorua, Waikato and Auckland have ended in 5 arrests and seizures of more than 1.3 million illegal cigarettes. The head of the nurses union is calling for an independent inquiry after a man died following a reported 9-hour wait at Waikato Hospital's emergency department. The South Wairarapa District Council is warning residents that work to clear slips could take more than a week. In sport, new All Blacks coach Dave Rennie's first 23-man squad to face France this weekend in Christchurch will be revealed at 4 tomorrow afternoon. The NBL basketball in Invercargill this evening. Deep in the final quarter, it's the Southland Sharks leading the Canterbury Rams 99-95. And in tennis with Davis Cup Auckland, day 3 at Wimbledon starts in an hour. Second round matches in the singles. Top line players featured overnight include the men's and women's top seeds Jannik Sinner and Aryna Sabalenka.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: 1 रहेगा। अभी मिड वीक मसाला आपने सुना, बॉलीवुड की खबरें एक के बाद एक कर मैंने आपको सुनाया। अभी नाइट कैफे में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा जो यूजुअल नाइट कैफे होता है, टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आप सुनते हैं और फिर तुरंत उसके बाद आपके लिए 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक हम लेकर आ जाते हैं। बहुत ही प्यारे ये लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स मैं आपके लिए रखा हूँ इस बार, आप ज़रूर इन्जॉय करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट जुलाई आज है, अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे। कुछ स्पेशल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। कृष के साथ है, वेलकम बैक।

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ हो रहा हूं.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Danny didn't think he needed a DVS system.
3: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
2: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
3: Nah, only one room. It was just too noisy.
2: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: Ski G.
5: Wait, what?
4: Yeah, that's all we're telling you for now. FijiAirways.com.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
7: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Hum.
7: Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
8: Let's go.
9: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं टू ओकलैंड एंड इट्स गोइंग टू बी मैसिव फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स टू द एंथम्स जो हर किसी को पता है जो पसंद करते हैं इनके गाने एक्सपीरियंस कीजिए करण औजला लाइव ऑन स्टेज एट स्पाकरीना 25th August को ये परफॉर्म करेंगे एंड दैट्स नॉट ऑल इनको एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर IKKY Icky join in karenge, making this an unforgettable night of music and energy. Aap apna chance miss nahi kar sakte to be part of the P-Pop Culture World Tour. Tickets or more information, aap hum.rover.nz visit kare ya phir livenation.co.nz visit kare. Karan Aujla 25th August Park Arena mein hone ja raha hai. Aapko bhi yahan par pahunchna hai. Aur humare saath hi aapke liye Karan Aujla ka gana daily pesh karenge. Aapko guess karna hoga title of the song. Correct entries ko draw mein shamil kiya जाएगा डबल पास जीतने का मौका होगा आपको टेक्स्ट करना होगा कि अपने नाम के साथ सही जवाब 5599 पर ड्रो 6 जुलाई को होने जा रहा है मैं

0: मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Night Cafe.
5: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। Oakland, get ready. एक evening of laughter entertainment होने जा रहा है with Gujju Bhai ने exchange offer जिसमें legendary Siddharth Randeria आ रहे हैं। ये brand new comedy है जिसमें Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer जिससे series of hilarious misunderstandings, unexpected twists और laugh out loud situations आते हैं। witty dialogues है, relatable family moments होंगे और इस show में classic Gujarati humor भी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए। सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू बाईज प्रोडक्शन, जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं, तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें। टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierTickets.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज। ये 3 जुलाई को होने जा रहा है, 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date. Ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th August. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: 1st जुलाई आज है और आज वेंसडे नाइट कैफे जारी है आपके लिए. फाइनल आवर है ये. जितने भी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले तो बिफोर द नाइट इज ओवर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको, बहुत सारी बधाइयां टीम हम की ओर से. जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं तो आपको भी याद करते हैं. बिग शाउट आउट टू यू. हमारे ऑनलाइन लिसनर्स के लिए भी बिग शाउट आउट टू यू. मैं क्रिश आपको याद कर रहा हूँ. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं और उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है या नाइट शिफ्ट वर्कर्स, रोवा वर्कर्स, सॉरी रोवा लिसनर्स, आपके लिए भी ये 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक जो हम पेश करने जा रहे हैं, इनके जितने भी गाने हैं आपको डेडिकेटेड है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one Humpling Bollywood's biggest hits. First July है और जितने भी हमारे प्यारे listeners हमारा साथ दे रहे हैं, thank you so much. Online listeners, आपका स्वागत है और जितने भी हमारे listeners अभी अभी हमारे साथ join हो चुके हैं, thank you so much. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका साथ. कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे. Another half an hour to go. Night Cafe midnight तक चलता रहेगा आपके लिए. कुछ interesting science related news भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी. इसके लिए आप हमें सुनते रहो. यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है, बटर वर्सेज मार्जरीन इन बेकिंग, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पढ़ रहा था, इस पर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा.

0: कैफे ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स। द बैटल बिटवीन बटर और मार्जरीन कम्स डाउन टू केमिस्ट्री। कहा गया है कि बटर इज नेचुरली अकरिंग फैट्स क्रिएट रिच फ्लेवर्स, गोल्डन ब्राउनिंग और फ्लेकी बेक्ड गुड्स। वहीं पर मार्जरीन का मॉडिफाइड प्लांट ऑयल्स काफ़ी कंसिस्टेंसी ऑफर करता है और काफ़ी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होता है। बहुत दोनों में मोस्टली फैट होता है, लेकिन देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस हाउ दे बिहेव इन रेसिपीज। और ये डिफरेंसेस अंडरस्टैंड करना आपके लिए बेहतर होगा अगर आपको राइट वन चूज करना है फॉर कुकिंग या बेकिंग या फिर हेल्थ गोल्स के लिए। ये द कन्वर्सेशन द कन्वर्सेशन आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ था ऑन 26th of June। कहा गया है कि बटर एंड मार्जरीन लुक सिमिलर बट उनका केमिस्ट्री चेंजेस एवरीथिंग, तो ये जानना जरूरी है। क्रिश के साथ है।
2: हेलो, हाँ जी,
3: सत

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल, आ जाएंगे. थर्सडे नाइट है तो रिदम एंड रोमांस लेकर आएंगे, जिसमें सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए के करके हम पेश करेंगे. अपना बहुत ही ख्याल रखे. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट एंड ऑल्सो योर थर्सडे. और फिर रात को तो मुलाकात होती है. गुड नाइट एवरीवन.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Hi न्यूजीलैंड, this is Siddharth Randeria Gujubai.
2: અને હું તેજલ વ્યાસ.
1: અમે આવી રહ્યા છે અમારું નવું નક્કોર સુપર હિટ કોમેડી નાટક ગુજ્જુભાઈ ની
2: એક્સચેન્જ ઓફર.
3: Friday 3rd July Victory Convention Center પર Learning HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria નું નવું નાટક ગુજ્જુભાઈ ની એક્સચેન્જ ઓફર. હસી હસીને લોટપોટ થવા તૈયાર થઈ જાઓ. ટિકિટ્સ જલ્દી બુક કરી લેજો. ફોન કરો 021-244-6278 પર. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई ले

0: baby, go best passing now.
1: Driving you home.
2: Drive show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
8: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: क्या? कौन है? अरे
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती।

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: Mrs. Singh.
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz. Night Flight.

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Winter आ गया है and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store आइए या shop online today.
5: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Night Flight.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Step for a man, a giant leap for mankind.
3: Houston, tranquility base here. The eagle has landed.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: प्लेस भी रिमेक किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0226-004-706 पर संपर्क कर सकते हैं। पुष्पवती और स्वर्गीय महादेव के पुत्र यानी जय, संजय, जितेंद्र कुमार और रोशनी नादन के भाई शैलेंद्र कुमार देव की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0226-004-706 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड की शामिनी रमन के पिता यानी सिमेंटल क्रेसेंट सोमविल की श्रीमती सुशील रमन के पति रमन क्रिस्टोफर या रमाश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार अगले सोमवार को 1 बजे मैनुकाहू मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनी रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-717-504 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड की शामिनी रमन के पिता यानी सिमेंटल क्रेसेंट समविल की श्रीमती सुशील रमन के पति रमाश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार अगले सोमवार को 1 बजे मैनुकाहू मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनी रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-717-504 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
0: 5 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 5 degrees hone wala hai. Aaj ek bar phir subah ke ya din bhar mausam saaf aur suhana rahega. Sunrise 7:34 AM par aur sunset sham 5:17 par hoga.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast Catch-Up.
0: 5:30 हो रहे हैं, 6:00। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: और थर्सडे हैं, 2 जुलाई, आज के सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कल का दिन अच्छा रहा होगा और आज का दिन उससे भी बढ़िया और बेहतर आपके लिए गुजरे।
5: बिल्कुल, यही उम्मीदें हमेशा आपके लिए कि आपकी हर सुबह बेहतर से बेहतरीन रहे और आपका हर दिन इतना कमाल का गुजरे कि आपकी हर विशेष पूरी हो, बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपके साथ बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ, जबकि आज के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं, आप जहाँ के भी हैं साथ हमारा दे रहे हैं, चाहे रोवा ऐप पर या फिर 104.2 एफएम पर, थैंक यू सो मच आपके साथ और आपके समय के लिए।
0: इस सफर में आज तमाम चीजें होंगी, शुरू करेंगे अपने सनी साइड अप स्टोरी के साथ और तब बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा बारी बारी से इस प्रोग्राम में हम करते रहेंगे।

0: सनी साइड अप।
1: आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी जो है एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था डेक्कन हेरल्ड पर, वहां से ये स्टोरी जो है मैंने ली है। और ये कहानी जो है एक ग्रामीण रूरल एरिया की है इन इंडिया, ओडिशा में सुबर्णपुर एक जगह का नाम है। और वहाँ पर 80 यानी 80 ईयर्स की एक महिला जो है अपने बेटे के साथ रहती है। उनका बेटा जो है विजुअली इम्पेयर्ड है और उनको ठीक से दिखता नहीं है। और अपने बेटे की देखभाल करते करते उनका जीवन ऐसा हो गया कि बेली अपना जो बेसिक नीड्स है वो मीट कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा गरीबी में उनकी ज़िंदगी जो है ये कट रही थी। उनका घर जो है मिट्टी की एक झोपड़ी थी बेसिकली, जो गिरने के कागार पर थी। और बेसिक हेल्थ केयर, साफ पानी और जो बेसिक खाना है वो भी उनको अच्छी तरह से नसीब नहीं हो रहा था। और उनका जो स्ट्रगल है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। शायद वो इतने रूरल एरिया में रह रहे थे कि गांव के लोगों को ही पता होगा, लेकिन उससे बाहर किसी को कुछ खास पता नहीं था। जब तक एक रीजनल न्यूज़पेपर ने उनकी कहानी जो है एक पैराग्राफ में छोटे से एक स्टोरी जो है ये पब्लिश की। और हुआ क्या कि ये जो स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी एक रीजनल न्यूज़पेपर में, उसने जजेस जो हैं इंडियन के लीगल सिस्टम के, उनका ध्यान जो है ये अट्रैक्ट कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब जजेस ने ये रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने सुओ मोतु एक चीज़ जो है ये कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जो जजेस है या अदालत है ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करती है टू एक्ट इमीडिएटली ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। किसी से वो कोई लीगल पिटीशन का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू जो है ये एनफोर्स किया। और वहाँ पर जो ओडिशा के अधिकारी हैं उनको अदालत ने आदेश दिया कि वो महीनों का जो स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसको बाईपास करते हुए इमीडिएट सपोर्ट जो है इस माँ को और उसके बेटे को दें। उनको एक डिग्निफाइड होम मिले, उनको इमीडिएट मेडिकल केयर मिले। और स्टेट सरकार को ये आदेश दिया कि दे नीड टू सी कि उनको अच्छा खाना पीना जो है ये भी मिले।
2: सो दैट इज समथिंग जहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि कम्युनिटी ने मिलकर इनकी हेल्प की, बिकॉज इफ दे वर डूइंग इट आसपास के लोग मिलकर करते तो शायद सर्टेन टाइम तक के लिए वो अपनी ओर से जो भी हेल्प हो सकती प्रोवाइड कर पाते। बट देन इमेजिन द फैक्ट कि द लॉ गेटिंग इन्वॉल्व एंड गेटिंग सो एम्पैथेटिक कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फैसला जो है ये लिया और एक पावरफुल तरीके से लिया जिसके साथ नॉट जस्ट द कम्युनिटी बट द गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व एंड वो उनकी हेल्प करे ताकि लॉन्ग रन बेसिस पर उनकी हेल्प जो हो सके। बिकॉज द मम इज इन सच अ एज कि उनकी हालत नहीं है, उनकी उम्र नहीं है काम करने की, और जब बेटा विजुअली इम्पेयर्ड हो तो उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस कि वो भी अपनी लाइफ जो है ये काम करते हुए अर्निंग करते हुए गुजार सके ना। सो इट्स अ वेरी गुड थॉट बिहाइंड द होल प्रोसेस। और ऑफ कोर्स जिस तरह से इनकी हेल्प की गई है वो भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑफ हाउ थिंग्स कैन बी डन एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बिकॉज अगर इनके बारे में जो स्ट्रगल्स ये कर रहे हैं उसके बारे में शायद नोटिस में आता नहीं तो ये फैमिली आज भी शायद यू नो हेल्प रिसीव नहीं कर पाती।
1: और ये भी सोचना ज़रूरी है कि एक छोटी सी बात जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई चलो छोड़ो इसका क्या, इसको तो उतना
2: इससे क्या ही फर्क पड़ेगा।
1: हाँ, एक स्टोरी से क्या फर्क पड़ेगा। तमाम लोग गरीबी में अपना जिंदगी जो है ये गुजार रहे हैं, एक और आकर क्या फर्क ले आएगा उनकी जिंदगी में। लेकिन इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
2: एब्सोल्युटली।
1: तो ऐसे सनी साइड अप स्टोरीज आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आते रहते हैं। अभी 21 मिनट हो रहे हैं 6:00।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। Driving you home. Drive. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
0: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
0: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur West City Omura Jaiku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi West City Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit westcityautogroup.nz or search for West City Auto Group on socials.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
3: Karan Ojra brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Ojra live.
8: Stock up on your snacks with New World North Island's 3-day sale. Get Coca-Cola, Sprite or L&P 18-pack cans $14.99 each. Or McCain Super Fries 900 grams $2.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
10: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Global headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, दोहा में कतार और पाकिस्तान की मीडिएशन के जरिए यूएस और ईरानियन ऑफिशियल्स के बीच इनडायरेक्ट लो लेवल टेक्निकल टॉक्स चल रही हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिकन के साथ किसी भी डायरेक्ट मीटिंग से साफ मना कर दिया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के फॉरन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इसराइल के किसी भी अटैक पर इमीडिएट पावरफुल रेस्पॉन्स की धमकी दी है, जो तब आई जब इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतपा खमेनी को मार्क्ड फॉर डेथ कहा। इस बीच यूएस ईरान अग्रीमेंट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल शिपमेंट्स फिर से शुरू होने की वजह से मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 3 महीनों के मुकाबले काफी तेजी से नीचे गिरे हैं। भारतीय सरकार के नोटिस के बाद व्हाट्सएप ने अपने यूजर नेम फीचर के रोल आउट पर रोक लगा दी है और एनडीटीवी को बताया है कि उन्होंने इम्पेसोनेशन और अब्यूज रोकने के लिए कई लेयर्स की सिक्योरिटी बनाई है। मेटा का कहना है कि ये फीचर फोन नंबर्स को प्राइवेट रखने के लिए डिजाइन किया गया है और उन्होंने बड़े पब्लिक फिगर्स, सेलेब्स और गवर्नमेंट एंटिटीज के नेम्स को पहले से ही ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिजी के डिफेंस मिनिस्टर पीओ तुकुंदुआ ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कमीशन ने उनसे आरएफएमएफ कमांडर की अपॉइंटमेंट पर सलाह ली थी और उन्होंने मेजर जनरल चोने कलोनेवाई को अगले 5 साल के लिए रीअपॉइंट करने का पूरा सपोर्ट किया है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 131 सब सेक्शन 4 के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर से कंसल्ट करना जरूरी है और तिकुंदुआ ने कलोनोवाई से मिलकर उन्हें बधाई दी और देश की सुरक्षा के लिए उनके काम को सराहा है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज सुबह का जो पहला राउंड ऑफ 32 मैच ये पूरा हो चुका है। इस मैच में इंग्लैंड की जीत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के खिलाफ 2-1 से हुई। इसके बाद आज सुबह 8 बजे बेल्जियम सेनेगल से खेलेगा और 12 बजे यूएसए की भिड़ंत बोस्निया हर्जेगोविना से होगी। इन मैचेस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। अभी तक राउंड ऑफ 16 के पहले 4 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। रविवार की सुबह 5 बजे कनाडा मोरक्को से खेलेगा, जबकि सुबह 9 बजे पेरेगुए की भिड़ंत फ्रांस से होगी। सोमवार की सुबह 8 बजे ब्राजील नॉर्वे का सामना करेगा और सोमवार को दिन में 12 बजे मेक्सिको और इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच फिलहाल खेला जा रहा है। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 7 खिलाड़ी खोकर 189 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड टीम को अभी 190 रन का टारगेट जो है ये दिया गया है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपकी खातिर हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
11: Bollywood's most wanted.
12: Gundi khad jao, ya seedha andar aao.
13: Main laun apna A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 25 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर. वैसे अब फिल्म अल्फा जो है ये बस रिलीज ही होने वाली है एंड फाइनली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है इस ने फिल्म को क्लियरेंस जो है ये दे दिया है. फिल्म को शिव रवैल जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली यशराज फिल्म्स इसको बैक कर रहे हैं. और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके अनुसार कहा गया है कि जो हिंदी वर्जन है ऑफ द फिल्म विद इंग्लिश सबटाइटल्स इसको क्लियरेंस मिल चुका है और अप्रूव रन टाइम इस फिल्म का है 140 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स यानी कि 2 hours 20 minutes and 48 seconds. लेकिन जो बोर्ड है उसने मेकर्स से कई मॉडिफिकेशंस करने की मांग की बिफोर ग्रांटिंग द फिल्म क्लियरेंस फॉर रिलीज. और सीबीएफसी ने फिल्म के वायलेंट सीक्वेंसेस में काफ़ी चेंजेस की मांग की और जिसकी वजह से जो विजुअल्स हैं कई जगह पर इनको अल्टरनेट शॉट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ा. मल्टीपल स्टेबिंग सीक्वेंस जो है उसको मॉडरेट करके टोन डाउन करना पड़ा अल्टरनेट सीन्स के साथ. और जो कमेटी है उसने फिल्म मेकर्स को ये भी बताया कि उनको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा जो डिस्क्लेमर दिखाया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म और उसमें और जितने भी गाने हैं उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स जो है ये ऐड करने पड़ेंगे. अन्य मॉडिफिकेशंस जो इस फिल्म में किए गए हैं उनमें शामिल हैं जो कुछ शब्दों को वर्ड्स को रिप्लेस करना एक और विजुअल को मॉडिफाई करना और साथ ही में जो कई अन्य रूल्स हैं उनके मुताबिक कई चेंजेस जो हैं ये किए गए हैं. लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें ये भी कहा है कि फिल्म का कोई भी फुटेज जो है ये डिलीट नहीं किया गया है. तो ये फिल्म अब जो है रिलीज होने के लिए तैयार है एंड लेट्स सी अल्फा जब रिलीज होती है तो थिएटर्स में क्या कमाल करती है.
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Traffic. Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: A bit more cloud today, but still fine. Got a high of 16. Coming in on the northern motorway, starting to slow down at Silverdale, and it is slow Constellation to Milford. 20 minutes in from Constellation Drive, 40 from Silverdale. Northwestern, 22 minutes in from Massey, slow at Te Aratu, and then Grey Lynn to the city. Southern, 26 minutes in from Monaco, slow Papakura to Papatoetoe, and around Mount Wellington. Southwestern looks okay.
3: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
5: Winter आ गया है and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store आइए या shop online today.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology and right now it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस. ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
8: Ski G.
9: Ski G?
8: Ski G.
9: Wait, what?
8: Yeah, that's all we're telling you for now. FijiAirways.com.
10: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
11: Azara le le tu maza.
1: Hum, playing Bollywood's biggest hits. Yeah. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: अभी 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. 7 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. गुड मॉर्निंग के आपके जो मैसेजेस आए हैं, सबसे पहले राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ गुड डे. मिस्टर मटा मटा, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग.
12: और इनके अलावा आज सुबह सुबह मैंडी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ गुड डे, इन्होंने कहा है। थैंक यू सो मच मैंडी आपके भी मैसेज के लिए।
0: गुड मॉर्निंग, राम राम विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे। विमलेश और प्रिया, आपको भी इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
12: जय साई राम, पूजा एंड विजय, हैप्पी थर्सडे, साइंस ब्लेसिंग्स, ये हमारे पास भेजा है बॉबी मान जी ने, तो थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए, आपके साथ के लिए।
0: साई राम भाई, विजय एंड पूजा, कीप हमिंग, हैव अ ग्रेट डे। संजेश, आपको भी इस दिन और इस सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
12: और गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, ये कहा है विनीता जी ने, थैंक यू सो मच विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए, थैंक यू आपके भी साथ के लिए।
0: तो अभी 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, आज 2nd of July है, शायद अभी भी आपको याद आया है कि आज आपका कोई खास है जो अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके मैसेजेस जो हैं समय से पहले हमारे पास आ जाने चाहिए। 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं।
12: और इधर चलिए आपके लिए, जबकि मैसेजेस तो आप 5599 पर डेडिकेशंस के लिए, बर्थडे ग्रीटिंग्स के लिए ज़रूर भेज सकते हैं, पर ऑन दी अदर हैंड सवाल जब हम आपसे करते हों तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। एंड बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जहां पर इनाम जीतने का मौका, जैसे फॉर एग्जांपल आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपके पास अपॉर्चुनिटी है द ग्रेट कॉमेडी नाइट, इसके लिए जो डबल पास है ये जीतने के लिए, साथ में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी राहत फतेह अली खान, इनका जो शो है ये होने वाला है, इसे आप देख सकते हैं, कहां से पासेस लेने हैं ये आपको हम जरूर बताएंगे। करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड, और इसके लिए भी पासेस जीतने की अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिलेगी जानने के लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। बट फिलहाल के लिए अगर आपको याद हो हमने अभी कुछ दिन पहले एक गेम खेला था जहां पर व्हाट वी डिड वाज कि हमने आपसे कहा कि एक मूवी में जो एक्टर है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करते हैं सपोज, और वो जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन का वो हम आपको बताएंगे। वो प्रोफेशन सुनने के बाद, एक्टर का नाम सुनने के बाद आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी फिल्म है।
0: ओके,
12: फॉर एग्जांपल संजय दत्त एज अ डॉक्टर स्लैश गैंगस्टर स्लैश डॉक्टर स्लैश गैंगस्टर अगर गेम में बोलू तो
0: मुन्ना भाई,
12: राइट, इज वेरी इजी, राइट,
0: वेरी इजी,
12: राइट। तो उसी तरह से आज का हमारा जो ये एग्जांपल है या ये क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है और इसका जवाब जो है ये हमारे पास आपको भेजना है। सो द क्वेश्चन इज शाहरुख खान एज अ ट्रेवल गाइड।
0: अच्छा, आई थिंक आई नो द मूवी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
12: I think most of the people will know the movie. How many of you have seen it? I am not quite sure. Yeah, for how many of you have liked it? Not quite sure. I personally liked it, though ye film didn't do that well. But kaun si film hai ye jisme Shahrukh Khan the as a travel guide?
0: BF apna answer aur apna naam subah subah aap hame bhej sakte hain 5599 par.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Book your ski G trip today.
3: A fine day with cloudy patches, got a high of 16 degrees. And on the southern motorway, slow Papakura on and off to Mount Wellington. A few faster patches, 32 minutes Manukau to town, creeping up to an hour in from Drury. Southwestern, slowing northbound and a bit slow on George Bolt heading to the airport too. Northwestern, 25 in from Massey, slow at Te Aratu and all the way from Point Chev. Northern, 20 from Constellation, slow from there.
2: To book your next ski G trip to Vancouver or Japan, go to FijiAirways.com.
4: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड। टीज़ एंड सीज़ एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी।
5: सो यू एंड द बॉयज हैव दैट माइल्डली इनअप्रोप्रिएट, एक्चुअली वेरी इनअप्रोप्रिएट ग्रुप चैट। Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000.
7: Better.
6: Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
10: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Breakfast catch up. Throwback.
13: ट्रॉफिक का वक्त हो चुका है, जबकि 10 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। हरदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और जो जवाब आप भेज रहे हैं, जवाबों को पढ़ने के बाद अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ।
14: क्यों, इतनी क्या कंफ्यूजन की बात है इसमें?
13: क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे सही सही याद है कि नहीं कि शाहरुख खान और जो क्लू आपने दिया एज ए ट्रेवल एजेंट कि ये किस फिल्म में थे, वही मैं सोच में पड़ गया हूँ।
14: ट्रेवल एजेंट नहीं, ट्रेवल गाइड, टू अ
13: गाइड। अरे हाँ, सॉरी, वही टू अ गाइड।
14: हाँ, तो आई थिंक पीपल आर अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि आई कैन सी अ फ्यू रॉन्ग आंसर्स हियर एज वेल। बट रोनल्ड है, कृष्ण नायडू है, कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं, जवाब नहीं भेजा है। जय, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। फिजा है, हरदीप, थैंक यू सो मच आपके भी जवाब के लिए। किसी ने अपना जो मैसेज भेजा है सेइंग डोंट नो, तो आपको चलिए मैं क्लू देती हूँ कि ये जो फिल्म है, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, शाहरुख खान इज अ टूर गाइड। मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, ही प्लेड अ कैरेक्टर फॉर टूर गाइड बेसिकली। तो ये कौन सी फिल्म है पूछा आपसे, ठीक है
13: जी।
14: क्लू मेरी ओर से ये है कि ये वो एक लौती फिल्म है जो इम्तियाज अली ने शाहरुख खान के साथ की है अभी तक।
13: अच्छा।
14: उन्होंने इस फिल्म की कहानी जो है ये लिखी और साथ में इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। And this is that one and only film that he has done with Shahrukh Khan.
13: तो अब शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो गया हो। BF अपना आंसर और अपना नाम 5599 पर आप हमारे पास भेजें। 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद करेक्ट आंसर हम आपको देंगे। शाहरुख खान एज ए ट्रेवल गाइड, कौन सी फिल्म?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 5.3 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 5 डिग्रीज एक बार फिर रहेगा. सुबह के वक्त कुछ कुछ जगह पर फोग, और आज मौसम दिन भर साफ और सुहाना रहेगा. सनसेट शाम 5:17 पर होने को है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Get up, get up. Good morning. Morning Madness.
1: 3 मिनट हुए हैं अभी 7:00. मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं. अगर कुछ देर से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम या रोवर पर आप हमारा कहीं से भी साथ दे रहे हैं. इस सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको.
3: Before we move on with the rest of the things जो इस घंटे हमें आपके लिए लेकर आना है, आपके साथ शेयर करना है, और प्लस जो सवाल पूछा था

0: उसका जवाब देने से पहले, जस्ट अ व्हाइल अगो जब यू नो मैं कुछ चीजें जो ये देख रही थी आपके लिए लेकर आने के लिए, आपसे कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ डिटेल्स शेयर करने के लिए, आई केम अक्रॉस दिस वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ट्रू लाइंस जो मैंने सुने, और मैंने सोचा कि यार ये तो सच में बहुत सही है. एंड आई डोंट रियली नो हु नीड्स टू हियर दिस, पर ये कुछ ऐसा है जो शायद आपके काम आ सकता है. तो कहते हैं कि अगर आप रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हैं और आपको अगर यू नो ट्रैफिक मिल जाए, लाइक अ वेरी बैड ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम हो जाए अगर, तो आप क्या करोगे? अब बैठे बैठे गाड़ी में इंतज़ार करोगे फॉर द ट्रैफिक टू क्लियर, अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, या फिर आप जानते हैं यू एक्सपेक्टेड टू बी दैट वे, सो आपने अपना तरीका उसके साथ कोप करने का ढूंढ लिया है, वेदर यू विल जस्ट सिट एंड वेट पेशेंटली, यू विल लिसन टू द म्यूजिक टू काम योरसेल्फ ताकि आप यू नो इम्पेशेंट ना हो, ओ यू विल जस्ट रिएक्ट इन डिफरेंट वेज एंड देन काम डाउन एंड जस्ट वेट फॉर द ट्रैफिक टू फ्लो. आप गाड़ी से उतर कर अपनी गाड़ी वहीं छोड़ कर पैदल तो नहीं निकल लोगे ना?
1: Obviously.
0: तो लाइफ में जब किसी तरह का कोई एक प्रॉब्लम आता है, चाहे बड़ा या छोटा, हम इतने इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं? हम ऐसे क्यों करने लगते हैं कि यार ये अभी इसी वक्त सॉर्ट आउट होना चाहिए, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स नॉट गेटिंग ओवर. ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट 24/7 के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो, बट समटाइम्स थिंग्स इन लाइफ टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर इवन, और हम उस दौरान इतने इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज लाइफ भी तो ऐसी है ना, एक रास्ते जैसा, एक सफर जैसा, जहाँ पर कभी आपको ट्रैफिक मिल जाता है ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशंस, या फिर कभी कभी फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक होता है तो आप आराम से इंजॉय करते हुए अपनी राइड को अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई व्हेन लाइफ में सच प्रॉब्लम्स हैपन, हमें उस टाइम पे भी उस हिसाब से डील करना चाहिए. गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, गेटिंग सैड, गेटिंग एंग्री, गेटिंग इरिटेटेड इज वेरी नॉर्मल रिएक्शन, होता है, लेकिन उसी को लेकर फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप नहीं करना चाहिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
1: नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए. कुछ चीज़ों को जैसे आपने कहा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ चीज़ें जल्दी ही सुलझ जाती हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. हमेशा प्लेन सेलिंग नहीं होता है, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं होती, हमेशा दुख ही दुख नहीं होता है. तो कभी कभार यू नो जब हम जैसे आपने कहा ट्रैफिक की आपने बात की, जब आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं कि अपने लिए एंटरटेनमेंट का मोड जो है ये आप ढूंढते हैं.
0: Yep, you either listen to the music or even kabhi-kabhi you call up and you talk to someone, you know, conversations karte hain.
1: So you look for relief. Similarly, yes. Life mein agar kuch problem ho, instead of getting frustrated, losing hope, relief jo hai ye aap dhoonde. Aisi cheez kare jo aapko acha lage, jo aapko pasand ho. इससे you know जो frustration है या फिर जो दुख है, जो कुछ भी जिससे भी आप गुजर रहे हैं, वो आप उससे डील करने में आपको हेल्प मिलेगा.
0: एब्सोल्युटली. तो बस यही कारण कि हमें नहीं पता कि किसको ये सुनने की ज़रूरत है, पर शायद किसी ना किसी को तो है. एंड वी होप कि इट डज मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ राइट नाउ इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग रियली डिफिकल्ट. फिलहाल चलिए आपको ये भी बता दें, पिछले घंटे जो सवाल हमने आपसे किया था उसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर, अ लॉट ऑफ यू हैव सेंट इन योर मैसेजेस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. आज सबसे पहला जवाब हमें रोनल ने दिया था और एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपने दिया था रोनल, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर. क्रिश है, उसके अलावा हमारे पास शबनम का मैसेज आया है और साथ में दवनेश ने अपना आंसर भेजा है, नितिका है और एक और एक रोनल है, इन्होंने अपना आंसर भेजा है. थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शाहरुख खान एज अ टूर गाइड विच फिल्म वॉज दिस, इट वॉज जब हैरी मेट सेजल, 2017 में मेरे ख्याल से फिल्म आई थी, आई एम नॉट मिस्टेकन. और अगर आपने ये नहीं देखी है, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर है ये. शाहरुख खान एंड साथ में अनुष्का शर्मा ने इस फिल्म में एक साथ काम किया था.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले आज 2nd of July के लिए मेष यानी एरिज आपकी खातिर कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फायदा होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, विच विल मेक यू रियली हैप्पी, और बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, किस्मत का पूरा साथ जो है ये भी आज आपको मिलेगा।
3: और इसके अलावा अगर आज देखा जाए तो आज वृषणी टोरस आपके लिए कहा गया है, कीमती चीजों को संभाल कर रखें, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ सकते हैं और अननोन खर्चे जो है ये सामने आएंगे, आपको कर्ज तक लेना पड़ सकता है, बातों पर कंट्रोल आपके लिए आज स्पेशली बहुत जरूरी है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज फायदे के कुछ अच्छे मौके आपको मिलेगा, बिजनेस को बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन कहीं से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं, थकावट होगी, कुछ वीकनेस सभी आज फील करेंगे।
3: कर्क ने कैंसर, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, रिस्क से भरे काम जो है ये आप करने में सक्षम रहेंगे, मतलब सक्सेसफुल रहेंगे, बिकॉज यू फील कि यस आई कैन डू इट, आज वो हिम्मत आप में जरूर आएगी। आज आपके लिए कहा गया है कि लंबे समय से रुका हुआ काम एक रफ्तार से एक गति से पूरी होगी, जिससे कि आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी।
2: सिंह यानी लियो, कोई भी लीगल मैटर था उसका एक अच्छा रिजल्ट आज आपको मिलेगा, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज जो है ये भी आपके हाथ लगेंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका जो है ये भी आपको मिलेगा और बिजनेस बढ़िया चलेगा।
3: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि पैसों के मामले में ऐसे बहुत से मौके आपको मिलेंगे जो आपका फायदा कराएगा। आज आपके लिए बताया गया है कि थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, वो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बस वही हाल आज आपका होगा, बिकॉज देयर समथिंग दैट हैज हैपेंड, जिसकी वजह से यू विल बी वेरी केयरफुल एंड ऐसा करना भी है, बिकॉज आपको किसी तरह से आज चोट या हानि जो है ये पहुंच सकती है। बातों में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे टोन का इस्तेमाल करना जिससे चीजें जो है ये बद से बदतर हो सकती हैं, तो वो आप बंद कर दे, कोशिश करें कि ऐसा ना करें, अदरवाइज नुकसान जो है ये आपका बढ़ेगा।
2: तुला यानी लेब्रा, आज लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, कोलीग्स भी आज ऑफिस में साथ देंगे, मन में कुछ डर सा रहेगा, वैसे घर बाहर खुशियां काफी होंगी आज आपके लिए।
3: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाएंगे, आज कोई बड़ा काम जो है ये इससे फायदा होगा आपका, इनफेक्ट ऐसा बड़ा लाभ होगा जिससे आप काफी अच्छी चीजें जो है ये जीवन में हासिल कर पाएंगे, घर बाहर दोनों ही ओर हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा, एंड यूड गेट टू एक्सपीरियंस सम गुड थिंग्स इन लाइफ।
2: दुनिया यानी सेजिटेरियस, दौड़ धूप करनी होगी, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा होगा, खाना बढ़िया एंजॉय करेंगे, और शायद आपने कोई गलती की थी उसकी भरपाई आज आपको करनी पड़ सकती है।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज लेन देन के मामले में एकदम केयरफुल हो जाए, बातों में आप सर्टन तरीके के जो शब्द हैं या फिर टोन है इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी खराब कर सकता है। ये एक बर्ताव होता है कुछ लोगों का जो सोचते हैं कि ऐसे बात कर रहे हैं या स्टोन में बात कर रहे हैं तो वो सही है, वो अपनी बात को सही साबित करते इस तरीके से, पर कभी कभी वो तरीका थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए यू हैव टू पर्टिकुलरली पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। आप में खास तौर पर व्यर्थ यानी कि अननेसेसरी भागदौड़ हो सकती है आज किसी चीज को लेकर, एंड इट विल रियली वेस्ट अ लॉट ऑफ गुड टाइम फॉर यू।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, इनकम आपका बढ़ेगा, कोई बड़ा काम करने में आज काफी इंटरेस्ट होगा आपको, आज आपके काम को काफी प्रेज किया जाएगा, और अपने आप को चोट से या बीमारी से बचा कर रखें, घर में कुछ चीजों को लेकर शायद सिचुएशन थोड़ा टेंस हो सकता है।
3: और आखिर में आज मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऐसी बहुत सी चीजें आप करेंगे जिसमें आप यू नो यू'ड बी एनलाइटेंड कि अच्छा ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत समझ में आ रहा है, ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, आपकी आंखें खुल जाएंगी बेसिकली सर्टेन चीजों को लेकर। कुछ लोग हैं आपका नुकसान, आपका बुरा चाहते हैं, तो उनसे आपको केयरफुल रहना है, दूर रहना है, अदरवाइज ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और आप अपना जो दिन है एकदम बढ़िया तरीके से बिताएं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स, दैट्स 0800 478686, लिमिटेड स्पेसेस।
1: No, we'll be late.
2: We'll be all right. I'll call the AA.
3: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
4: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
7: But should we call her, sir?
8: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
9: YRF Spy Universe presents
10: Alpha,
9: releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
11: Sore throat that feels like razor blades? Get fast relief of pain and swelling with Difflam Plus Sore Throat Spray. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
12: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
15: Celebrity Alarm. Hit it.
16: 23 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। सेलिब्रिटी अलार्म से पहले आपको ये भी याद दिला दें कि एक अलार्म आपको और लगाना है आज शाम 5 बजे का, क्योंकि आज द ड्राइव शो में खुलासा होगा कि किस चीज़ के बारे में इतने दिनों से हम बातें करते आए हैं,
17: किस चीज़ के जरिए आपको मिलेगा मौका कुछ अनरियल सनसेट एक्सपीरियंस करने का, यमी यमी स्ट्रीट फूड जो है ये इन्जॉय करने का, बहुत ही खूबसूरत साउंड ट्रैक के साथ आप वेव्स का, हंसी मजाक का, लेट नाइट स्टोरीज का मज़ा जो है ये ले सकते हैं, और साथ में एक ऐसा सिचुएशन जहां पर कुछ नए फ्रेंडशिप्स भी बन जाए, हु नोज़। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये क्या है और कैसे आपके हाथ लग सकती है जानने के लिए आज शाम 5 बजे ड्राइव शो विद सैंडी एंड रूज़ पे आपको जरूर सुनना है।
16: फिलहाल आज का सेलिब्रिटी अलार्म, तो आपको तो अब पता चल चुका है कि करना क्या होता है आपको। पहले आवाज जो है ये आप थोड़ा सा सुन लें।
18: In order to be a master, you first have to be a fool. Don't get discouraged. It's so easy to get discouraged and give up.
16: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
17: वाओ, दिस वन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये काफी लंबा चलेगा। आई हैव नो आइडिया ये कौन है, और आई थिंक आज मेरी तरह बहुत से लोग क्लूलेस रहेंगे। तो लेट्स गिव नो क्लूज एंड लीव इट टू द पीपल फॉर देम टू गेस कि ये कौन है।
16: तो एक बार फिर आवाज जो है ये हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुने। इफ यू डिड नॉट गेट इट द फर्स्ट टाइम, मे बी ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर ले कि ये कौन है।
18: In order to be a master, you first have to be a fool. Don't get discouraged. It's so easy to get discouraged and give up.
16: तो आज जवाब अब अपना हमें भेजे, देखे कितने लोग हैं आप में से जो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है।
17: एब्सोल्युटली, आज के सेलिब्रिटी अलार्म में सेलिब्रिटी कौन है इनकी आवाज पहचाननी है, BF लिखना है, फिर उसके बाद आपको इनका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, और 5599 पर हमारे पास आपको सेंड कर देना है।
19: Bollywood's most wanted.
20: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
21: मैं लाऊं अपना A game.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में डाफिल में कल दोपहर एक सस्पेंडेड ड्राइवर को गलत साइड पर गाड़ी भगाते हुए देखने के बाद पुलिस ने उसका पीछा करके उसके घर से भारी मात्रा में ड्रग्स और वेपन्स बरामद किए हैं। पुलिस ने डेंजर देखकर गाड़ी का एक्टिव चेस तो नहीं किया, पर दूर से फॉलो करते हुए जब ड्राइवर के घर पहुंची तो वहां से 500 ग्राम्स कोकेन, कैनविस प्लांट, LSD और स्टेरॉइड्स जो है ये सीज किए गए। रेडियो न्यूजीलैंड की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि ऑकलैंड में बिकने वाले ब्लैक मार्केट सिगरेट्स में रेगुलर स्मोक से ज्यादा खतरनाक केमिकल्स और यूरेनियम पाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के लैब टेस्टिंग के मुताबिक डबल हैप्पीनेस और होंगटशन जैसे इलिसिट यानी गैर कानूनी ब्रांड्स में रेडियो एक्टिव यूरेनियम, लीड और कैडमियम के लेवल्स बहुत हाई हैं, जो लंग्स को बैडली डैमेज कर सकते हैं। ये सस्ते और बिना हेल्थ वार्निंग के बिकने वाले इलीगल टोबैको पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्शन ग्रुप्स ने सख्ती शुरू कर दी है और हाल ही में काफी ज्यादा सिगरेट्स जो है ये सीज भी किए गए हैं। भारत और साथ में इंग्लैंड के बीच जो पहला T20 मैच है ये शुरू हो चुका है। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 7 खिलाड़ी खोकर 189 रन बनाए, लेकिन जवाब में इंग्लैंड टीम खराब मौसम की वजह से बैटिंग नहीं कर पाई है। अगला मैच दोनों देशों के बीच इसी रविवार की सुबह 1:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा ऑल ब्लैक्स टीम खिलाड़ी सेमीपेनी फिनाउ और स्टीफन पेरोफेटा अगले साल जापान में रग्बी खेलेंगे। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं योकोहामा कैनन ईगल्स के लिए खेलने वाले हैं, जिसे भूतपूर्व ब्लूज टीम कोच लियोन मैकडोनल्ड कोच कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 32 का आज पहला मैच इंग्लैंड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की जीत 2-1 से हुई। इस मैच में कांगो की जीत हो रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में 2 गोल्स बनाकर इंग्लैंड ने इस मैच को अपने नाम किया और राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको के खिलाफ अपनी जगह बनाई। मेक्सिको के खिलाफ उनका मैच अगले सोमवार को दिन में 12 बजे से खेला जाएगा। राउंड ऑफ 32 के बाकी मैचेस में अभी से तकरीबन आधे घंटे में बेल्जियम सेनेगल से खेलेगा और दिन में 12 बजे USA की भिड़ंत बोस्निया हर्जेगोविना से होगी। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Book your ski G trip today.
4: Finding cloudy today, a cool start, high of 16 degrees. Southern motorway, 40 minutes Manukau to the city at the moment. Slow the way from Papakura, just a few heavy spots. Mostly fine on the southwestern, little so northbound. Northwestern, 30 minutes in from Massey. Patchy Massey to the causeway, then slow the way from there, heavy at St. Luke's. Northern, 26 in from Constellation Drive. Slow the way from there to the bridge and back at Silverdale.
3: To book your next ski G trip to Vancouver or Japan, go to fijiairways.com.
5: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: Get in the loop with ANZ to earn cashback. So when you buy food,
7: noodles,
6: money loops back.
7: Noodles.
6: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
10: In Dalrymple, no.
7: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
2: The beat of Bollywood
14: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
17: Happy birthday to you.
1: A very, very happy birthday. 2nd of July, aaj sabse pehle शशि प्रकाश मिश्रा जी फ्लैटबुश में अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही हैं खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं आपके लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो
18: Happy birthday, many many happy returns of the day to you. आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर हमारी पूरी हम टीम की ओर से आपको हम वेरी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं वैसे आज 15 बर्थडे अपना मना रही हैं सहाना सिंह लव एंड बेस्ट विशेज आपको मिल रहा है आपकी मॉम है शिबाना और डैड है नीलेश एंड वन एंड ओनली भाई हैं आपके सोहेल वैसे आपको बहुत सारा प्यार एंड बेस्ट विशेज आपके सभी परिवार वालों की ओर से भी जो फिजी में हैं और यहाँ न्यूजीलैंड में भी है एंड नॉट फॉरगेटिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं एंड ऑरोरे कॉलेज इन्होंने भी आपको याद किया है लव एंड बेस्ट विशेज खासतौर पर आपके डैड नीलेश की ओर से हैप्पी बर्थडे सहाना मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू
1: विनेश चंद हैं मनुरेव में आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पत्नी शालिनी हैं बेटी विंशा मम एंड डैड हैं आपके मिस्टर मिसेस सुभाष चंद भैया हैं विमलेश विशाल विशांत और साथ में भाभी हैं आपकी सनीता प्रेमिका और साथ में सासू माँ हैं आपकी इंद्रा पीजी से साली हैं नलिनी साड़ू एल्विन हैं लव फ्रॉम श्रेया शानवी व्योम और वायूम सभी ने आज आपको याद किया है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ आपको दी हैं
18: तो हमारी ओर से भी आज 2nd of July को जितने भी लोग अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या अगर आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो हमारी ओर से इस दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और याद रहे कि आज ये स्पेशल दिन आप सभी के नाम हमारी ओर से ऑन हम जरूर कर रहे हैं
2: मॉर्निंग मैडनेस
1: मॉर्निंग मैडनेस जबकि आपके लिए जारी है अभी 20 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और आज तो शायद सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज़ सुनने के बाद ही मेजोरिटी लोगों ने गिव अप कर दिया
18: क्यों
1: क्योंकि आई कैन क्लियरली सी 1, 2, 3, 4, 5
18: मैसेजेस ओनली
1: हाँ 5 लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है
18: ओके एनी करेक्ट आंसर्स
1: अभी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या कोई करेक्ट आंसर आया है या नहीं आया है
18: ओके सो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टाइम और देते हैं और अगर इस बार किसी ने सही जवाब नहीं भेजा तो विल मूव ऑन एंड विल गेट अ न्यू वॉइस आई मीन विल कंटिन्यू विद द सेम वॉइस टुमारो पर अगर किसी ने भी पहचान लिया तो एक नई आवाज कल आपके लिए जरूर लेकर आएंगे तो पहले तो ये आवाज आप अच्छे से सुनिए
19: इन ऑर्डर टू बी अ मास्टर यू फर्स्ट हैव टू बी अ फूल डोंट गेट डिस्करेज्ड इट्स सो इजी टू गेट डिस्करेज्ड एंड गिव अप
1: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेजें आपको कुछ आइडिया हुआ कि
18: नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं आई वोंट लाई आई विल टेल यू ऑनेस्ट ट्रुथ मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है जरा सा भी आइडिया नहीं है सो इवन मेरे लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा टू फिगर आउट कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है या नहीं
1: इतना मैं आपको बता सकता हूँ ये जो शख्स हैं अपने लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं
18: ओह कॉन्ट्रोवर्शियल हैं ये काफी।
1: हाँ।
18: okay, तो शायद एक नाम जो भी हम टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं ही हैज आल्सो बीन पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, हो सकता है वो हो या हो सकता है वो नहीं भी हो, बट हूएवर यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वॉइस आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में, आप सबसे पहले BF लिखे, उनका नाम लिखे और 5599 पर अपने आंसर्स हमारे पास आप भेज दीजिए। आज थर्सडे है, सुरा शावा में बातें करेंगे गुरु कंडोला के साथ अगले घंटे, वेरी बिजी आवा, लेकिन अगले घंटे आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी करण औजला और इनका पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है, या तो इसके लिए एक डबल पास या फिर द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुपर सिटी ऑकलैंड में परफॉर्म करने के लिए, इस शो के लिए भी डबल पासेस है हमारे पास देने को, तो ये भी आप जीत सकते हैं। जानने के लिए क्या जीतेंगे इंतजार करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट आज का जो क्या बकते हो ये आपके लिए 9 बजे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग खबर और एक बहुत ही ट्रेंडिंग वेबसाइट, इसके बारे में बातें करेंगे ट्रेंड पेट्रोल में।
1: फिलहाल 6 मिनट्स के बाद हम देखेंगे आप में से कितने लोगों ने कम से कम अटेम्प्ट किया है आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए।

0: 9 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और इंडियन ओरिजिन के एक शख्स हैं जो कई साल पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे. उस समय पर ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, और वहाँ पर अपने उनके शुरुआती दौर में उनको ये कहा गया था कि अमेरिका में उनको कभी भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी उनके इंडियन एक्सेंट की वजह से.
1: ओके.
0: और जब ये गए तो उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनको ऐसे दिनों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन अभी वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं.
1: कैन यू नेम द कंपनी?
0: ये कंपनी जो है इज acquisition.com. acquisition.com की ये CEO है. और एक वीडियो जो है ये आया है acquisition.com का, जहां पर कंपनी के फाउंडर एलेक्स होमोजी जो है ये एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स के साथ बातचीत कर रहे थे. और जहां उस समय पर ये जो इंडियन शख्स हैं, शरण श्रीवास्तव इनका नाम है, इनको कहा गया कि यू रिकॉल योर अर्ली डेज इन द US. और उन्होंने बताया कि जब वो आए थे, यू वर्क्ड एज अ जेनिटर जब ही अमेरिका पहुंचे नीली 20 इयर्स अगो. और उन्होंने कहा कि कई चीज़ों को सुन सुनकर उन्होंने अपने इंग्लिश एक्सेंट को इम्प्रूव किया. और उस समय पर लोग उनको कहते थे यू विल नेवर बी एबल टू गेट अ जॉब इन US क्योंकि यू साउंड टू इंडियन. एंड आज वो acquisition.com के CEO बन चुके हैं.
1: सो इमेजिन समथिंग जो इनके लिए दूसरों ने प्रिडिक्ट किया कि ये दिस इज व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम विद यू, उन्होंने वो चीज़ खुद के लिए इतना टर्न अराउंड कर दिया कि आज उन्होंने हर एक शख्स को रॉन्ग प्रूव किया जिन्होंने इनकी कैपेबिलिटी पर डाउट किया था. सो दैट इज हाउ यू सपोज टू बी. इफ समवन सेज यू कैन डू इट, यू बेटर डू इट एंड शो इट टू देम. नॉट जस्ट टू शो इट टू देम, लेकिन खुद के लिए, बिकॉज यू रियली वांट टू डू दैट.
0: फिलहाल आज वी रियली वांटेड कि आप आइडेंटिफाई करें हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में सेलिब्रिटी कौन थे. एंड कुछ लोगों ने सही, कुछ लोगों ने गलत जवाब जो है ये दिया. आज के हमारे सेलिब्रिटी वाज माइक टायसन.
1: इंटरेस्टिंग. फ्रांसिना ने कहा कि इट माइट बी डोनाल्ड ट्रंप, नॉट 100% श्योर दो. उनकी तो बात करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है ना.
0: एग्जैक्टली. सो थैंक यू सो मच आप सभी की कोशिशों के लिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 4.5 degrees hai temperature Auckland mein bhi aaj ka high 15 overnight kam se kam 5 degrees a fine day sunset sham 5:17 par aaj hoga.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज का ट्रेंड पेट्रोल जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जैसे कि हमने कहा था कि एक ऐसा वेबसाइट जो काफी ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में आपसे बातें करेंगे. When I heard this news, I actually thought it was a joke. But I did my research और पता चला है कि ये कोई जोक नहीं है, ये सच में हकीकत में है. So एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वेबसाइट आई वुड से, जो आपको एक ऐसी चीज करने दे जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपका जो डोपामिन लेवल है ये बढ़ जाए और साथ में आपको खुशी मिले लेकिन आपके पैसे ना खर्च हो.
1: अच्छा,
3: ये एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है dopamine shopping.com. dopamine shopping.com जो है, इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर

0: पॉपुलैरिटी मिली है मेनली अमंग्स द जेन ज़ीज़, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ डिजिटल रिटेल थेरेपी जो है ये बताया जा रहा है. साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्टडी में इंडिकेट हुआ कि ह्यूमन में या ह्यूमंस में जो डोपामिन लेवल होता है ये बढ़ता है ड्यूरिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड, जैसे ब्राउजिंग, सिलेक्टिंग या ऑर्डरिंग ऑनलाइन, रादर देन द फिजिकल एक्विजिशन ऑफ द आइटम. वो आपके हाथ में जब आता है शायद आपको उतनी खुशी नहीं मिलती, जबकि आपको उतनी खुशी आपका जो डोपामिन लेवल उतना बढ़ता है जब आप कोई एक पर्टिकुलर आइटम ब्राउज कर रहे हो, उसे सिलेक्ट कर रहे हो और उसके लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. सो बाय मिमिकिंग द एंटायर चेकआउट रिचुअल, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसका नाम dopamineshopping.com बताया गया है, आपको ऑर्डर्स प्लेस करने देने का मौका, या आपको ऑर्डर्स प्लेस करने देता है basically without anything जो आपको spend करना हो. Fake orders, as in आप order place कर रहे हो, आप पूरा का पूरा process follow कर रहे हो पर आपके पैसे नहीं जा रहे हैं because you're not getting that thing. It's like an account you've created just to place orders.
1: हाँ, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा होगा ना,
0: कुछ product नहीं मिलेगा. You're just placing orders, you're just going through that process. Because your process आपके दिमाग में आपका dopamine level जो है ये बढ़ा देता है. So as said, by mimicking the entire checkout ritual, ये platform आपके brain को एक instant burst of gratification देता है, ताकि आपका जो financial hangover है या आपका जो financial remorse होता है जो बाद में आप face करते हैं, अरे इतने पैसे खर्च कर दिए, ये क्यों लिया, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी, वो आपको करना भी ना पड़े और आपको वो पर्टिकुलर जो इंस्टेंट जॉय है ये आपके ब्रेन को भी मिल जाए. दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग, एंड व्हाई इज इट ट्रेंडिंग नाउ, क्योंकि ड्रिवन बाय द हाई लिविंग कॉस्ट्स, डिमांडिंग वोक कल्चर एंड इंटेंस इकोनॉमिक प्रेशर के चलते बहुत से ऐसे लोग हैं, यंग लोग हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फ्री लो स्टेक बिहेवियरल आउटलेट, जहाँ पर आप कमर्शियल स्टोर्स में कैसे शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन जो है कैसे आप शॉपिंग करते हैं और कैसे वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस करते हुए डेली अपने आप को स्ट्रेस फ्री करते हैं. ये दरअसल ना केवल चीज़ों के लिए, आइटम्स के लिए, लेकिन फूड एप डिलीवरी के मामले में भी नोट किया गया है. और जो मिडनाइट क्रेविंग होती है, जहाँ पर आपका दिल करता है कि ऐसा एक कुछ खा ले, एक ऐसा कुछ कर ले, जिससे आपको बेसिकली यू नो वो डोपामिन लेवल आपका बढ़ जाता है, वो ओवर सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, वो खुशी मिलती है, तो यही ये वेबसाइट आपके लिए कर रहा है. बहुत से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर लाइकिंग इट, लेकिन कुछ क्रिटिसिजम्स भी इसको मिल रहे हैं. वाइल मेनी आर प्रेजिंग दीज पर्टिकुलर वेबसाइट्स इसके क्लेवर बजटिंग हैक के लिए, तो इम्पल्स बाइंग जिसे कहते हैं ना, उसे कॉम्बैट करने के लिए. साइबर सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इसकी वजह से डाटा प्राइवेसी फ्लैग्स जो है कि थोड़े से बढ़ जाते हैं, एंड देयर इज़ बेसिकली अ सिचुएशन रिगार्डिंग दिस कि ये ऑपरेट होता है ऑन वायरल प्लेटफॉर्म्स, वेदर दे आर बीइंग यूटिलाइज, ताकि आपका डाटा जो है ये इस्तेमाल किया जाए टू हार्वेस्ट बेसिकली आपके जो ब्राउजिंग सेशंस हैं इनको ट्रैक करने के लिए. साइकोलॉजिस्ट ने नोट किया है दैट व्हाइल दीस प्लेटफॉर्म्स प्रोटेक्ट्स अ यूजर्स वॉलेट, they do not cure the underlying behavioral loops जो shopping addiction के नाम में भी कई लोगों में पाया जाता है.
1: So let's see कितने लोगों के लिए ये positively काम करता है और कितने लोगों के लिए नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल थोड़ी देर बाद What's Your Take में आज का हमारा topic भी हम लेकर आएंगे.
0: बिल्कुल, but आपको अगर मौका मिले क्या आप ऐसे website का इस्तेमाल करेंगे?
1: नहीं, बिकॉज माई ब्रेन विल टेल मी कि भाई ये करने का कोई फायदा नहीं, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम,
0: सामान नहीं मिलेगा.
1: हाँ, कुछ मिलेगा नहीं, हालांकि यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग बट यू नॉट गेटिंग एनीथिंग एट ऑल.
0: ओके, नो वरीज. तो लेट्स सी, क्या आप, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि यहाँ न्यूजीलैंड में ऐसा कोई एक लीगल वेबसाइट हो, क्या आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर यू नॉट बाइंग एनीथिंग, यू नॉट पेइंग एनीथिंग, यू जस्ट फेक ऑर्डर कर रहे हैं आप आइटम्स को, जस्ट सो दैट आपके दिमाग में वो खुशी, वो डोपामिन लेवल जो है ये बढ़े? यस या नो लिखकर अपने रीजन के साथ आप हमें 5599 पर मैसेज करते हुए जरूर बता सकते हैं. बट स्टे विद अस, क्योंकि इस घंटे आपके लिए थोड़ी देर बाद हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा व्हाट्स योर टेक का टॉपिक.

0: Future.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट। Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
5: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant!
4: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
6: Get delicious three-day sale deals at New World North Island. Get whole beef scotch fillet, $39.99 per kilo. Or yummy rose apples, $2.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: आज का व्हाट्स योर टेक आपके लिए जो है ये हम लेकर आए हैं, जिसमें आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बट रिमाइंडिंग यू ऑल, टुडे इज थर्सडे, वेरी बिजी, तो आपके लिए डेफिनेटली हम जल्दी से ये टॉपिक लेकर आएंगे ताकि आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सके। बट बिफोर द टॉपिक, उर्मिला जी का मैसेज आया, उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, आई टोटली अग्री, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, इन्होंने कहा है।
12: Exactly.
11: बातें कर रहे थे ना अबाउट द वेबसाइट जहाँ पर आप फेक शॉपिंग कर सकते हैं। राइट, तो अभी अगर चाहे तो व्यूज जरूर शेयर कर सकते हैं ऑन दैट। बट राइट नाउ आपके लिए हम लेकर आए हैं एक और टॉपिक जिस पर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज समथिंग जिसके बारे में बातें जो है ये हो सकती है, आई डोंट नो टू व्हाट लेवल और कितना ओपन होकर, पर एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्या गिफ्ट्स जो आपको मिलते हैं, जो शायद I'm talking about like brand new gifts that you've never opened, that you've never used, पर वो आपके किसी काम की नहीं, because you don't use it particularly, you are not really into those things, जो शायद आपको as a gift मिला हो, या फिर you don't know if anyone जो उसका इस्तेमाल करता हो, and it's just lying there. ऐसे gifts क्या इन्हें recycle करना सही है या गलत है? और जनरली गिफ्ट्स को रिसाइकल करना सही है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? डू यू डू दैट?
12: रिसाइकल एज इन यू पास इट ऑन टू समवन एल्स?
11: पास इट ऑन टू समवन एल्स, या।
12: ओके, तो गिफ्ट रिसाइकलिंग यानी जो आपको मिला है वो किसी और को देना, क्या ये सही है या नहीं? दैट्स
11: यस लाइक अगर आपको जो मिला हो एंड आप क्या ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं डू यू थिंक इट्स नाइस और इट्स राइट टू एक्सचेंज इट और बेसिकली रिसाइकल इट गिव इट टू समवन एल्स अगर आपको गिफ्ट देने का मौका है आपका किसी को तो आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में
12: 800-00-4866 ये नंबर है हमारा लाइंस भी हम आपके लिए खोल चुके हैं और जैसे हमने पहले बताया आज थर्सडे है टाइम बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास इसीलिए जल्दी से आपको कॉल करना होगा जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं और जो शायद आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है या आपको उतना पसंद नहीं आता है उसका क्या करते हैं डू यू रिसाइकल इट या फिर डू यू कीप इट क्या क्या करना आप ज्यादा पसंद करेंगे अभी रिसाइकलिंग
11: व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट थिंग टू डू लाइक इज इट ओके टू रिसाइकल सच गिफ्ट्स यू नो क्योंकि आई एम सेइंग लाइक कुछ लोग इसे एथिकली रॉन्ग भी मानते हैं ना कि कोई आपके लिए खरीद कर लेकर आया है इसने उसमें थॉट्स दिए हैं टाइम दिया है पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड इट्स नॉट इट डजंट फील राइट टू बेसिकली लाइक गिव इट टू समवन एल्स बट कुछ लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं अगर वो आपकी ज़रूरत का नहीं है वहाँ पर पड़ा हुआ है यू नॉट यूजिंग इट यू नॉट ओपनिंग इट सो बेटर जस्ट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट यू गिव इट टू समवन जिनके शायद काम आ जाए
12: हाँ वो भी सही है फिर दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ता है कि ये गिफ्ट आपको किसने दिया है और आपको क्या लगता है कि उसका इमोशनल वैल्यू क्या होगा उस पर्सन के लिए
11: Exactly, yeah.
12: जो जो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो लाइंस खुले हुए हैं और देखें कि क्या आपके पास कोई राय है इसके बारे में डू यू हैव एक्चुअली अ टेक ऑन दिस गिफ्ट रिसाइकलिंग क्या आप इसके फेवर में हैं या नहीं तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इस पर अपनी राय जो है ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग विजय भाई और पूजा जी कैसे हो आप
11: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ आप कैसे हो
0: जी बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो मेरे को
10: का सुना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ रिलेटेड तो मैंने कहा मैं कॉल सबसे पहले मैं ही कॉल करके बता देता हूँ मैं ना इंडिया में जब था तो लाइक जो अभी तो बच्चों को क्रेज नहीं है पर हमारे इंडिया में जब छोटे थे तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत होता था तो मेरा 11 और 12 ईयर का होऊंगा मैं तो मेरा बर्थडे था तो जैसे बच्चों को होता ही है कि अपने फ्रेंड को बुलाना है मेन मकसद तो ये होता है कि कोई गिफ्ट देगा हमें गिफ्ट मिलेगा तो गिफ्ट के लिए हम ऐसा करते थे बी ऑनेस्ट तो हमारे मोहल्ले में एक शॉप खुली हुई थी वहां पर डेकोरेशन का सामान मिलता था तो वो ताजमहल का वहां उस टाइम ताजमहल के शोपीस वगैरह बहुत चलते थे मैंने 7 फ्रेंड को बुलाया और 7 ने मेरे को एक ही गिफ्ट दिया तो फिर मैंने सना जब मैंने खोला उसको देखा कि ये तो साथ ही है तो मैं इसका क्या करूंगा मेरे को तो चाहिए नहीं तो वही सातों जो फ्रेंड को बुलाया था उनके बर्थडे पे मैंने ऐसे रिसाइकलिंग उनको करके दिया तो ये वाला एक्सपीरियंस था मेरे मैंने अपने बच्चों को भी ये बताया था लास्ट इनका बर्थडे था हमने यहाँ मनाया तो उनको भी 2 गिफ्ट सिमिलर से मिले थे तो मैंने कहा ये इट्स ओके ऐसा कुछ नहीं होता हम तुम्हें तो 2 ही मिले हैं मेरे को तो 7 मिले हैं तो ऐसा फनी सा उनको क्रिएट करके दिया तो ये अच्छा है अभी ऑब्वियसली अब अगर एक जैसे गिफ्ट होंगे तो आपको नहीं चाहिए होगा तो फिर आप रिसाइकल करोगे ना
11: तो Recycle gifts.
10: Yes.
11: Okay. All good. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing that.
10: Thank you.
12: आपके पास भी अपनी राय जो है ये आप शेयर कर सकते हैं. Good morning, Parvinder.
13: Good morning.
12: कैसी हैं आप?
13: कैसे आप लोग?
11: हम तो एकदम बढ़िया हैं. हम तो आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा. अब तो बस 2 दिन ही बाकी है ना?
13: आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा
11: ऐसे ही निकल जाएगा दैट्स गुड परविंदर बट चलिए गेटिंग बैक टू द टॉपिक टुडे आपका क्या कहना है आज के टॉपिक के बारे में इज इट गुड और बैड टू रिसाइकल गिफ्ट्स
13: जो तो रिसाइकल कर रहा है उसके लिए तो गुड है बट जिसको रिसाइकल मिल रहा है उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि बाय चांस अगर सेम गिफ्ट सेम बंदे के पास चला गया क्योंकि एक एग्जांपल है दिवाली के टाइम सोन पापड़ी इतनी ज्यादा रिसाइकल होती है इंडिया में और वो मुड़ के एक ही घर में आ जाती है जहाँ से निकली थी
11: right.
13: तो एक दिन हमने ऐसे कुछ दिया था वो पूजा के बाद दिवाली के प्लेट में ना मिठाइयाँ वगैरह आजकल तो पूरा पूरा डब्बा देते हैं ना, बट पहले थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालते थे, वो जो होता नहीं है मुरमुरा बोलते हैं हम तो, व्हाइट कलर का जो पफ राइस होते हैं ना,
11: हाँ पफ राइस या
13: मतलब पुराने टाइम में दिवाली का जो भी शगुन का मिठाई होता था ना जो ऑथेंटिक होता था, जैसे मुरमुरा हो गया और एक ना शुगर के कैंडीज होते थे अलग अलग शेप्स के, कैंडी नहीं कह सकते उसको, मतलब हाथी बना होता था और ऐसे कुछ कुछ बना होता था व्हाइट कलर का होता था, तो वो भी होता ही होता था दिवाली की उसमें ना, तो मतलब हमारे को एक दिन जो हमने दिया था ना वो प्रॉपर शेप वही शेप वापस आ गया, देने वाला को याद नहीं था यही शेप इस घर से आया था तो मेरी मम्मी कहती एटलीस्ट देख तले से कि किसके घर से क्या आया, वही घुमा घुमा के दे दिया, हमारी चीज हमारे घर पे आ गई।
12: इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए। वो भी एक खतरा होता है ना कि जिसने जो दिया है वो
11: उसके पास ही ना पहुंच जाए,
12: वापस ही पहुंच जाए। अभी उतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम और कॉल्स ले सकें, तो अब आप 5599 पर टेक्स्ट हमें जरूर कर सकते हैं
11: और बता सकते हैं व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, इज इट ओके, इज इट गुड और इज इट बैड टू रिसाइकल गिफ्ट्स, किसी और का दिया हुआ गिफ्ट किसी और को देना, क्या ये सही है या गलत आपकी राय में?
8: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
15: मैं लाऊं अपना A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दर्शन रावल को आप सुन रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 32 का मैच अभी खेला जा रहा है और ये मैच सेनेगल और बेल्जियम के बीच हो रहा है। आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अभी सेनेगल की जीत बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हो रही है।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: और इसके अलावा चलिए एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है, if you don't like the gifts, don't stress, just re-gift it. One person's thanks is another person's oh my god I love this. ये नितिका ने कहा है कि कोई एक चीज़ जो किसी को तो शायद उतना पसंद नहीं आए, वो थोड़ा डाउटफुल हो, लेकिन दूसरे के लिए वही चीज़ शायद खूबसूरत हो, उनको पसंद आ जाए, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट री गिफ्ट, ये इन्होंने कहा है।
0: सो नितिका, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। समय देखिए, अभी 26 मिनट रह गए हैं 9 बजने में।
3: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Chup ho jao papi ho, chup ho jao.
5: Accurate traffic.
6: New look, Mitre 10 Mega Botany.
7: A fine day with a bit of cloud, cool, a high of 16 degrees. Southern Motorway, slowest off a fast bunch at the moment, 40 minutes Manukau to town. Not bad to Papatoetoe, slow from there. Heavy Mount Wellington to Ellerslie. Southwestern, bit slow northbound right up to the airport link. Northwestern, 34 in from Massey, fine to the causeway, heavy on and off there to the city. Northern, slow from Constellation, 27 there to the city.
6: Visit Mitre 10 Mega Botany. Family fun, sausage sizzle and in-store specials this weekend.
8: Professional Financials has आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
10: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
11: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
12: बट शुड वी कॉल हर सर?
13: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
10: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
14: YRF Spy Universe presents
15: Alpha,
14: releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films, rating TPC.
10: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
16: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
17: Better.
16: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of $25,000. Not bad, eh?
17: Better.
16: Bank Better New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
18: And if you're just joining us after the break, we're talking about...
19: Holy... $10 deals on Uber Eats?
20: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
21: Winter aa gaya hai and Mitre 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store aaiye ya shop online today.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
21: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoi and Hamilton.
0: अभी 23 मिनट रह गए हैं 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा। और आपको हमने पहले भी बताया है कि ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट। कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव रहेंगे 18th ऑफ जुलाई को विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में, जिसके लिए टिकट्स बहुत बहुत बहुत लिमिटेड बाकी रह गए हैं। बुक माई इवेंट डॉट कॉ डॉट एन जेड विजिट करते हुए अपने टिकट्स आप जल्द से जल्द ले लें। और पासिस जीतने के मौके जो हैं ये भी हम आपको दे रहे हैं ऑन हम। अभी आज की अपॉर्चुनिटी और एक डबल पास जीतने का मौका ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम आपको दे रहे हैं। आज सवाल नहीं पूछेंगे, विल कीप इट वेरी सिंपल क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। All you've got to do is comedy, space, apna naam, aur kaha aap rehte hain. Three things that you have to send across. So that aapko sochna nahi pade, jawab dhoondna nahi pade, aur aaram se jaakar ek bahut hi jo yaadgar raat hai, Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ke saath aap enjoy kar sake 18th of July ko. So comedy, apna naam aur kahan aap rehte hain, teen cheeze likhkar 5599 par hamare paas text kare. Since koi question nahi hai to aapke paas around 5 minutes ka time hi hoga apna jo message hai ye hamare paas bhejne ke liye, and to go into the draw jahan par the great comedy night ke liye double pass jo hai ye aap jeet sakte hain.
2: तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और फटाफट अपने मैसेजेस हमारे पास सेंड कर दीजिए. और याद रहे कि अगर आप बल्क में टिकट्स से एज इन ग्रुप बाइंग जो है ये कर रहे हैं टिकट्स की, तो थिंग्स हैव बीन मेड इजीयर फॉर यू. आफ्टर पे ऑप्शन के जरिए यू कैन डू दैट बुक माई इवेंट डॉट को रिटर्न्स विजिट करते हुए, और आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं फील होगा. प्लस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ विटनेसिंग दीज अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव इन सुपर सिटी ऑकलैंड, इस भगदड़ मची जिंदगी में, इस टेंशन भरी जिंदगी में हंसने के लिए आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं.
0: तो आज सबसे एक्टिव कृणाल, सलमा, नीलेश, पूजा पापकुरा से, संप्रीति हैं, मीनल पुकेकोही से, साथ में शमीम हैं वे माउथ में, और सिमरन हैं तकनीनी में, ये रहे हैं. आपने जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस जो है ये भेज दिए. सो रिमेंबर, कॉमेडी, अपना नाम और कहाँ आप रहते हैं, ये तीन चीज़ें लिखें और 5599 पर विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप हमारे पास भेजें.

0: Radio. Streaming on Rover.
1: Accurate traffic.
2: Go dry this July.
3: A bit of cloud mainly fine today with a high of 16 degrees. Most motorways looking fairly good. Northwestern fine to the causeway. Some heavy patches on and off from there to the city. 28 minutes in from Massey. Southern 40 Manukau to town. Fine to Papatoetoe but slow from there. Heavy Mount Wellington to Ellerslie. Southwestern slow from the southern up to the airport link. Northern 24 in from Constellation. Slow patches there to the city.
2: It's not too late to go dry for cancer support. Search Dry July to register.
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
8: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoetoe and Hamilton. Throwback.
11: अभी तो 13 मिनट ही रह गए हैं अब 7 बजने या 9 बजने में 13 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे चाइना में एक जो नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसको लेकर कई लोग जो हैं ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और ये जो लोग हैं उन्होंने ओपनली जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना फ्रस्ट्रेशन जो है ये शेयर किया है और ये फ्रस्ट्रेशन है कि जो लोग हैं जिनके पास खुद के पेट्स नहीं हैं उनके उनके लिए ये ऑफर है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है ये क्रिएट की गई है और इस अपॉर्चुनिटी के तहत वो एक अलग एक्सपीरियंस जो है ये ले सकते हैं सो हर कोई किसी न किसी तरह से किसी न किसी पेट को बहुत पसंद करता है नाउ जिन लोगों के पास खुद का पेट नहीं है वो घंटे के हिसाब से चाइना में एक कंपनी से पेट्स जो है या फिर या अन्य अन्य लोगों से पेट्स जो है
12: ये रेंट पे ले सकते हैं
11: हाँ
12: There is, I don't know how what kind of idea would that be actually, but क्योंकि कभी कभी अटैचमेंट भी हो जाता है and then you just can't let go ना but आई थिंक चाइना में या फिर किसी तो एक ऐसे एशियन कंट्री में ये बात भी है दैट देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन कि आप कोई एक रिश्तेदार भी इनफेक्ट रेंट पर कर सकते हैं मतलब वो आएंगे इन दैट पर्सन विल बिहेव लाइक दैट पर्टिकुलर रिलेटिव फॉर यू एंड उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं यू आर गेटिंग दैट वे ऑफ इमोटिंग बेसिकली
11: अब ये जो इनिशिएटिव है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है बेजिंग शंघाई शेंजेन इन सभी जगहों पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है ऑल द डॉग ओनर्स हैव टू डू इज रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म और अपने डॉग का इंफॉर्मेशन और फोटोज़ जो है ये अपलोड करना है आपको वाइल दोज लुकिंग फॉर टू वॉक अ डॉग मे बी एक घंटे के लिए दो घंटों के लिए आप अपने डिज़ायर्ड डॉग को यू नो सेलेक्ट कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो वॉक पर जाने के लिए चाइनीज न्यूज सोर्सेज के मुताबिक फीस जो है इट रेंजेस फ्रॉम $1.50 to $9. और कुछ रूल्स जो हैं ये हैं जिस का यूजर्स को पालन करना पड़ेगा. द पिकअप एंड रिटर्न ऑफ द डॉग आर अग्रीड अपॉन डायरेक्टली बिटवीन द ओनर एंड द यूजर. वॉक्स जो हैं ये लिमिटेड रहते हैं टू एरियाज जिससे जो डॉग है ये फेमिलियर हो. और प्लेटफॉर्म जो है रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है टू द डॉग ओनर्स. अगर एनिमल जो है या डॉग जो है ये किसी भी वजह से थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगे जो रेंटर है उसको इमिडिएटली ओनर को नोटिफाई करना होता है. और दोनों पार्टीज को के लिए ज़रूरी है दैट अंडरगो रियल नेम वेरिफिकेशन. और जो प्लेटफॉर्म है वेंगफू इट टेक्स आउट पेट इंश्योरेंस फॉर द एनिमल्स ऑन द प्लेटफॉर्म इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग.
12: वेरी इंटरेस्टिंग है. इतना इम्पोर्टेंट गंभीर इन्फॉर्मेशन है ये कि आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ही चेंज हो गया. बट नेवरदलेस आपने पेट डॉग्स के बारे में रेंटिंग देम आउट ये पूरा कॉन्सेप्ट जो ये समझाया. बट आई गॉट अ लिस्ट ऑफ सर्टेन सेलिब्रिटीज जिनके पास यू नो पेट डॉग्स है और उनके पेट डॉग्स का नाम क्या है. लाइक सम वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स आई थिंक आई हैव कम अक्रॉस. जैसे फॉर एग्जाम्पल शाइलो ये श्रद्धा कपूर के जो पेट डॉग है इनका नाम है. और इनका एक स्पेशल बॉन्ड है इनके डॉग शाइलो के साथ और इनको इन्होंने ये नाम जो है ये दिया है. बेसिकली आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरव्यू में आपने इनको अपने इस पेट डॉग के बारे में बातें करते डेफिनेटली सुना होगा. एंड उसके साथ साथ आई रियली लव्ड बडी ये नाम है दरअसल अनुष्का शर्मा के पेट डॉग का. और सिद्धार्थ मल्होत्रा इनके पेट डॉग का नाम एनी गेसेस इफ यू इफ आई आस्क यू कि क्या हो सकता है.
11: नहीं आई हैव नो आइडिया. आई थिंक दो है इनके पास.
12: एक पेट डॉग है जिसका नाम है ऑस्कर. अनफॉर्चुनेटली आई मीन है नहीं थे बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उनके पेट डॉग ऑस्कर की मृत्यु जो ये हो गई थी बिफोर ही गॉट मैरिड टू कियारा आडवाणी. एंड कियारा आडवाणी ने उनके शादी में एक ट्रिब्यूट भी पे किया था ऑस्कर को. उन्होंने कलीरे जो पहने थे ना उसमें जो कलीरों में जो लटकने वाला जो पार्ट होता है डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड बेसिकली उसमें उन्होंने ऑस्कर का नाम जो ये लिखवाया था. एंड इट दैट पर्टिकुलर थिंग वेंट वायरल बाय द वे. बट
11: थोड़ा रुक जाओ ये कलीरे क्या होता है.
12: अरे
11: इयररिंग्स.
12: नो इट्स लाइक अ ज्वेलरी जो ब्राइड्स अपने हाथों में पहनती है. और आई थिंक एक रिचुअल होता है उनको पहनाया जाता है. फॉर व्हाट रीजन दैट आई डोंट नो बिकॉज मैं जिस कल्चर को फॉलो करती हूँ वहाँ पे ऐसा मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए. बट आई हैव सीन इट अ लॉट इन मूवीज बेसिकली दैट्स हाउ आई नो. एंड आई थिंक कुछ तो एक रिचुअल होता है कि वो ऐसे इट्स लाइक बेंगल जैसा नहीं होता. इट्स लाइक बड़ा सा ऐसे लटकन जैसा होता है वो जो हाथों में पहना जाता है. और फिर उसको वो शेक करके ऐसे कोशिश करते कि वो
11: तोड़े.
12: नहीं नहीं किसी के सिर के ऊपर ऐसे जाकर वो शेक करते हैं उसे अपने हाथों को ऐसे. एंड व्हेन एक छोटा सा टुकड़ा कलीरों का ये ब्रेक होता है और अगर किसी के सिर पे गिरता है तो उसको बिलीव किया जाता है कि अगली शादी उनकी होगी. इट्स लाइक अ रिचुअल दैट ब्राइड्स डू. तो अगर किसी को ज्यादा अच्छे तरह से डीप मीनिंग पता हो इसका कॉन्सेप्ट का तो आप समझा दीजिएगा इनको. पर फिलहाल गेटिंग बैक टू द स्टोरी. सो सलमान खान ये बहुत पसंद करते हैं डॉग्स को. इनके पास काफ़ी पेट डॉग्स रहे हैं बट काफ़ी लंबे समय तक. अनलेस एंड अंटिल ही इज़ लॉस्ट अ पेट डॉग देन ही इज़ गॉट अ न्यू वन. बट ही इज़ मोस्ट फेवरेट पेट डॉग्स जिनके बारे में इन्होंने बहुत बातें की थी. अर्ली 2000 में भी कई सारे फोटोशूट्स किए थे अपने ब्रांड बींग ह्यूमन के लिए भी. माई सन एंड माई जान इंग्लिश मेस्टिफ्स ब्रीड के हैं डॉग्स इनके. बहुत ब्यूटीफुल बहुत सिंपल सा नाम माई सन एंड माई जान इन्होंने इनको वो नाम दिया हुआ है. बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर नेम आई एब्सोल्युटली लव. कार्तिक आर्यन के पास एक पेट डॉग है और उनके जो पेट डॉग का नाम है कटोरी. एक छोटा सा क्यूट सा आई थिंक. हाँ आई थिंक इट्स लाइक मल्टीपू जैसा ब्रीड है. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज बट लुक्स लाइक अ मल्टीपू ब्रीड. और उनका नाम है कटोरी. और कार्तिक आर्यन का सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप चेक करोगे ना तो उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स जो है अपने पेट डॉग के साथ किए हुए हैं. पोस्ट किए हुए हैं फोटोज डाले हैं और वीडियोस डाले हैं. सो यू कैन गो एंड चेक आउट हिज अकाउंट एंड सी कटोरी ऑन हिज सोशल मीडिया एज वेल. अ वेरी क्यूट नेम आई वुड से.

0: बिकॉज देर वॉज नो एविडेंस शोइंग कि उनको पता था कि उन्होंने इसी वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको इस ऑफेंस से चार्ज नहीं किया गया. लेकिन उस रॉबर का, उस व्यक्ति का क्या हुआ? Well, the man later pleaded guilty to the bank robbery और उनको 5 सालों की जेल की सजा जो है ये सुनाई गई. तो ये पर्टिकुलर केस सामने आया जब ये शख्स डेट पर गए और अपने पहले ही डेट पर अपने डेट को लेकर बैंक में चोरी करने पहुंच गए.
1: कमाल के लोग होते भाई, हिम्मत देखो, किसी को आप उतनी अच्छी तरह से जानते ही नहीं और उसको अपने ऐसे खतरनाक प्लेन में शामिल कर लिया, और दूसरी तरफ कि कुछ आप किसी को इतनी अच्छी तरह से जानते भी नहीं और उसके लिए ड्राइव करने के लिए तैयार हो गए. बट वो तो यू नो कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है ऐसे मामलों में.
0: कुछ लोगों का चलता ही नहीं है. लाइक इट्स सो ट्रू बिकॉज इस लड़की ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा इनके साथ हो सकता है. दैट्स व्हाई द पुलिस ट्रस्टेड हर, उनकी बातों पर उन्हें विश्वास किया इसी वजह से, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नो व्हाट केम इन लाइट दैट उनको नहीं पता है. बट आई एम जस्ट वंडरिंग लाइक कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आजकल के ज़माने का जो डेटिंग ट्रेंड है या जो तरीका है उसे लोग कितना सेफ मान सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि जो ओल्ड स्कूल डेटिंग तो खैर छोड़ी दो, जो अरेंज रिलेशनशिप्स होते थे या फिर अरेंज मैरिजेस होते थे, दे आर एनी सेफ देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक कि पहले का तरीका थोड़ा अलग होता था, डेटिंग एप्स जब नहीं थे तो फैमिलीज या रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड्स मिला देते थे लोगों को ना. ये कॉमन है, ये मैं इनको जानता हूँ, ये मैं इनको जानती हूँ, आई थिंक यू गाइज विल यू नो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, देयर इज अ फ्यूचर टुगेदर. तो वो मिला देते हैं, फिर बातचीत होती है, 2-3 बार मुलाकात होती है, थोड़ा जाँच पड़ताल भी किया जाता है. एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए कमिट कर रहे हो, इवन इफ यू कमिटिंग फॉर अ डेट, Try and do your research about the person. Na, jitna ho sake utna research aap kijiye before committing and before you know agreeing to even meet the person. Kyunki ye aapki safety par bhi bahut zyada nirbhar karta hai. Anyways, idhar aisi aur bhi kya bakte ho wo stories aapke liye hum lekar aayenge on the breakfast show with Vijay and Pooja. Par filhal ke liye pichle ghante humne aapko mauka bhi diya tha hamare sath program mein shamil hokar apni entry jo hai ye register karane ki, jahan par agar aap bhi dekhna chahte hain Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ko live in Super City Auckland performing on the 18th of July, to apni entries aapko bhejni thi. Thank you so much jitne logon ne hamare paas apni entries send ki hain. We've got so many entries, to har kisi ka naam kehna would not be possible. But if you've got the link for booking the ticket, bookmyevent.co.nz ka link aapke paas aa chuka hai. That means you've sent your entries correctly.
1: And remember, gine chine tickets jo hain, bookmyevent se hi aap le sakte hain and grab them as quickly as possible. Kyunki very limited number of tickets jo hain, ye ab baki reh gaye hain.

0: going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: सवा नौ बज रहे हैं। सबसे पहले याद रखें, न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री रामलीला होगी वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोएटोए में 8th ऑफ अगस्त को। और अगर आप यहां पर स्टॉल चाहते हैं या फिर टीम में शामिल होने चाहते हैं एज ए विजुअल क्रिएटिव डायरेक्टर, तो मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 0211795459 पर।
3: और दूसरी ओर आपको याद दिला रहे हैं, आज 2nd of July है, यानी टुमारो 3rd of July को सिद्धार्थ रंडेरिया अपना गुज्जू भाई प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड, जहां पर गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, ये बहुत ही हिलेरियस गुजराती ह्यूमर से भरा फैमिली एंटरटेनमेंट, बहुत सारे रिलेटेबल मोमेंट्स के साथ आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बिकॉज गुज्जू भाई जब किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप तो डेफिनेटली हंसेंगे ही हंसेंगे, इसीलिए premiertickets.co.nz से अपने टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा और गुजरात के मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर को एक बार फिर लाइव ऑन स्टेज देखने के लिए तैयार हो जाइएगा एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर टुमारो 7:30 PM।
2: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण पाठ, ये होने जा रहे हैं सैटरडे फेस्ट से लेकर संडे 2nd August तक। शनिवार 1 August की सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी, 8:15 बजे से आरती और सुबह 9:15 बजे से रामायण पाठ जो है ये आरंभ हो जाएगा, जो चलता रहेगा रविवार की सुबह 10 बजे तक। और उसके बाद हवन आरती जो है ये होगा, और यहाँ प्रोग्राम के दौरान आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप अखंड रामायण पाठ जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं अपनी मंडली के साथ, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं 09836 4647 पर आप कॉल कर सकते हैं।
3: बाय द वे आपको याद दिला दें, आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो आप खुद कर रहे हैं या यू आर इन द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड यूड लाइक अस टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब हम उसके बारे में हमारे इस सेगमेंट में बातें करेंगे, डिटेल्स लेकर आएंगे, तो आपके पास मौका रहेगा कि उसकी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे जिनके लिए आप ये इवेंट कर रहे हैं और वो लोग उसका हिस्सा ज़रूर बनें।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
8: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
9: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
8: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
9: Mashallah, bahut acha, very nice.
10: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
11: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
12: Yeah.
11: Hum.
12: Teri bass hai faadu. Meri highs ke liye.
11: Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Football updates brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: Co.nz. 22 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर सेकंड हाफ में राउंड ऑफ 32 का मैच खेला जा रहा है बिटवीन सेनेगल एंड बेल्जियम और अब सेनेगल की जीत बेल्जियम के खिलाफ 2-0 से होने लगी है सेनेगल 2 बेल्जियम 0 और इससे पहले इंग्लैंड ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हराया अगला मैच दिन में 12 बजे यूएसए वर्सेस बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये सारे मैचेस आज खेले जा रहे हैं तो और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे
1: लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आपको हम विजेता बनने के मौके जो है काफी देने वाले हैं पर डिपेंड्स क्या आप इस मौके से फायदा उठाते हैं या नहीं We have been talking about the fact कि करण औजला आ रहे हैं भाई सुपर सिटी ऑकलैंड और वो इसी साल आ रहे हैं इनफैक्ट इसी साल के अगले महीने आ रहे हैं 25th of August को अपना पीप अप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर जहां पर ये परफॉर्म करने वाले हैं एट स्पार्क अरेना और आपको मिल रहा है मौका इनको लाइव परफॉर्म करता हुआ देखने का जब पिछली बार ये आए थे तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ पर काफ़ी बातें हो रही थी दैट करण औजला आ रहे हैं स्पार्क अरेना में परफॉर्म करेंगे क्योंकि देखा जाए तो जो परफॉर्मर्स आते हैं यहाँ उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट वेन्यूज़ माना जाता है स्पार्क अरेना को और व्हेन इट कम्स टू फिलिंग अप स्पार्क अरेना ऑन अ वीक डे सीम्स लाइक अ जॉब जो शायद हर एक परफॉर्मर ना कर पाए और करण औजला पर भी शायद ये सवाल उठे थे कि अच्छा आर्टिस्ट है पर क्या ऑन अ वेंसडे वो फिल अप कर पाएंगे स्पार्क अरेना पर अपेरेंटली ही डिड दैट एंड ही जस्ट डिडंट डू दैट उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया दैट लोगों ने उनका शो इतना एंजॉय किया कि उसके बाद बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग रिव्यूज जो है ये दिए कि इट वाज समथिंग दैट दे हैड एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ लोगों के लिए जो बहुत बहुत मेसमराइजिंग था और इस बार वो आ रही हैं जबकि तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर पिछली बार आप मिस आउट हुए एंड यू रिग्रेटेड इट तो इस बार रिग्रेट नहीं करना है इसीलिए हम .over.nz विजिट करें या livenation.co.nz विजिट करते हुए डिटेल्स हासिल करें टिकट्स खरीद लीजिए समय पर ताकि बेस्ट सीटिंग वाले टिकट्स मिले अच्छा व्यू मिले और आप अपने मज़े में इसका जो भरपूर एंजॉयमेंट है ये कर सकें एंड डोंट फॉरगेट कि करण औजला तो आ ही रहे लेकिन अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर इक्की जो है इनको भी लेकर आ रहे हैं और ये भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं ऑन द नाइट 25th of August
0: टिकट्स आप ले सकते हैं विजिट hum.robo.nz या livenation.co.nz और आज थर्सडे है फ्राइडे और फिर मंडे को पता चलेगा आप में से वो कौन है जिनको एक डबल पास मिल रहा है टू गो एंड वॉच करण औजला परफॉर्म हिज पीप ऑफ कल्चर वर्ल्ड टूर और ये अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रो में आपका नाम शामिल हो तो अभी हम आपको एक गाना सुनाएंगे थोड़ा सा सुनाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा है गाना है गाने का टाइटल आपको हमें भेजना होगा
1: आपको बस एक चीज करनी है सबसे पहले लिखना है के आई फिर उसके बाद में लिखना है गाने का टाइटल और अपना नाम और भेज देना है 5599 पर रिमेम्बर के आई लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये है आपका वो कीवर्ड जिससे आपकी एंट्री वैलिड हो सकती है
0: तो गाना जो है ये आप सबसे पहले सुन लें तो ये है आज का गाना
1: क्या आपने इस गाने को पहचाना अगर हाँ तो फटाफट अपना आंसर भेजिए लिखिए के ए स्पेस योर आंसर ये नेम 5599 पर अभी सेंड कर दीजिए बिकॉज वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू सो एंड वंस यू डू दैट तो आपका नाम ड्रो में शामिल हो जाएगा जहां पर आपको मौका मिलेगा ड्रो में शामिल होते हुए एक डबल पास जीतने का टू विटनेस नन अदर देन करण औजला परफॉर्म लाइव इन सुपर सिटी ऑकलैंड
0: रिमेम्बर गाने का टाइटल आपको लिखना है तो अच्छी तरह से गाना आप सुन ले फॉर द final time

0: तो अब कई आई अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप हमें भेजें.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
3: मैं लाऊं अपना ए गेम
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 26 मिनट या 24 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो। अभी एक हफ्ता हुआ है आई थिंक जो OTT प्लेटफॉर्म पर एक नया प्रोग्राम जो है किया है, नॉट नया बट एक प्रोग्राम का जो नया सीजन है ये आया है, ग्राम चिकित्सालय, ये आपने देखा है?
1: मैंने कब का देख लिया वो,
0: सीजन टू भी?
1: जी सीजन वन तो मैंने जब देखा था मुझे अच्छा लगा था, एंड व्हेन आई फाउंड आउट सीजन टू आया, आई थिंक एज सून एज इट रिलीज सेकंड डे आफ्टर द रिलीज आई वॉच्ड इट, पूरा एपिसोड देख के खत्म कर दिया मैंने।
0: तो क्या हुआ है, दिस शो हैज इमर्ज्ड एज अ सक्सेस और अपनी जगह इसने बनाई है अमंगस्ट द टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड OTT प्रॉपर्टीज इन इंडिया। एक हफ्ते में 3.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं।
1: Yes, it's a very interesting show. And अगर आपने पंचायत देखी है तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है इस शो में, ग्राम चिकित्सालय का सीजन टू जो है इसमें एक सरप्राइज दैट यू डेफिनेटली एन्जॉय। बट ऑन द अदर हैंड आई फील लाइक कि ये जो शो है ग्राम चिकित्सालय, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच करता है और इन अ वेरी डिफरेंट वे, मतलब एक थोड़ा हिलेरियस टेक है, थोड़ा सार्केस्टिक टेक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूरी टॉपिक्स जो है ये टच करता है। बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द एंडिंग ऑफ द सीजन टू का जो एपिसोड था। सर्टन थिंग्स किस नज़रिए से लोग देखते हैं, किस तरह से उसको टैग दे देते हैं और किस तरह से उसको उसी तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं, मतलब व्हाट दे बिलीव इन इज़ हाउ दे प्रेजेंट इट टू अदर्स, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होती है जो अक्सर कई मामलों में सामने आती है, एंड दैट्स हाउ समथिंग यू विल एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर सीजन एज वेल।
0: तो प्राइम पर ये है, अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हैं। इफ यू लव्ड द फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन आपने नहीं देखा है, यू कैन डेफिनेटली एंजॉय। वहीं पर कपल ऑफ डेज बैक हमने बातें की थी कि प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं और उन्होंने खुद ये स्पेकुलेशन जो है ये एंड किया था, जिसके बाद चलकर कई लोग निराश हुए थे। बट प्रियदर्शन और अक्षय कुमार इनकी जोड़ी जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारी यादगार फिल्में उन्होंने एक साथ दी हैं एंड अभी हाल ही में इन्होंने रिवाइव किया इसे विद भूत बंगला और कोलोबरेट कर रहे हैं एक आने वाली फिल्म हैवान को भी, और इस फिल्म में सैफ अली खान भी काम कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक बार फिर अपनी 9th फिल्म के लिए एक साथ आ रहे हैं।
1: ओ वाओ, कौन सी फिल्म?
0: फिल्म जो है इसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये एक कॉमेडी थ्रिलर होगी, अक्षय कुमार विल बी प्लेइंग द लीड और ये फिल्म जो है इसे टिप्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
1: वेरी इंटरेस्टिंग, ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस, और आपके लिए डिटेल्स जो है ये हम जरूर लेकर आएंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन एंड और भी कुछ डेली राउंडअप में अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आए, हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट दिस स्टोरी विच आई हैव जस्ट कम अक्रॉस, एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज कंसर्निंग एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ जो स्टोरी सामने आई है द वर्ल्ड इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस। अगर आपको किसी को प्रपोज करना हो फॉर शादी या फिर फॉर अ रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए, तो लोग कई तरह के आइडियाज जो है ये अपनाते हैं एंड दे वॉन्ट इट टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग डिफरेंट दैट दे हैव डन। बट ये जो प्रपोजल है इज समथिंग दैट इज बिजार, इज समथिंग दैट इज रिस्की, एंड इज समथिंग दैट पीपल आर एक्चुअली अपोजिंग एंड सेइंग कि व्हाट, व्हाई आर पीपल बिहेविंग इन सच अ वे, यू नो। तो एक पर्सन ने एक मैरिज प्रपोजल जो है ये किया, पॉसिबली एट द हाइएस्ट पीक जो ये कर सकते थे। इन्होंने वेंसडे 1st of July को अपने जिनको भी ये प्रपोज करने वाले थे, अपने पार्टनर को, इनके साथ ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है उसके राइट टॉप पर गए चढ़कर।
0: हाँ?
1: जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर जैसा नहीं, तो जिसे स्पेयर कहा जाता है मेरे ख्याल से, एस्पायर कहा जाता है।
0: Yeah,
1: जो एक लाइक इफ यू सी स्काई टावर, स्काई टावर का जो बेस है जहाँ पर स्काई वॉकिंग की जाती है, अगर उससे भी ऊपर आप देखोगे देयर इज दिस पतली सी चुंगी जैसी है,
0: You know what I mean now.
1: So, ये कपल जो है वहां तक ये चढ़ के गए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के, और जब ये वहां पर गए तो इन्होंने मास्क पहने हुए थे, बैटमैन वाले मास्क और काले काले कपड़े पहने हुए थे। वहां पर चढ़कर इन्होंने एक काला सा फ्लैग जो है ये वेव किया और ये जो फ्लैग है उस पर लिखा हुआ था कुछ लाइक इट रेड समथिंग, द फ्लैग रेड व्हेन द पावर ऑफ लव बीट्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड नोज पीस। इन्होंने ये झंडा वहां से लहराया और उसके बाद नीचे उतर कर आए। सो बेसिकली नॉट राइट एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग बट वो नीचे उतर कर आए जो प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली, बट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वहां पर ये आए और फिर इन्होंने जो शख्स जो व्यक्ति है उन्होंने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। ये वीडियो कैप्चर हुआ और वीडियो का पूरा ये प्रपोजल वाला वीडियो वगैरह जो ये सब सामने आया एंड एबीसी न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू एबीसी न्यूज एनवाईपीडी का जो हेलीकॉप्टर है इट वाज सेंट टू द लोकेशन ऑन स्टैंडबाय ताकि कुछ अगर गॉड फॉरबिड कुछ इंसिडेंट हो जाए तो ये सेव कर सके उनको। एंड उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि आफ्टर द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इस कपल को अरेस्ट भी किया गया था पुलिस द्वारा और उनको कस्टडी में रखा गया। There is currently no word अगर उनको चार्ज किया गया है विद एनी क्राइम और नॉट क्योंकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये आप ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते ना। बट न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं मेयर जोहरान ममदानी वेरी पॉपुलर मेयर ये अर्ज कर रहे हैं न्यूयॉर्कर्स से इंक्लूडिंग इन सर्टेन यू नो पॉप सुपरस्टार एंड सुपर बाउल तरीके से जहाँ पर प्रपोजल्स होती हैं कि ऐसी हरकतें आप प्लीज ना करें एंड you know just make put some sense basically before doing something
0: yeah exactly main to abhi yahi soch raha tha ki ye dono gaye upar jhanda lehraya uske baad wapas aakar propose kiya ye jo cheeze hain unme se kitni cheeze jo hain ye ekdam genuine thi aur kitni cheeze staged thi
1: sab kuch genuine tha but wahi hai na ki abhi tak kuch pata nahi hai ki have they been charged for something or not।
0: Let's see, updates होंगे तो हम आपके लिए हम पर जरूर लेकर आएंगे।
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
6: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: What's going on?
0: 16 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। अभी वक्त है डेली राउंडअप का और जो ब्लैक मार्केट टोबैको ट्रेड है उस पर क्रैकडाउन करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1 मिलियन से ज़्यादा सिगरेट्स जो हैं इनको सीज किया गया है। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका इन्वेस्टिगेशन है ये चल रहा था इस ट्रेड को लेकर ओवर द पास्ट 3 मंथ्स और कुछ शॉप्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया सेलिंग द प्रोडक्ट एट प्राइसेस वेल बिलो द रिटेल वैल्यू। एक ईस्ट ऑकलैंड स्टोर जहाँ पर उनकी टीम गई थी वाज सेलिंग अ पैक फॉर एज लो एज $13 लेस देन हाफ द एक्साइज ड्यूटी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी पेड। और ब्लैक मार्केट स्मोक्स जो है उनमें कोई क्विटलाइन इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हेल्थ वार्निंग नहीं होती है जो रिक्वायरमेंट है टू कवर एटलीस्ट 75% ऑफ द फ्रंट। और विदाउट इम्पोर्टिंग सिगरेट्स विदाउट पेइंग द एक्साइज ड्यूटी इज़ इलीगल और कल जो इलिसिट टोबैको एक्शन ग्रुप है उस ग्रुप के मेंबर्स जो है ये बातें कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मई में ग्रुप एस्टेब्लिश होने के बाद से उन्होंने अब अपना पहला जॉइंट ऑपरेशन किया है जिसमें पुलिस कस्टम्स और हेल्थ ऑफिशियल्स जो है ये शामिल थे और उन्होंने 21 प्रॉपर्टीज जो है इनकी तलाशी ली इंक्लूडिंग 8 स्टोर्स एंड 6 होम्स ऑकलैंड रोटोरुआ और वाइकाटो में और उनका विश्वास है कि ये लोकेशंस जो है वे लिंक्ड टू इलीगल टोबैको नेटवर्क और इसके साथ जो चीज़ें उन्होंने जब्त की उसके साथ $170,000 कैश जो है ये भी जब्त किया गया है सीज किया गया है और अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन और आगे चल रहा है।
1: और दूसरी ओर एक खबर जो है ये सामने आ रही है एंड दिस इज अबाउट द एल नीनो इवेंट जो रिपोर्ट किया जा रहा है दैट इज पॉसिबली गोना हैपन वेरी सून। तो एल नीनो इवेंट के बारे में बातें करने से पहले आपको बता दें कि एक्चुअली होता क्या है। सो दिस इज अ नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न जो होता है जब जो सरफेस वाटर है इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ये नॉर्मल से ज्यादा वार्म हो जाता है और ये जो चेंज है ये ग्लोबल विंड पैटर्न में नोटिस किया जाता है, मौसम में चेंज आता है जिसकी वजह से आसपास की बहुत सी कंट्रीज अफेक्ट होती है जिनमें न्यूजीलैंड शामिल है। नाउ अर्थ साइंस न्यूजीलैंड जो कि ESNZ है इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एक एल नीनो इवेंट। साइंटिस्ट ने कहा है इट कुड बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट्स ऑन रिकॉर्ड और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड में इस साल समर और स्प्रिंग में इसका असर जो है ये दिखेगा, मतलब ड्रायर एंड विंडी कंडीशंस अक्रॉस मच ऑफ द नॉर्थ आइलैंड नोट किया जाएगा इन द ईस्ट ऑफ साउथ आइलैंड में, वेटर देन नॉर्मल कंडीशंस फॉर साउथ आइलैंड और लोअर वेस्ट कोस्ट में नोट किया जाएगा। मोर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स फेस किए जाएंगे विद यूजुअली वार्म एक्सपेक्टेड डेज जो हम कर रहे हैं कि स्प्रिंग में थोड़ी गर्मी होगी, समर में थोड़ी गर्मी होगी, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर जो है इस साल हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ कैंटरबरी के लिए कहा गया है कि आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग जो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है विच इज़ अनयूजुअल ड्यूरिंग विंटर, लेकिन वहाँ पर यह फिलहाल फेस किया जा रहा है। और एक सिग्निफिकेंट रेन इवेंट नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट होने को है जिससे कि टेम्परेचर रिलीफ जो है ये प्रोवाइड होगा फॉर सम ड्राई एरियाज। साइंटिस्ट ने कहा है कि एल नीनो जो है कंबाइंड विद क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ हॉटर टेम्परेचर्स एंड मोर एक्सट्रीम वेदर फॉर न्यूजीलैंड। वाइल न्यूजीलैंड जो है इट्स क्वाइट अनलाइकली कि यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस वाला जो प्लस टेम्परेचर्स है ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है फिलहाल वैसा कुछ एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोर फ्रिक्वेंट वार्म वेदर स्पाइक्स जो है आने वाले महीने में हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे।
0: और बेल्जियम के पास तकरीबन 5-6 मिनटों का वक्त बाकी रह गया है टू सेव द फीफा वर्ल्ड कप क्योंकि राउंड ऑफ 32 के मैच में अभी भी उनकी हार सेनेगल के खिलाफ 2-0 से हो रही है।
1: एंड द फाइनल अपडेट फ्रॉम माई एंड, आज आपको बता दें कि बहुत से पेट्रोल स्टेशन पर आपको 20 सेंट्स ऑफ पर लीटर फ्यूल मिलेगा। सुबह 7 बजे से ये डील शुरू हुआ है आपके लिए, गल्स सर्विस स्टेशन में जरूर चेक कर लीजिएगा बिफोर यू फिल अप।
7: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

0: आज की दो बातें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हमारे साथ अगर आज आप कंपटीशन में भाग लेंगे, स्पेशली द ग्रेट कॉमेडी नाइट, तो जाने से पहले मौका देंगे आपको हमारे साथ एक डबल पास जो ये जीतने का. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस हम कहना चाहते हैं आज हमारी विजेता को. 8462 से आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट फिनिश होते हैं. कंग्रेचुलेशंस शीतल, आपने ये पास जो है खुद के लिए जीत लिया है और आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा प्रोबेबली इन अ वीक, जहां पर आपको बताया जाएगा हाउ यू कैन क्लेम योर पास.
1: और आज की पहली बात, दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना दूसरा परछाई. आईना झूठ नहीं बोलता, परछाई साथ नहीं छोड़ता.
0: ओके.
1: दूसरी बात, एक उम्र के बाद उम्र या एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं. एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती.
0: That is so true. हमेशा यार हम कहते रहते हैं कि बचपन में ना ये करते थे वो करते थे, इतना मजा आता था, ऐसा होता था, लेकिन अब गया बचपन, अब नहीं वापस आने वाला. तो कीप इट इन माइंड कि जो पल भी अभी आप जी रहे हैं, कल को ये भी एक याद ही बन जाएगी. ऐसा ना हो कि कल इस पल को याद कर कर आप यही बोले कि यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, कितना अच्छा टाइम था. क्योंकि अभी तो आप शायद चिंता में ही खुद को व्यर्थ कर रहे हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हैं. तो डोंट डू दैट, लिव दिस मोमेंट, एंजॉय दिस मोमेंट, और साथ में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. हम आपसे मिलते हैं अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर आपके साथ जुड़ जाएंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन.

0: Jo ki aa rahi hai.
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. भाई ये ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आई नो आज ये ठंड जो है कल के बाद थोड़ी कम होती चली जाएगी. यानी कल 8 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर, बट अगर आप अभी भी सिकड़े हुए बैठे हैं तो भाई वार्म अप कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि माई टाइम में मैं आ चुकी हूँ कशिका आपके साथ कुछ वार्म अप करने के लिए बातों को लेकर. अब ये बातें कौन सी हैं? ये बातें आप ही से मिलती जुलती हैं, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होती हैं. और ऐसे में कशिश फूल्स का बिग थैंक यू जिनकी ओर से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे का सफ़र. थोड़ी देर बाद आप बहुत सारी बातें करेंगे हम, और इसके साथ साथ ऑफिस शाउट आउट, सिक्स वर्ड स्टोरी अगर आपकी कोई आपके माइंड में है ज़रूर बताइए. ऑफकोर्स कॉन्टेस्ट भी हैं जहाँ पर आपको कुछ जीतने का मौका भी मिलने वाला है. बहुत सारी बातें, अरे ख़त्म नहीं होती ना हम सबकी बातें. लेकिन हाँ, एक बात तो है जिसके लिए आपके लिए आज हम वो एक सस्पेंस ख़त्म करने वाले हैं. ड्राइव शो 5 बजे डेफिनेटली आप सुनिएगा, क्योंकि समथिंग इज़ देयर फॉर यू फॉर ईस्टर 2027 एडवेंचर. अगर आप चाहते हैं जानने के लिए तो ड्राइव शो को डेफिनेटली सुने आज शाम को 5 बजे, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं. चलिए ये खुलासा इतना सारा हो गया, लेकिन अभी गाना बजाती हूँ.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: आज मैंने मेरे वैसे एक्सपर्ट अड्डा में जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, एंड दैट्स अबाउट नॉट अबाउट एक्चुअली फेस वॉश क्लेंजर्स, बिकॉज क्लेंजिंग जो होती है हमारी सबसे पहले एक स्किन केयर की रूटीन होती है, चाहे वो मेन में हो या वुमेन में हो, अपनी स्किन का हमें एक अच्छे क्लेंजर के साथ ध्यान ज़रूर रखना होता है। तो जेल क्लेंजर्स, क्रीम क्लेंजर्स, क्लेंजिंग बाम्स, ये सब हमारे फेस वॉशेस, यू नो टाइप्स ऑफ डिफरेंट फेस वॉशेस आते हैं, लेकिन हमारी स्किन को अगर रॉन्ग क्लेंजर मिल जाता है तो स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाती है, ट्रिगर करती है ब्रेकआउट्स में। सो What is the difference between foaming face wash या gel washers? अगर हम इनकी बात करें तो foaming face wash क्या होता है? Mainly it starts with a gel or a cream और फिर उसमें एक झाग जैसा होता है, foam, जो rich foam के साथ जब आप थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं तो वो झाग जैसा बनने लग जाता है, और फिर उसके बाद वो जो dirt होता है, excess oil होता है, वो sweat होता है, makeup का residue होता है, वो हटा देता है और एक perfect रहता है, you know, आपकी ह्यूमिड स्किन है या एक्ने प्रोन है उस हिसाब से वो डीप क्लीनिंग की एक फीलिंग आपको होती है, और ये क्लॉग्ड पोर्स को भी प्रिवेंट करता है, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट कुड बी प्रोबेबली यू नो थिंग जहाँ मैं कह सकती हूँ इसका क्या एक ड्रॉबैक हो सकता है, तो इसके ड्रॉबैक के लिए अगर हम बात करें तो यूजुअली फोमिंग क्लेंजर्स जो हैं हार्श सल्फर, यू नो, जो सोडियम लोरल सल्फेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये नेचुरल ऑयल जो स्किन का होता है उसको हटाने की कोशिश करता है, स्किन बैरियर जो होती है वो कम करता है, एक्सेसिव रेडनेस या ड्राइनेस आपकी स्किन में भी होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हाइड्रेटिंग एजेंट्स नहीं है, सेरामाइड्स नहीं, ग्लिसरिन नहीं है, तो देन इट कैन मेक अ डिफरेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट जेल क्लेंजर्स, अब ये जो क्लेंजर्स होते हैं ये जेली लाइक होते हैं क्लेंजर्स, बहुत हल्के होते हैं, सॉफ्ट टच होता है इनका, और थोड़ा सा भी अगर आप ले लेते हैं तो भी उसमें आपका अच्छा खासा फोम बन जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। द बेस्ट स्किन जेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव, नॉर्मल, डिहाइड्रेटेड, माइल्डली ऑयली, इस तरह के क्लेंजर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि जेल क्लेंजर्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर आपके एज अ फेस क्लेंजर नहीं रिमूव करते हैं, बट ये करते हैं आपके जो एक्टिविटीज़ हैं स्किन के ऊपर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब व्हाट कैन बी अ ड्रॉबैक फॉर दिस? द ड्रॉबैक कैन बी द फॉर्मूला, या जिस तरह से आप वाटरप्रूफ मेकअप अगर आप लगाते हैं या थिक सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं, इन सच केसेस यू हैव टू ऑप्ट फॉर डबल क्लेंजर, और ये आप इसमें हो फोम वाला फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। जेल क्लेंजर्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन कम्पेयर टू द फोम। सो फाइनली अगर हम कहें कि अगर यूनिवर्सली मैं किसे विनर ठहराना चाहूँगी तो फेस वॉश या क्लेंजर में बोथ हैव देयर ओन सेट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। आपका मेन कंसर्न है डीलिंग विद एक्सेस ऑयल, क्लॉग्ड पोर्स या एक्ने, तो आप फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सल्फेट फ्री हो, रिमेंबर अंडरलाइन सल्फेट फ्री। लेकिन अगर आपकी ड्राई, सेंसिटिव, डिहाइड्रेटेड स्किन है तो जेल क्लेंजर्स शुड बी योर गो टू प्रायोरिटी। तो ये क्लेंजर्स जो होते हैं आपकी जो स्किन से इम्प्योरिटीज हटाते हैं और आपकी स्किन को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू।
0: माय टाइम विद कशिका।
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में। हैप्पी तो नहीं।
3: ड्राइविंग यू होम। The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: Award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
11: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
12: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
13: But should we call her, sir?
14: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
11: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
15: YRF Spy Universe presents
16: Alpha.
15: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
11: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
3: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माई टिटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माई टिटन मेगा बॉटनी.
17: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
18: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
19: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
20: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
19: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
21: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
22: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Office shout out.
1: Office shout out की बात आती है तो shout out ज़्यादा है to my dear friend in Wellington, Ash. How are you? Very happy 8 degree वाली ठंड में warm up करते हुए suspense तोड़ने वाली ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग कशिका की. थैंक यू. इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप खासतौर पर लिखते हैं. हाँ भाई, मैं आपके टेक्स्ट को मिस ज़रूर करूँगी क्योंकि अगले हफ्ते तो मैं यहाँ नहीं हूँ, छुट्टी ले रही हूँ. 15 तारीख को वापस लौट के आऊँगी. थोड़ी बहुत अपने मी टाइम को भी मैं मनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कल वीकेंड का एक जो वार है आपके लिए करने के लिए आ रहे हैं, नन अदर देन गुज्जू बाइनी एक्सचेंज ऑफर. सिद्धार्थ रंदेरिया की बात कर रही हूँ. भाई, गुजराती कम्युनिटी में ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर हैं, और अगर आपने इनका कल जो है ये प्ले मिस कर दिया तो समझ लीजिए ऑल गुजराती इज़ यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, क्योंकि इनका जो प्ले है इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट. आपको ज़बरदस्त जोक्स पे, विटी डायलॉग्स पे हंसने का मौका मिलेगा. फैमिली से रिलेटेड आपके जैसे कुछ बातें होंगी, वो मोमेंट्स को आप रिलेट भी कर पाएंगे. ये क्लासिक गुजराती ह्यूमर आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं कल शाम 7:30 PM एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. सिद्धार्थ रंदेरियाज गुज्जू बाई प्रोडक्शन आपके लिए ला रहे हैं गुज्जू बाईनी एक्सचेंज ऑफर विद द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया. जरूर जरूर इसे जाके देखिएगा. डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चुका।
1: वाह, अद्भुत
2: भाई। अद्भुत बात तो ये है कि एक ऐसा जब कलाकार आता है ना, तो बस मज़ा आ जाता है कि अरे इन्हें लाइव देखने का मौका मिलेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट करण औजला, जो कि 25 अगस्त के दिन स्पार्क अरीना में परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं। ये ड्रॉ 6 जुलाई को होने वाला है। मैं आपके लिए गाना प्ले करूँगी। आपको क्या करना है, इस गाने का टाइटल ढूंढना है कि ये टाइटल क्या है। 5599 पे KA लिखना है, करण औजला का शॉर्ट फॉर्म। आप अगर टाइटल गेस कर पाए तो फैंटास्टिक, ग्रेट। आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। आप पहले के ये लिखना है, टाइटल है जैसे कि गाना है तौबा तौबा, है ना, तो स्टार्ट अलग होता है लेकिन एंड होता है, मतलब तौबा, आपको पता है वो गाना तौबा तौबा जो है वो है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब जो मैं गाना बजा रही हूँ आपके लिए, आपको गेस करना है कि ये गाना कौन सा हो सकता है। तौबा तौबा नहीं है। एंड उसके बाद 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर देना है। वैसे अगर आप ये टिकट्स खरीदना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इवेंट के बारे में, हम rova.nz या फिर livenation.co.nz पर आप क्लिक ज़रूर कर सकते हैं। याद रहे कि पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ये आ रहे हैं विद दी स्पेशल गेस्ट हिट मेकर इकी। एक अनफॉरगेटेबल नाइट आपके लिए होने वाली है विद म्यूजिक एंड एनर्जी। आई एम प्लेइंग द सॉन्ग एंड इसको फेड आउट कर दूंगी ताकि आप गाना रिकोगनाइज कर सकें।

0: football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वैसे आज दोपहर राउंड ऑफ 32 जो है उसमें 12 बजे दोपहर से USA वर्सेस बॉस्निया एंड हर्जगोविना के बीच में जो है ये होगा. कल का जो दिन बताया जा रहा है पोर्चुगल क्रोएशिया का सुबह 11 बजे मैच होगा और सुबह 7 बजे स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया. लेकिन आज जब मैं बात करती हूँ टू ऑल पर है बेल्जियम वर्सेस सेनेगल. तो देखते हैं कि अभी अगर कुछ और खबर आती है तो मैं डेफिनेटली आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी. वैसे ड्रीम्स के बारे में आपका क्या कहना है, सपनों के बारे में आपको कहना है, क्या बताना है ज़रूर बताइए. लेकिन अभी के लिए मैं आप सबके नाम ड्रॉ में ऐड कर रही हूँ. आपका नाम है अजय, क्रुणाल, हरदीप, डेफिनेटली आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया है.

0: के दिन या 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz।
2: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड। टीज़ एंड सीज़ एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी।
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
7: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
8: So, aapne dream kiya about khana. अब वैसे एक बात बता देती हूँ, अगर आप खाने के बारे में ड्रीम करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में या क्या एक्सपीरियंस चल रहा है या आपके एनर्जी लेवल्स क्या चल रहे हैं। कुछ सर्टेन सिचुएशंस जो हैं शायद आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। हर खाना एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने साथ अपनी ड्रीम में लेकर आता है। सर्टेन फूड सिम्बल्स जो हैं, जैसे एप्पल्स हैं, ओट मील्स होते हैं, दे आर वेरी यूनिवर्सल। जैसे कि फिर दूसरे तरह के खाने होते हैं जैसे प्रोसेस्ड या जंक फूड, ये आपके पर्सनल मीनिंग के, आपके पर्सनल फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि किस तरह का खाना अगर आप खा रहे हैं तो क्या लगता है। सपोज कीजिए आप बादाम के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, रैंडमली टॉकिंग, तो क्या आपको लगता है कि आप ये बादाम अफोर्ड कर पाएंगे? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ आपको पे करना पड़ता है अटेंशन कि भाई ये डू यू डिज़र्व दैट क्वालिटी, डू यू डिज़र्व दैट सब्सटेंस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ों को माइंड में रखना होता है। बादाम होते भी महंगे हैं।
7: दिल

वैसे अगर देखा जाए तो क्या हाउसेस के जो प्राइसेस हैं क्या एक बार फिर गिर चुके हैं? वैसे क्राइस्ट चर्च और डनीडन में रिकॉर्ड किया गया इंक्रीज इन वैल्यू इन द मंथ ऑफ जून, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तोरंगा, वेलिंगटन एंड ऑकलैंड, यहाँ एक फॉल आया और ऑकलैंड वॉज द बिगेस्ट इन द ऑफ द मेन सेंटर्स, जहाँ इट इज डाउन इन अ मंथ बाय 0.5%. Auckland, Manukau, there was a drop to 0.7% in the month of June. In dollar terms, agar main kahun, Auckland ke house price jo hai, wo gir kar pahunch chuki hai 4,854 for a month and 323,070 from the peak. That is quite a bit, isn't it? ये क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्या होगा, लेकिन कई लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, खास तौर पे फर्स्ट होम बायर्स. लेकिन अभी के लिए ये सब बातें सुन के ना डैश डैश डैश डैश क्या होता है ये

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: regularly and across Canterbury until midday tomorrow. And there are calls for Wimbledon to go to the dogs. Tennis star Aryna Sabalenka is pleading with organisers to reverse its ban on players bringing their furry friends onto the grounds during the tournament. She says it hurts to leave her pooch behind, as he's just a little fluffy thing who wants cuddles and affection. To sport, and huge drama at the FIFA Football World Cup.
1: One kick of the ball to surely decide a remarkable game. And he scores!
0: Belgium scoring two late goals and then a penalty right at the end of extra time on TVNZ to beat Senegal 3-2 in Seattle and reach the round of 16. Football updates brought to you by Hisense. And in tennis, a statement performance from Novak Djokovic at Wimbledon, outclassing former world number 3 Stefanos Tsitsipas in straight sets to reach the third round.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
5: सूचित किया जाता है कि पुष्पावती और स्वर्गीय महादेव के पुत्र जय संजय जितेंद्र और रोशनी नादन के भाई शैलेंद्र कुमार देव की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 022-600-4706 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, पुष्पावती और स्वर्गीय महादेव के पुत्र जय संजय जितेंद्र कुमार और रोशनी नादन के भाई शैलेंद्र कुमार देव की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-600-4706 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड के शमिनी रामन के पिता साइमेंटल क्रिसेंट सोमरविल की श्रीमती सुशील रमन की पति रमेश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 6 जुलाई को 1 बजे मैनकाउ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए 021-717-504 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, ऑकलैंड की शमिनी रमन के पिता साइमेंटल क्रिसेंट सोमरविल की श्रीमती सुशील रमन के पति रमेश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 6 जुलाई को दोपहर 1 बजे मैनकाउ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-717-504 के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं।
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
3: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
6: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम।
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
5: The highs of 15, overnight temperature of 5. आज का forecast होने वाला है हल्की हवाओं के साथ साथ। इस समय आप 8 डिग्री temperature महसूस कर पा रहे हैं। 5:17 पर sunset बताया जा रहा है।
3: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid-morning maza.
7: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My time with Kashika.
5: सोचने पे मजबूर कर देती हूँ कि समय के बारे में कि आप देर कर सकते हैं पर समय नहीं करता देर, वो हमेशा अपने ही समय पर चलता रहता है कि नहीं। लेकिन इस समय के साथ चलते चलते आपके साथ मैं अब मिड मॉर्निंग मज़ा में पहुँच चुकी हूँ। मैं यानी काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक, जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि समय आपके लिए कितना ज़्यादा मूल्यवान है। टाइम इज़ मनी। और जब मैं बोलती हूँ ये बात कि टाइम इज़ मनी, तो ऐसा कितनी बार होता है जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करती हूँ, रिमाइंडर क्लॉक जो हूँ आपकी। वैसे रिमाइंड आपको करा देती हूँ रोवा ऐप के बारे में। आप रोवा ऐप के ज़रिए अगर मुझे इस समय सुन रहे हैं, जैसे आप टोरंगा से सुन रहे थे अभी, आपका कॉल आया तो आप जैसे मुझे अभी सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि रोवा ऐप के ज़रिए आप सुन रहे हैं। वैसे कितने लोग ऐसे हैं जो हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं? हाँ, अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ आप स्क्रोल अप करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉनर के गाने सुनना चाहते हैं, जैसे 60s 70s के हैं तो हम रिवाइंड, 80s के जुक बॉक्स को आप सुनना चाहते हैं तो 80s के जुक बॉक्स को डेफिनेटली आप सुन सकते हैं। हम 80s जुक बॉक्स, फिजी के भजन अगर आप सुनना चाहते हैं या फिजी कीर्तन संग्रह सुनना चाहते हैं

नए पुल कीर्तन, जो नए पुल ऑफ कीर्तन हैं उनके साथ, तो वो भी आपके लिए मुमकिन है। पंजाबी गानों का टेस्ट रखते हैं तो चढ़दी कला, और अगर सूफी और कव्वालियों का आप शौक रखते हैं तो राहत फतेह अली खान का म्यूजिक स्टेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी और वो मुझे अब दिख रहा है कि शायद एक हिस्टोरिकली इंटेंस क्लाइमेट इवेंट होने वाला है, और वो क्या है उसके बारे में बाद में, मतलब एक आध गाना सुनाते हैं उसके बाद। हाँ, याद रहे, 6 word story, भूलना नहीं, 5599 पे जल्दी जल्दी टेक्स्ट करो। कॉन्टेस्ट है मेरे पास आपके लिए, जहाँ पे मैं एक डबल पास देने वाली हूँ कृष्णा अभिषेक के कॉमेडी नाइट्स के लिए। तो चलते रहिए, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम करते रहिए, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन 104.2 FM एंड रोवा। बचाओ क्या?

0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: ईट बेटर लिव बेटर. लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक हिस्टोरिकल इंटेंस क्लाइमेट इवेंट होने वाला है. यहाँ पे इंटेंस हीट वेव्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. अर्थ साइंसेज न्यूजीलैंड ने कंफर्म किया एल नीनो यानी कि ELNINO, ये कंडीशंस जो हैं ये पहुंच चुकी हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक में, जहां पर ये कंट्री को इन्फ्लुएंस करने वाली है, कंट्री के वेदर को इन्फ्लुएंस करने वाली है इन 2027. अब अल नीनो के बारे में मैं बता देती हूँ क्या है. कि नेचुरल क्लाइमेट इवेंट है जहां पे जो समुद्र है उसकी सर्फेस पे एक ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की वजह से इट गेट्स वार्मर देन यूजुअल. अब ये एक्स्ट्रा वार्म जो है ये ग्लोबल विंड के जो पैटर्न है वो चेंज करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम वेदर अराउंड द वर्ल्ड हो सकता है. कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वेट होगा. इन न्यूजीलैंड इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू बी मोर ड्राई. यूजुअल कंडीशंस जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में है और वेस्टर्न लोअर रीजन्स में है, जहाँ पे कहा जा रहा है बारिश ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी. एल नीनो जो है ये एक रिकॉर्ड हीट वेव जो है इस साल यूरोप में लेकर आई है. टेम्परेचर्स वेंट अप टू 45 degrees, hundreds of deaths हुई हैं, हाईवे पे बकलिंग हुई है बिकॉज ऑफ इंटेंस टेम्परेचर, और हॉटेस्ट जून डे एवर जो है यूके ने रिकॉर्ड किया. इसी के साथ साथ अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो सेकेंड वार्मेस्ट ईयर इन रिकॉर्ड इन 2023 जो है अपनी कंट्री में हुआ है. हॉट एंड ड्राई कंडीशन साउथ आइलैंड में जनवरी में आपने महसूस ज़रूर करी हैं. एंड ये टेम्परेचर जो हैं 8 out of 12 months में एक रिकॉर्ड है नीवा का. अब ऑब्जर्वेशन जो है सी सर्फेस को लेकर कहा ये जा रहा है दैट ये एक हॉलमार्क होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इवेंट इन 2026. यानी कि एट लीस्ट हम ये कह सकते हैं ये इंटेंसिटी जो है इट विल हैव टॉप 5 इवेंट्स, जिसकी वजह से वेदर जो है, अगर मैं कहती हूँ अर्थ साइंस न्यूजीलैंड एंड मेट सर्विसेज के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि एक मेजर इन्फ्लुएंस ये पड़ सकता है फ्रॉम दिस कमिंग सितंबर ऑनवर्ड्स. ये कॉम्बिनेशन होगा हवाओं का और बारिश जो कुछ ड्राई सॉइल की वजह से होगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी हद तक खतरे में पड़ सकती है. और ऐसे में जो ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे और मोस्ट लाइकली ये कंडीशन ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में पड़ सकते हैं. फार्मर्स को शायद चैलेंज फेस करना पड़े ड्यू टू द रेन्स.
2: 80s के रेट्रो गाने.

आपकी कम्युनिटी में क्या होता है, चलिए अगर कुछ फ्री इवेंट है तो हमें ज़रूर बताएं। buzz@humfm.com के जरिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। वैसे न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं। इनके स्टॉल्स की जानकारी के लिए आप मास्टर अशोक से संपर्क कर सकते हैं ऑन 02117954459। अब ये स्टॉल्स किसके लिए ले रहे हैं, रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने वाला है 8 अगस्त के दिन। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमके साथ जुड़े रहना होगा। मैंने अभी अभी एक टेक्स्ट देखा है, उन्होंने कहा, हाय टीम, आई सॉ टिकट ड्रॉ फॉर कृष्णा शो हैपनिंग इन जुलाई, हैव यू ड्रॉन द विनर्स येट, वी हैव पुट सो मेनी एंट्रीज। ओके, अब आपके लिए एंट्री देने का एक वक्त आने वाला है मेरे साथ। स्टे ट्यून, कीप हमिंग ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। चाहे आप मुझे 104.2 FM से सुन रहे हैं या रोवा ऐप के जरिए सुन रहे हैं, तो बिग बिग वार्म वेलकम।

0: आशिका।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: वैसे अद्भुत बात तो ये है कि आप जब हंसते हैं हमें और भी मुस्कुराने को मन करता है। ऑलराइट, नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे मैं आपको मुस्कुराने का एक मौका देती हूँ। अब ये मुस्कुराने का मौका जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं नन अदर देन कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। और इसी महीने 18 जुलाई यानी कि बस 16 दिन के बाद विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप बिल्कुल इनसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, bookmyevent.co.nz के ज़रिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इशू हो रहा है कुछ ऑनलाइन बुकिंग में या आफ्टर पे का ऑप्शन चाहिए तो आप धर्मेंद्र शाम से बातें करें ऑन 02104327200 पे। ट्राई विजन एंटरटेनमेंट आपके लिए ये कमाल का मौका ला रहा है जहाँ पे एक डबल पास देना है मुझे आपको। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ओके, आपको बताना है कोई भी ऐसा एक टीवी का शो जिसमें आपने कृष्णा अभिषेक को देखा है, कोई भी एक ऐसा टीवी शो जिसमें आपने कृष्णा अभिषेक को देखा है। कॉमेडी आपका जो है कीवर्ड है, आपका आंसर आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए। जाने से पहले मैं अनाउंस करूंगी, टाइम आज कम दे रही हूँ, जाने से पहले अनाउंस करूंगी कि भाई कौन विनर होगा, वो जो डबल पास लेके जाएगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब हमारा ये कैंपेन पूरा हो जाएगा हम टिकट्स आप तक तब पहुंचा जरूर देंगे, सो डू नॉट वरी।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।

0: रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी, ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम इंटरेस्टिंगली कभी कभी कुछ बातें ऐसे करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, तो वो हमारे को फ़ायदा भी होने लग जाता है उन चीज़ों के साथ. अब आप सोचोगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. भाई, मैं बात कर रही हूँ अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और जब ये होती है बात कि खाना पीना हमें किस तरह से फ़ायदेमंद हमारे लिए रहता है और हमें कैसे इनको फिर से इस्तेमाल करना है, तो यही चीज़ें होती हैं इनके साथ. आगे बढ़कर आते हैं और हम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, दिस मेक्स अ डिफरेंस, दिस विल डेफिनेटली नॉट मेक अ डिफरेंस. तो मैं बात कर रही हूँ अबाउट फ्रूट्स. अब मैं जब बातें कर रही हूँ अबाउट फ्रूट्स, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कभी कभी ये फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट बटर बना सकते हैं इनका. अब आप कहेंगे कैसे फ्रूट बटर बना सकते हैं, तो ईजी है. आप जो छिलके होते हैं फ्रूट्स के, चाहे वो एप्पल हो, पीचेस हो, पेयर्स हो, इनको फ्रीज कर दीजिए. और करीब जब आपके पास 5 कप्स हो जाए, तो एक स्लो कुकिंग इनकी कीजिए. थोड़ा सा पानी, चीनी और दालचीनी डालने के बाद इसको आप होममेड फ्रेश बटर बना सकते हैं. बहुत ही डिलिशियस टेस्ट आता है. मेरी एक आंटी हैं जो घर पे इस तरह के जैम्स और सॉसेस वगैरह बनाती हैं. आई वाज टॉकिंग टू हर द अदर डे इन मुंबई एंड शी टोल्ड मी, काशिका ये ट्राई करो, बहुत अच्छा रहेगा. मैं कहा अच्छा ठीक है. तो शी टोल्ड मी, तो छिलके जो डिफरेंट तरह के छिलके, एप्पल्स हो गए, पीचेस हो गए, पेयर्स हो गए, इनको फ्रीज कर दीजिए. अब आपके लगभग जब ये 5 कप हो जाते हैं, तो आपने इनको स्लोली कुक करना है. थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारिए, चीनी डालिए और दालचीनी डालिए. देखिए, आपके लिए एक होममेड फ्रूट बटर तैयार हो सकता है. ओके, मैं तैयार हूँ अभी नहीं, इस गाने के ठीक बाद विनर का नाम अनाउंस करने के लिए, कि ये कौन जाने वाला है इस कॉमेडी नाइट्स में फॉर वॉचिंग कृष्णा अभिषेक लाइव ऑन द 18th of July at Victory Convention Center.
1: दिल

सो टाइम आ चला है विनर का नाम अनाउंस करने के लिए. तो संगीता कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है एक डबल पास. जरूर जाइएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा. ऐसे ही आप जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ साथ, क्योंकि आपके साथ हम काफ़ी चीज़ें ऐसी लेकर आते हैं जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं. जैसे कि आजकल AI का ज़माना हो चुका है, और ऐसे में सैंडी रुजबे ने AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ बातचीत करी है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ChatGPT टू AI के बारे में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती क्या नहीं, एक कॉन्वर्सेशन जहाँ हर क्वेश्चन आपके माइंड में होगा उसके बारे में बातचीत करी है. तो 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजें और आप ये कैचअप कर सकते हैं. अगर आप हमारे ब्रेकफास्ट शो की टीम को मिस कर रहे हैं, आप 5599 पे BFP लिख के भेज सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ और केतन का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि वो आ रहे हैं लंच बॉक्स में धूम मचाने के लिए. तो इनका साथ दीजिएगा. तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है बृहस्पतिवार, वीरवार, गुरुवार, जो भी से कहना चाहें, मेरी मुलाकात होगी. वो दिन कहलाएगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार, और उसके बाद से मेरी होगी छुट्टी स्टार्ट. यानी कि फिर मैं कल जब साइन ऑफ करूँगी 3 तारीख को, तो मैं 15 तारीख को वापस आऊँगी अपने मी टाइम के लिए. ज़रूर जाऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स चिलैक्स कर वापस लौट के आऊँगी. तो लुक आफ्टर योर सेल्फ, एंड दिस इज़ कशिका साइनिंग ऑफ from the Hum Studios. Enjoy the rest of the day.